मीटी में 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता।

0: उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:05:26 हो रहे हैं और एक ही वक्त है आपके अपने कार्यक्रम भक्ति संगीत कार्यक्रम का आराधना का। तो कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आराधना कार्यक्रम। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आराधना कार्यक्रम। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि मन सच्चा रखो और कर्म करते रहो। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आराधना कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

देवताओं ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि अपने मन, कर्म और वाणी से कभी किसी को दुख न पहुंचाएगी, क्योंकि उसकी दिल से जो आह निकलती है वो परमेश्वर सुनता है। नए नए पाप करता है तो प्राणी अपने मन, क्रम और वचन से ऐसा ना कर। चलिए श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं हरिहरण के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्री, तो अभी आप हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में गाए इस भक्ति रचना का आनंद ले रहे थे। ओम नमो नारायण। रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब। हम बस अभी हाजिर होते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: आराधना कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जब मनमोहन के रंग में रंग गया ये तन और मन, तो फिर कोई और रंग मोहे ना भाए। श्रोताओं लीजिए सुनिए लता मंगेशकर जी के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: नदियाँ जीवन का आधार हैं। नदियाँ हमें निरंतर आगे बढ़ना, बिने रुके बहना और सबको जीवन देना सिखाती हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए अनूप जलुटा के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।
1: दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। धन्य था वो राम राज, धन्य था वो राम राज। एक संत अयोध्या का दर्शन करके सरयू नदी के किनारे आता है। ये वही सरयू नदी है जिसमें भगवान राम ने जल समाधि ली थी। उसी सरयू मैया को अयोध्या का दुखड़ा सुनाता है।

0: इसी भक्ति रचना के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए विचार विंदु कार्यक्रम। विचार विंदु कार्यक्रम में आज आप देवहरा बाबा के विचार सुनेंगे।
1: भारत अनादि काल से धर्म प्रधान देश रहा है। यह

0: भाव अपने पूज्य श्री देवराहवा जी महाराज बराबर व्यक्त किया करते थे। यहाँ धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समय समय पर साक्षात परमपिता परमात्मा विविध स्वरूपों जिसने मुख्यतः मानव शरीर में भारत ऐसे पवित्र देश में अवतार धारण कर अनेक लीलाएं की हैं, जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में हुआ है। इसी परंपरा में भगवान श्री राम तथा परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मानव शरीर धारण कर अनेक अलौकिक लीला से विश्व में अपने कार्यकलापों से लाभान्वित संपूर्ण जगत को किया है। वहीं धर्माचार्य संत महात्मा ऋषि महर्षियों के रूप में विलक्षण महापुरुष मानव स्वरूप में जैसे आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य, आदि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, आदि जगत गुरु अपने रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, अनेक आचार्य आदि के समान ही इस पुण्य पावन भूमि में ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जी महाराज का भी अवतार अपने आप में इस धराधाम पर एक साधारण परिवार में एक विलक्षण बालक के रूप में पदार्पण कर किया हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका इस संसार में सशरीर प्रादुर्भाव जन्म तिथि का वास्तविक पता किसी को नहीं है। जैसा कि सदैव से विरक्त योगी संतों की यही स्थिति रही है, जो वास्तव में जन्म स्थान जन्म तिथि तो भौतिक आदि मानव का प्रतीत साधारण सर्व मानव जीवन को अपने पूर्व परंपरा के अनुसार ज्ञात हो जाता है। यहाँ पुरुषों का प्रादुर्भाव तो किसी न किसी के कल्याण हेतु यह होता है, वह संत के रूप में, महामानव के रूप में या साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में। बाबा तीर्थराज प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार और हिमालय की अनेक तराइयों में बद्रीनाथ आदि की आसपास वह विचरण करते हुए भक्तों को केवल दर्शन और कुछ शब्दों के आशीर्वाद से लाभान्वित किया करते थे। बाबा तीर्थराज प्रयाग माघ मेला से प्रस्थान कर वह वृंदावन में स्थिर होकर के और अनेक भक्तों से कहा कि अब हमारा कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अब हम अपने नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की अपने साथ रह करके बाल लीला में आनंद ले रहे हैं। और उसके पश्चात वास्तव में बाबा फिर कहीं भी वह प्रस्थान भ्रमण का कार्य स्थगित कर दिया। आज बाबा अपने इस संसार में भौतिक स्थिति में आप हम सबको सशरीर नहीं दर्शन दे रहे हैं, परंतु उनकी आध्यात्मिक चेतना और बराबर बाबा कहा करते थे कि बच्चा की संपूर्ण समस्याओं का समाधान लौकिक भौतिक आध्यात्मिक अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो स्वयं भगवान का नाम लो, गुरु की परंपरा का आदर करो और आध्यात्मिक जीवन में साधना आराधना करो, गौ माता की सेवा और गौ माता की उपकार से अपने जीवन में गो भक्त, मातृपित्र भक्त, आचार्य भक्त, गुरु भक्त, मातृपित्र के ऋण से उऋण होने का संकल्प करो और अपने जीवन में अपने किसी न किसी इष्ट का अपने अंतःकरण में प्रधान स्थान देकर के उस इष्ट का चिंतन, साधना, आराधना और ध्यान अवस्था में अपने अंतःकरण में विराजमान करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल कल्याण होगा।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप देवरा बाबा के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे बरसात के मौसम में मछली पालन से जुड़ी सावधानियां, और इस विषय पर डॉक्टर आलोक सिन्हा से बातचीत की है श्वेता श्रीवास्तव ने।
1: किसान भैया देखा अपने कार्यक्रम में समय समय पर विषय विशेषज्ञ भैया आवत रहे थे, जौन बतावत हैं कि अपने खेती किसानी के हम अच्छा कैसे कैसे करते हैं, अपने पशुओं के देखभाल कैसे कीन जा सकते हैं। साथ ही साथ आज जौन हम सब बात करब वो है वर्षा ऋतु में मछलियों के पालन में बरती जाए वाली सावधानियाँ, और एक बड़े आज हमरे कार्यक्रम में बातचीत करे के लिए आए हैं आलोक कुमार सिन्हा जी। आप सेवानिवृत्त उप निदेशक मत्स्य विभाग प्रयागराज से हैं। सर आपके बहुत बहुत स्वागत बा हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अपने किसान भैया की तरफ से हम आपसे जाने चाहब कि जौन वर्षा ऋतु में मछली पालन करते हैं हमारे मत्स्य पालक भैया लोगन, तो उनके लिए सबसे पहले एक जरूरी बात होते है तालाब की तैयारी। तो सर हम आपसे जाने चाहब कि तालाब की तैयारी कैसे होते है?
2: नमस्कार श्वेता बहन जी, प्रत्येक मत्स्य पालक के लिए यह प्रकरण सामयिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु मत्स्य उत्पादन एवं ग्रोथ के लिए सर्वोत्तम है। जो तालाब सूख जाते हैं उनकी साफ सफाई गड्ढे टीले की समतलीय करवा कर संभव हो तो जुताई करा देना चाहिए।
1: अच्छा।
2: वर्ष भर पानी रहने की दशा में अवांछनीय वनस्पतियों की सफाई व वीट फिशेज जैसे चेलवा, मांगुर, सिंदरी, पढ़िन, सौल आदि का उन्मूलन करवाना चाहिए। बारंबार महीन जाल चलवा कर सफाई यदि संभव नहीं है तो महुआ की खली प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम का घोल का छिड़काव करें। 20-25 दिन पश्चात यह खाद में परिवर्तित हो जाता है। खली उपलब्ध न हो तो 100 किलोग्राम यूरिया, 175 किलो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर के घोल का छिड़काव करें। दोनों परिस्थितियों में मरी मछलियों को धोकर उपयोग किया जा सकता है। विष का प्रयोग 20-25 दिनों में समाप्त हो जाता है। नए तालाब का निर्माण कराना हो तो काली या दोमट मिट्टी व पानी की व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनवाना चाहिए। नए तालाब नदी, बलुई, कंक्रीट, मिट्टी, जलाशय के निकट बहते हुए जल स्रोतों के पास नहीं बनवाना चाहिए। सभी तालाबों में बंधों की मरम्मत, पानी आवागमन के रास्तों की खुदाई व सफाई करवा लेना चाहिए। इनलेट व आउटलेट में एक 32 इंच का मेश की जाली लगवाना चाहिए। कभी भी तालाब में जहर का प्रयोग नहीं करें। तालाब के किनारे छायादार पेड़ नहीं होना चाहिए।
1: बहुत अच्छा बताएं भैया, लेकिन जैसे आप बताएं कि जौन पुराने तालाब हों ओका तो पहले छिड़काव करवाए के सफाई करवा लें, और नए तालाब के लिए ऐसे मिट्टी होए के चाहिए कि जलाशय अच्छा बन सके। साथ ही साथ ओमा जौन आप बताएं कि इनलेट और आउटलेट की जौन जाली है वो हमार जौन भी मत्स्य पालक भैया लोग हैं उनका जरूर लगवाए के चाहिए। और एक बात के जरूर ध्यान रखें कि तालाब जब तैयारी करें तो ओके किनारे किनारे छायादार पेड़ लगवाएं। सर एक बात और हम आपसे जाने चाहब कि वर्षा ऋतु में देखा कई तरह के हानियां होते हैं, तो कौन कौन ऐसी संभावित हानियां हैं और ओकर कौन कौन से बचाव है ओकरे बारे में हमार मत्स्य पालक भैया लोगन के बतावें।
2: तालाब में न्यूनतम 1 से 1.5 मीटर स्वच्छ पानी होना चाहिए। भारी वर्षा में जल प्लवन, बाढ़ की दशा में आसपास से गंदा नाला, फैक्ट्री व प्रदूषित पानी तथा सिल्ट व महीन रेह युक्त मिट्टी, अवांछनीय मछली कीड़े तालाब में आ सकते हैं एवं पानी बहाव के रास्ते में इसको रोकने के लिए पानी बहाव के रास्ते में पौधे के गट्ठर और केले के पत्ते रख देना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा।
2: पानी का प्रभाव को धीमा कर दें। गंदे व रेह युक्त पानी संचित मछलियों के गलफड़ों में चिपक जाते हैं।
1: अच्छा, मतलब है कि मछलियों के नुकसान हो सकते हैं।

0: जिससे मछलियाँ सांस नहीं ले पाती हैं और बेहोश या मर जाती हैं। इसे मटियारी कहा जाता है।
1: हाँ।
0: तालाब में भारी वर्षा व जल प्लवन की दशा में मछलियाँ बहाव के विपरीत तैरने की प्रवृत्ति के कारण थोड़े समय में ही एकत्रित होकर बाहर निकल जाती हैं। इसे भड़ैल कहा जाता है। संभावित स्थानों पर बंधा 2 से 3 फीट ऊंचा यह नायलॉन की महीन जाली अंदर की तरफ बांस की सहायता से गाड़ दें। सुबह शाम संचित मछली पानी के ऊपरी भाग में आकर सांस लेती दिखाई दे, जिसे गैस्पिंग कहते हैं। इसका अर्थ है पानी में ऑक्सीजन की कमी है। तुरंत ताज़ा ठंडा पानी भरवाएं, एयरेटर का प्रयोग करें। तालाब में ऑक्सीफ्लो, पोटेशियम परमैंगनेट व चूने का प्रयोग करें। जल स्तर बढ़ाए खादीकरण व पूरक आहार कुछ दिनों के लिए बंद कर दें।
1: बहुत अच्छा बताए कि ये तरह से जो है मछलियन के सही कह जा सकते हैं। तालाब के जो खादीकरण होते हैं और पूरक आहार होते हैं उनके बारे में बताएं कि कैसे उनकी व्यवस्था की जाए।
0: वर्ष में 10 से 20 टन गोबर की खाद व 200 से 300 किलोग्राम चूना कुल भार का 10वां भाग प्रत्येक माह छिड़काव करेंगे। साथ ही 200 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश कुल 490 किलोग्राम को 10 भागों में प्रत्येक माह छिड़काव करेंगे। कार्बनिक खाद के उपयोग के 15 दिन पश्चात रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे। मत्स्य बीज संचय के उपरांत पूरक आहार की व्यवस्था करेंगे। पूरक आहार में चावल की पॉलिश, चोकर, सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल की महीन पिसी खली का उपयोग बराबर मात्रा में मिलाकर करें। बीज संचय के उपरांत 10 दिनों तक महीन पिसी पूरक आहार का छिड़काव विधि से उसके उपश्चात ट्रे, टोकरी या बोरी में तालाब के चारों तरफ किया जाना चाहिए। पिसा सोयाबीन 1.5 टन खाने के साथ मिला दें। कोली क्लोराइड, खाने वाला सोडा, विम्ब्रो, जनेवा कैप पूरक आहार में मिला कर देने लाभप्रद होता है। ग्रास कार्ट संचय की दशा में लेमिना, हार्ड्रिला, मुलायम वनस्पति की व्यवस्था कर सकते हैं।
1: भैया ये तो आपने बताया कि कैसे पूरक आहार दिया जाता है, खादीकरण किया जाता है, लेकिन जैसे वर्षा ऋतु में मछलियन के पालन पे हम सभी बात कर रहे थे और उनका सावधानियन पे, तो वर्षा ऋतु में मछलियन में कौन कौन से रोग होते हैं और उनका क्या उपचार है?
0: इस समय प्रदूषित पानी तथा मौसम से रोग फैलने की पूर्व संभावना बनी रहती है। नियमित तालाब का निरीक्षण एवं माह में 1-2 बार जाल चलाकर संचित मत्स्य बीज का निरीक्षण करते रहना चाहिए। इस समय लाल चकत्ते, जिसे एपिजेटिक अल्साइटिस सिंड्रोम, जुआ, ड्रॉपसी, सफ़ेद काले धब्बे तथा लाल छींटे शरीर पर दिखाई देते हैं। 1.5 मीटर शुद्ध जल स्तर नियमित बनाए रखें। सीफेक्स ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का छिड़काव नियमित करें। टेरामाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पूरक आहार में मिलाकर दें। अधिक रोगग्रस्त मछलियों को तालाब से गाड़ दें, निकाल करके गाड़ दें।
1: बहुत अच्छा बताएं भैया, लेकिन आप इसके साथ यहू बताएं कैसे सावधानियां बरती जा सकते हैं, एकरे बारे में भी बताएं।
0: तालाब में पानी का आवागमन महीन जाली 1x32 मेष जाल के माध्यम से ही हो। भड़ैल, मटियारी या गैस्पिंग की रोकथाम में सदा सजग रहें। स्वस्थ मत्स्य बीज व पानी जब भी उपलब्ध हो संचित करते रहना चाहिए। चोरी, अनाधिकृत शिकार माही के प्रति सदा सजग रहें।
1: बहुत अच्छा भैया आलोक भैया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और वर्षा ऋतु में मछलियन के पालन में बरती जाए वाली सावधानियन के बारे में बताएं, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जरूरी सावधानियां और इस विषय पर डॉक्टर आलोक सिन्हा से बातचीत किया श्वेता श्रीवास्तव ने। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर आर पी शुक्ल की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है डायबिटीज रेटिना थेरेपी।
1: भाइयों और बहनों, डायबिटीज के रोगियों की संख्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है और यहाँ तक कहा जाता है कि भारत अब आज के दिन में डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। डायबिटीज को लेकर लोगों में तरह तरह के भ्रांतियाँ हैं, तरह तरह के सवाल आते हैं, जैसे डायबिटीज का क्या कारण है, कैसे होता है, इससे शरीर को क्या नुकसान होता है। तो आज हम आपको बताएंगे डायबिटीज या मधुमेह के बारे में विस्तार से। ये एक ऐसा रोग है जो विभिन्न मेटाबॉलिक बीमारियों का समूह है, जिसमें व्यक्ति के खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से अधिक हो जाता है और ऐसा तब होता है जब शरीर में इंसुलिन ठीक से न बने या वो ठीक से रिस्पॉन्ड न करे। इस रोग की वजह से हमारे शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं, जिनमें आँखें प्रमुख हैं। डायबिटीज़ के कारण हमारी आँखों की जो रेटिना है, जिसको हम लोग आँखों का पर्दा भी कहते हैं, उसको रक्त पहुंचाने वाली जो महीन नलिकाएं होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे रेटिना पर वस्तुओं का चित्र सही से नहीं बनता है या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं बन पाता है। इसी समस्या को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर सही समय पे इसका इलाज न किया जाए तो लोग अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। इसका खतरा 20 से 70 वर्ष के उम्र के लोगों को ज़्यादा होता है। शुरू शुरू में इस बीमारी का पता ही नहीं चलता है। जब आंखें इस बीमारी से लगभग 40% तक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तब इसका प्रभाव समझ में आने लगता है। डायबिटीज जितने लंबे समय तक रहता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी की संभावना उतनी ही अधिक होती है। और सुखद बात यह है कि लेजर तकनीक का विकास हो चुका है, जिसके इलाज से अंधेपन में लगभग 60% तक फायदा हो गया है और आगे उम्मीद है कि और बेहतरी होगी। अब मुख्य बात यह है कि डायबिटीज का जो वजह है इंसुलिन की कमी, यही इंसुलिन ग्लूकोज को शरीर में पहुंचाता है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है। जब इंसुलिन नहीं बन पाता है या कम बनता है तो ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं जा पाता है और खून में ही घुला रह जाता है। इस कारण खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और यही खून शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुँच रहा है। हाई शुगर के वजह से लगातार रक्त की नलिकाएं क्षतिग्रस्त होती जाती हैं और कहा जाता है कि आँख की, विशेष रूप से आँख की जो रक्त नलिकाएं हैं बहुत ही नाजुक होती हैं, इसलिए मधुमेह में सबसे ज़्यादा प्रभावित यही होती हैं। रक्त नलिकाओं के फटने से जो रिसने वाला रक्त है कई बार रेटिना के आसपास इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसकी आँखों में ब्लाइंड स्पॉट्स बनने लगते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस रेटिनोपैथी का या इसका लक्षण क्या है, कैसे हम पहचाने। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आपके चश्मे का नंबर बार बार बढ़ रहा है, आपकी आंखों में बार बार संक्रमण हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है, सुबह उठने पर आपको कम दिखाई देने लगा है, सफ़ेद या काला मोतियाबिंद होने लगा है, सिर में दर्द होने लगे, अचानक आंखों की रोशनी कम हो जाए या आंखों में खून उतर आए, आंखों की सिराओं में खून का थक्का दिखने लगे, तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है। तो उपाय क्या है इसका? जैसे ही हमें डायबिटीज़ का पता चले कि हमें डायबिटीज़ हो गया है, तो हमें अपना ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल, इसको टाइट कंट्रोल रखना चाहिए। सामान्य लोगों को साल में कम से कम 1-2 बार आँख की जांच करवानी चाहिए, पर वह व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ हो और 8-10 साल से डायबिटीज़ हो, उसको हर 3 महीने में अपनी आँख की जाँच करवानी चाहिए। अगर आपकी आँखों में दर्द होने लगे या अंधेरा छाने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये ध्यान रखें कि ये एक बार खराब हो गया तो कभी नहीं सुधरने वाला है, तो बचाव ही उपाय है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जितना सतर्क रहें उतना ही अच्छा है आपके लिए।
0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर आर पी शुक्ल की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम

कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7:30 बजे राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट आप सुनेंगे और संसद समीक्षा सुनिएगा रात 8 बजे। संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे। तीनों कार्यक्रम का प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और अब लीजिए सुनिए प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7 बजे और 7:10 पर फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 7:45 पर आप पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन सुनेंगे और दोपहर 12:15 बजे कमला बोस का ख्याल गायन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम का वक्त होगा सुबह 8:45, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की है। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप मल्लिका चटर्जी के स्वर में गाए भजनों का आनंद लेंगे। सुबह 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में 10:30 बजे आज के कलाकार हैं सीमा उपाध्याय, कल्लू निराला और सावित्री श्रीवास्तव। एक ही कलाकार कार्यक्रम दिन में 11 बजे सुनिएगा, प्रस्तुति प्रदीप मिश्रा की है। दोपहर 12:30 बजे आपके पसंद के गीत सुनिएगा आपकी पसंद कार्यक्रम में, प्रस्तुति मधु कुमार की है। दोपहर 1:15 बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में चर्चा होगी बेटी बहू और प्रोफेशन, अनेक भूमिकाओं का संतुलन। साथ ही नीरा त्रिपाठी जी की वार्ता महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता विकल्प या आवश्यकता सुनिएगा। और गृहलक्ष्मी टिप्स में क्या क्या रखें रसोई घर के फर्स्ट एड बॉक्स में ये बताया जाएगा। शाम 5:00 बजे नन्हे साथी सुनेंगे नन्ही दुनिया कार्यक्रम। नन्ही दुनिया कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पहले तोलो फिर बोलो, और आओ जाने में सुनेंगे दर्पण में हमारा चेहरा कैसे दिखाई देता है। शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी एक भारत श्रेष्ठ भारत पर। प्रेरणापुंज में बात होगी APJ अब्दुल कलाम पर। अमित शर्मा की वार्ता खाद्य सुरक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता सुनिएगा। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में बात होगी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस पर। लोकगीत छग्गूलाल और साथियों के स्वर में सबरीज अहमद से लोक भाषा में कविता पाठ आप सुनेंगे। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर अनिल रंजन भौमिक की वार्ता भारतीय सिनेमा और सामाजिक यथार्थ सुनिएगा। और रात 8:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे विज्ञान जगत कार्यक्रम। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

महात्मा गांधी ने कहा था कि कल पर कोई कार्य ना टालें, जो है आज है और अभी है, और उसे आज और तुरंत करें। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणि करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्वनिदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्वनिदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावीपरीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षासम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोरप्रावधानयुक्तं नूतनविधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दण्ड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षामन्त्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वां कारगिल विजय दिवस समारोहं सम्बोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यकायोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरम् अन्तरिमयुद्धविरामविषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अमेरिकादेशस्य राजदूतः माइक वाल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानाम् 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानु इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार है रविंद्र साठे और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं केदारनाथ फिल्म से, और इस भजन को अपनी आवाज़ से सजाया है अमित त्रिवेदी ने। अमिताभ भट्टाचार्य की रचना है और अमित त्रिवेदी ने ही संगीतबद्ध किया है। तो ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, आप फिल्मों से भजन कार्यक्रम में अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं चार धाम फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है हरिहरन ने। उदय शंकर पानी की रचना है, सुरेंद्र कोहली ने संगीत दिया है। तो ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: लोगों से साझा किए अपने विचार। कहा रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इटावा और मैनपुरी में किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आयोग निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा।
1: हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए।
2: इस अवसर पर उन्होंने कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
2: प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में हुए वृहद पौध रोपण का भी उल्लेख किया।
1: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।
2: प्रधानमंत्री ने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार चाय का जिक्र करते हुए कहा कि इस चाय ने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है।
1: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई।
2: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश में हुए वृहद पौध रोपण का मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधान

0: से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में काम करेगा ये विशेष कार्यबल।
1: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश विदेश

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। वहीं बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी का प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करने पर ग्रुप की एक महिला सदस्य ने प्रसन्नता जताई।
1: जो प्रोडक्ट्स हैं विदुर हर्बल टी और या विदुर से जुड़े हुए और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको एक नेशनल मार्केटिंग मिलेगा और उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो हम लोग सभी दीदियां बहुत खुश हैं कि अब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और बढ़ जाएगी, हमारी आजीविका में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगरा से विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर योजना की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों को 1,28,000 शिक्षकों और उनके परिवार के लोगों को लाभ मिलेगा। कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कल ही मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं और इटावा में 604 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं जिले के उझानी रेलवे स्टेशन से कल कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले रेलवे परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि लखनऊ के लिए नई ट्रेन शुरू होने से व्यापारी, मरीज और छात्रों सहित सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भी पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कल स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं ऋषिकांत सिंह चानबम ने इन खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। हापुड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के स्याना चौपला के निकट कल देर शाम हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली से बिजनौर जा रहा एक 4-पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और दूसरी ओर से आ रहे एक अन्य 4-पहिया वाहन से टकरा गया। हापुड़ पुलिस के अनुसार दुर्घटना में घायल करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीले कणी की अध्यक्षता में काम करेगा ये विशेष कार्यबल। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश विदेश के लोगों से साझा किए अपने विचार। कहा रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इटावा और मैनपुरी में किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: बना देती है ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026, जहां खिलाड़ी पगडंडियों से निकलकर इतिहास रचने पहुंचे हैं, जहां हर एक सेकेंड, हर एक छलांग और हर एक पंच के पीछे बरसों का त्याग और अनगिनत उम्मीदें जुड़ी हैं। ग्लासगो के एरेना में जब दुनिया भर के 74 देशों के बेहतरीन खिलाड़ी उतरे हैं तो प्रतिस्पर्धा सिर्फ प्रतिद्वंदी से नहीं

0: बल्कि खुद के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भी होती है। यहाँ गिरना हार नहीं बल्कि उठकर दोगुनी ताकत से पलटवार करने की सीख है।
1: ग्लासगो की 18 डिग्री सेल्सियस की हड्डियों को सिहरा देने वाली ठंड और इस सर्द मौसम के बीच भी राष्ट्रमंडल खेलों के मैदान पर खिलाड़ियों का पसीना लगातार बह रहा है। इस महासंग्राम में दुनिया भर के खिलाड़ी अपने हुनर और संयम के दम पर बस एक ही लक्ष्य के लिए जी जान लगा रहे हैं, देश के लिए एक अदद मेडल। पदक के लिए मचे इस रोमांचक घमासान के बीच खेलों के चौथे दिन आखिरकार भारत का स्वर्णिम खाता खुल ही गया।
2: Indeed, India's golden journey in the Glasgow Games began with the unflappable Mirabai Chanu comfortably defending her 48 kg title in weightlifting.
1: आइए जानते हैं 22वें Commonwealth Games में चौथे दिन क्या-क्या हुआ। Commonwealth Games 2026 में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हर खेल प्रेमी को इंतजार था। भारत के स्वर्णिम अभियान का आगाज उस नाम ने किया जिसने हर बड़े मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाया। ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय भारोत्तोलन की सबसे बड़ी स्टार साई खोम मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
3: हमारी नेशनल एंथम जो है वो जब गाते हैं, जब सुनते हैं तो अपना आप आंसू निकलते हैं, खुशी के ही आंसू है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए।
1: जैसे ही पोडियम पर तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया वो क्षण हर भारतीय के लिए गौरव से भर उठने वाला बन गया।
2: The legendary Mirabai began her title defense run with a failed attempt at lifting 82 kgs in the snatch before succeeding in lifting the weight. She then went on to set a Commonwealth Games record with a lift of 85 kilos, 10 kgs ahead of her nearest rival's best lift. The rift widened in the clean and jerk section as the Tokyo Olympic silver medalist succeeded in lifting 105 kilos in her second attempt to complete a total lift of 190 kgs and rise to the top of the podium as the tricolor fluttered proudly. She finished 22 kgs ahead of the silver medalist Ruth Nyong of Nigeria.
1: इस स्वर्णिम जीत के साथ साई खोम मीराबाई चानू के प्रदर्शन पर सीनियर खेल पत्रकार राकेश थपलियाल कहते हैं,
4: बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है मीराबाई चानू का और ये लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स है जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसकी शुरुआत उन्होंने 2018 में की थी, तब 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर 2022 में 49 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और अब 2026 में 48 किलोग्राम वर्ग में मेडल जीता है। मीराबाई चानू की जो कंसिस्टेंसी है वो एक बड़ी गजब की रही है कि लगातार तीन कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना, ये गोल्ड मेडल की शुरुआत यहाँ पर हो गई है।
1: मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में मेडल के लिए अपनी प्रबल दावेदारी का परिचय भी दे दिया।
3: ये गेम्स में हम इतना एफर्ट नहीं लगाने वाली थी, पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो फेल हुआ था, दोनों ने सोचा था कि हम दो दो लिफ्ट ही करेंगे, उनके आगे एशियन गेम्स आने वाला है तो इसी के लिए हमको फोकस करने थे।
0: सच कहा जाए तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन वेट लिफ्टर्स के नाम रहा। मीराबाई चानू ने गोल्ड हासिल किया लेकिन उससे पहले पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में मणिपुर के ऋषिकांता सिंह ने अपनी चुनौती रखी। मणिपुर के वेटलिफ्टर ने निराश नहीं किया। कुल 271 किलो वजन उठाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाले ऋषिकांता ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला सिल्वर मेडल दिलाया। ऋषिकांता ने तीसरा प्रयास 121 किलो का सफलतापूर्वक हासिल किया और इसके साथ ही स्नैच में अपनी वेट कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इन मलेशिया के अनिक कसदार ने भी अपने तीसरे प्रयास में इतना ही वजन उठाया। फिर बारी आई क्लीन एंड जर्क की, उन्होंने तीसरे प्रयास में 151 किलो भार उठाने की कोशिश की लेकिन बाजुओं ने फिर साथ नहीं दिया। अनीक अपने तीसरे प्रयास में 152 किलो वजन उठाकर न सिर्फ ऋषिकांता से काफी आगे निकल गए बल्कि गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवाने के साथ साथ ओवरऑल 273 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाने में सफल रहे। ऋषिकांता,
5: पहले मैं बहुत खुशी हूँ सभी मिलके, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इंडियन

0: Weightlifting Federation and Indian Sport Minister and Indian Weightlifting Federation सभी ने हम स्पोर्ट को सपोर्ट करके आज इंडियन मेडल लेके आने के लिए बहुत सपोर्ट किया था।
1: भारत को दिन का दूसरा सिल्वर मेडल भी वेटलिफ्टिंग से मिला। ऋषिकांता के बाद मुथुपांडी राजा ने मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। राजा और मलेशिया के मोहम्मद अजनिल बिन बिदिन के बीच तगड़ा संघर्ष हुआ। आखिरकार मलेशिया के बिदिन 299 किलो के कुल वजन के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीत गए। राजा को 286 किलो के कुल वजन के साथ सिल्वर मेडल मिला। भारतीय मुक्केबाजों का दम कल दुनिया ने देखा। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में भारत की प्रीति का मालवी की मुक्केबाज देवरा मेटंजे के पास कोई जवाब ही नहीं था। पावरफुल प्रीति ने शुरुआत से ही विरोधी पर ताबड़तोड़ पंच चढ़े। इस तरह भारतीय मुक्केबाज आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी।
2: इट्स रियली नाइस टू हैव अ स्ट्रांग टीम बिकॉज इट डज मैटर फ्रॉम व्हिच कंट्री यू बिलोंग। सो रियल नाइस।
1: पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में भी जादूमणि सिंह के मुक्कों का उनके प्रतिद्वंदी सुमामा रहमान के पास कोई जवाब नहीं था। सटीक आक्रमण और शानदार बचाव के जरिए जादूमणि ने पाकिस्तानी मुक्केबाज को टिकने का मौका ही नहीं दिया। राउंड ऑफ 16 में जीत के साथ जादूमणि भी जादुई प्रदर्शन करते हुए अंतिम 8 में पहुंच गए। पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आदित्य प्रताप यादव को राउंड ऑफ 16 के नजदीकी मुकाबले में उगांडा के बट्टे नुहू से 3-2 से हार मिली।
3: और अब बात लॉन बॉल्स की। भारत की रूपा रानी और पिंकी को दिन में खेले गए महिला पेयर्स के पहले मुकाबले में पहली हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप बी के रोमांचक मुकाबले में नामीबिया की जोड़ी ने भारतीय खिलाड़ियों को टाई ब्रेकर में 3-0 से मात दे दी। इस हार के बावजूद भारत की जोड़ी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई थी, लेकिन देर रात हुए दूसरे आखिरी ग्रुप मुकाबले में विमेन्स पेयर्स के सेक्शनल मुकाबले में पिंकी और रूपा की जोड़ी एक सेट से आगे होने के बावजूद टाई ब्रेक में इंग्लैंड से हार कर बाहर हो गई। वहीं पुरुषों के लॉन बॉल्स के मुकाबले में भारत के पुतुल सोनोवाल को रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुष एकल लॉन बॉल स्पर्धा के सेक्शनल मुकाबले में माल्टा के शॉन जेम्स पार्निस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही पुतुल का आगे बढ़ने का सपना खत्म हो गया।
4: In swimming, the men's 4x200 relay team made it to the final before coming 6th in the event. Meanwhile, Tapan Mohanty finished 15th out of 18 finalists in the men's all-round final in gymnastics with a combined score of 70.100.
1: ग्लासगो में जिन खेलों में भारत की इस बार पदक की सबसे ज्यादा दावेदारी है उसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी शामिल हैं। आज इसकी शुरुआत होने वाली है। एथलेटिक्स में सबसे पहले ट्रैक पर गुरिंदर वीर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राउंड 1 की हीट 4 में उतरेंगे। उन्होंने हाल में 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वे भारत के पहले ऐसे स्प्रिंटर हैं जिन्होंने 10.10 सेकंड का समय का बैरियर तोड़ा है। आज ही लॉन्ग जंप में भारत के पदक की बड़ी उम्मीद मुरली शिशंकर क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में और लोकेश सत्यनाथन क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी में फील्ड पर होंगे। शिशंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 8.08 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता था। 110 मीटर हर्डल रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाले तेजस सिरसे भी खेलों के 5वें दिन मेडल की बड़ी उम्मीद होंगे। अगर वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो पदक के लिए दोबारा देर रात ट्रैक पर उतरेंगे। मेंस हाई जंप में भी आज मेडल मुकाबला होगा। भारत की तरफ से सर्वेश अनिल कुशारे, आदर्श राम ज्योति शंकर और तेजस्वी शंकर की चुनौती होगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कुशारे देश के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। उन्होंने इसी महीने मोनाको डायमंड लीग में 2.26 मीटर ऊंची छलांग लगाकर ऐतिहासिक तीसरा स्थान हासिल किया था। बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तेजस्वी शंकर भी इस साल पदक का रंग बदलने की उम्मीद कर रहे होंगे। ज्योति शंकर की चुनौती को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पैरा एथलेटिक्स में भारत की तगड़ी चुनौती रहने वाली है। विमेन्स शॉटपुट F57 कैटेगरी में शिल्पा KS और शर्मिला पदक के लिए अपना सारा हुनर और ताकत झोंक देंगी। पुरुषों की T38 कैटेगरी की 100 मीटर रेस में राकेश भाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी पदक जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाएंगे। साल 2026 भी उनके लिए खास रहा है। इस साल उन्होंने दिल्ली में वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में गोल्ड मेडल जीता।
4: Let's now take a look at what will be a busy day for Indian boxers today at the Commonwealth Games. In the 60 kg category, Sachin Siwach will take on England's Will Hewitt. The 2016 World Youth Champion and 2026 Asian Championship silver medalist

0: uses his 5'10" frame for a sharp back foot counter punching style and is riding high on form and confidence. Coming off a solid 4-1 win over former CWG medalist Canada's Al Ahmadiyya, his long reach will be key to keeping the aggressive home favourite Hewitt at bay. Meanwhile, Ankush Panghal will take on Zalan Jan of Antigua in the men's 80kg category. The reigning 2026 national champion in the light heavyweight division is a heavy-handed front foot pressure fighter with strong inside footwork. He will be making his games debut and Ankush will look to establish control early with body shots against Zalan Jan. Meanwhile, in the women's section, Sakshi Chaudhary will be taking on Lethabo Modukanele from Botswana in the 51kg weight division. Sakshi comes into the event as a strong medal contender. Her high volume and relentless pace makes her a strong favourite against Botswana's experienced Modukanele if she gets into a rhythm from round one. Back in the men's segment, Sumit Kundu will also be in action against John McConnell of Northern Ireland. Sumit got a bye in the round of 32, and against Northern Ireland's John McConnell, he will be facing a tough challenge. He relies on his high tempo inside game and power combinations, and this will be a matchup to look out for.
1: आज का दिन भारतीय तैराकी और पैरा तैराकी दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूल में भारत के कई खिलाड़ी अलग-अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे और देश को उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद भी होगी। अनुभवी तैराक सजन प्रकाश एक बार फिर पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में उतरेंगे। पहले हीट में उनका लक्ष्य फाइनल का टिकट हासिल करना होगा, जबकि क्वालिफाई करने पर देर रात होने वाले फाइनल में उनकी नजर पदक पर रहेगी। वहीं युवा तैराक आर्यन नेहरा पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा के फास्टेस्ट हीट में उतरेंगे, जहां लंबी दूरी की इस चुनौतीपूर्ण रेस में उनका धैर्य और गति दोनों की परीक्षा होगी। इसके साथ ही पैरा स्विमिंग में भी भारत की उम्मीदें स्वातिक पाटिल पर टिकी होंगी। स्वातिक पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक SB9 वर्ग की हीट में हिस्सा लेंगे और शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो क्वालिफाई करने में सफल रहते हैं तो भारत के लिए पदक जीतने की चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर आज पूल में भारत के लिए हर रेस बेहद अहम होगी। सजन प्रकाश, आर्यन नेहरा और स्वातिक पाटिल के प्रदर्शन पर भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें रहेंगी। उम्मीद होगी कि ये खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दम पर न सिर्फ फाइनल में जगह बनाए बल्कि भारत के पदक अभियान को भी नई रफ्तार दे दें।
0: More medals in weightlifting will be on the cards today as the Indian lifters aim to continue the momentum. Gyaneshwari Devi will be making her debut in the Commonwealth Games and taking part in the 53kg category. She won bronze at the Asian Championships and her personal best of 194 kilos makes her the top-ranked lifter in the Commonwealth. Meanwhile, Vindhyarani Devi, a silver medalist at Birmingham, will be looking to make it two podiums in two as she enters the stage in the 58kg final. In the men's segment, Valluri Ajaya Babu will be the dark horse in the 79kg category.
2: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में वुमेन वॉल्ट में भारत की प्रतिष्ठा समानता की चुनौती होगी।
0: Now, let's take a look at the medals tally. Australia top with a grand total of 39 medals and England are a distant second right now. India meanwhile with 4 medals and 1 gold are now at the 8th position as the action heats up.
1: आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपके साथ वापस जुड़ेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की ताज़ा अपडेट के साथ इसी समय पर। तब तक हमारी पूरी टीम प्रस्तुतकर्ता शौर्य चौधरी, संपादक वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मैं कविता शर्मा आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन सुनेंगे। राग है भैरव।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन सुन रहे थे। राग था भैरव, आपके साथ तबले पर संगत किया था केदार पंडित ने, हारमोनियम पर थे प्रमोद मेहते। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1

0: 4416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों की 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संद्रिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास

0: है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
0: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
0: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
1: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय

0: क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेनजी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of

0: भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित दरख्शां गांवों प्रोग्राम के बारे में कहा कि ये कदम नौजवानों को तहरीक देने के लिए उठाया गया है ताकि वो मुल्क के सरहदी गांवों का दौरा करें, उन्हें समझें और इस सिलसिले में सरगर्म हों। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में नौजवानों ने ज़बरदस्त जोश व खरोश जाहिर किया और तकरीबन 3 लाख नौजवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनमें 400 से ज़्यादा नौजवानों को मुंतखब किया गया है।
0: विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक दूरंदेश और रोशन ख्याल शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने भारत को एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील और मजबूत भारत बनाने का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मुल्क की टेक्नोलॉजी से मिसाइल तैयार करने तक और भारत के खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमात को भारतीय साइंस की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। कौम आज साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। उन्होंने भारत के खलाई और मिसाइल के तरक्याती प्रोग्रामों में एक कलीदी रोल अदा किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका 2015 में आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम का मेमार बताया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के यौम तासीस पर सभी फौजी एहलकारों, अफसरों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि CRPF मुल्क को बाइख्तियार बनाने और उसकी सलामती में मुसलसल सरगर्म अमल है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन हमलों का सिलसिला रोके रखा, जिससे तकरीबन 2 हफ्ते से जारी फौजी कार्रवाई के बाद एक अबूरी जंगबंदी के बारे में ताज़ा मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप सिफारती कोशिशों का मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हालिया हफ्तों में हर सतह पर बातचीत में सरगर्म रहे हैं। ईरानी फ़ौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान से खित्ते में जवाबी हमले रोक दिए हैं और जब से अमरीका ने अपनी कार्रवाई बंद की है, पिछली 2 रातों से कोई हमला नहीं किया गया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में भी आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, गुजरात खित्ते, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पंजाब, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने चांदी के भी मजीद 2 तमगे हासिल किए हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि प्रीति पवार खवातीन के 54 किलोग्राम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच

0: मर्दों की क्रिकेट में कल हरारे में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत की तरफ से जीत के लिए 193 रन का निशाना रखा गया था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, हिफाजती इकदाम और अवामी बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा सेहत आम्मा के माहिर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर कंट्रोल के कौमी मरकज के साथ डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल और एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342100 और 0113341444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या हैशटैग आस्क AIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने इम्तिहान में इस्लाहात पर टास्क फोर्स कायम करने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इम्तिहानी इस्लाहात के लिए आला सतही कमेटी के क्याम का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, नंदन नीलकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशां। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर वज़ीर आज़म के बयान की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, खलाई शोबे में निजी शराकत दारों का मुस्बत नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, ट्रंप का अमरीकी फ़ौज को ईरान पर जारी हमले रोकने का हुक्म, दो हफ्तों से जारी जंग थमा, ईरान ने भी हमले रोके। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, प्रहलाद जोशी ने वजारत तालीम का चार्ज संभाला, मल्लाह बहिर असवद इलाके में काम करने से पहले खसूसी एहतियात बरतें, वजारत खारजा का बयान, गुजरात महाराष्ट्र और उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकानी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने रابطوں को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की मायानाज वेट लिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। इसी के साथ ये खबर
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। लीजिए सुनिए आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, मैं आपकी वीडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव, कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ सुविचारों से। तो सबसे पहले हम आपको नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार सुना देते हैं। नीरा त्रिपाठी लिखती हैं कि जीवन में कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर सारे संघर्ष समाप्त हो जाएं। हर उपलब्धि अपने साथ एक नई परीक्षा लेकर आती है, क्या बात है। और बेचैनियां बाजारों में नहीं मिला करती, इन्हें बांटने वाला कोई नज़दीकी ही होता है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण नीरा जी। और इन्हीं का एक और सुविचार

0: विचार है कि जिंदगी में समस्या देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। भगवान पर भरोसा रखें। क्या बात है नीरा जी, बहुत ही खूबसूरत सुविचार है। तो सुविचारों का सिलसिला यूं ही चलेगा। अभी सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु टेलर और उनके परिवारजन ने हमें अपना खूबसूरत सा सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने में है। जो इंसान धैर्य, मेहनत और अच्छे विचारों के साथ अच्छे विचारों का साथ नहीं छोड़ता, उसकी मंजिल एक न एक दिन ज़रूर उसके कदम चूमती है। क्या बात है विष्णु टेलर जी, बहुत ही खूबसूरत सुविचार है आपका। और रामचंद्र मखीजा जी लिखते हैं कि वंदे मातरम जी, तो वंदे मातरम मखीजा जी, ये लिखते हैं कि देश है तो हम हैं और देश नहीं तो हम नहीं। वीर सैनिकों को नमन जी, तो हमारा सैनिकों को नमन है। आपने गाने की फरमाइश की है, तो आपका आपकी जो फरमाइश है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपकी ये फरमाइश हम किसी और दिन पूरी कर देंगे। उत्तम सिंह जंघेल जी ने लिखा है कि नमस्कार, जय जोहार जी। रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं, प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। क्या बात है उत्तम जी, बहुत ही खूबसूरत सुविचार है। आपने भी फरमाइश की है, आपकी फरमाइश हम अगली बार ज़रूर पूरी करेंगे। और इस पोस्ट को जिन श्रोताओं ने लाइक किया है उनके नाम हम ले लेते हैं। जयपाल यादव हैं, जावेद अहसन हैं, अतुल कुमार गुप्ता हैं, उत्तम सिंह जंघेल जी हैं, महाराजा कीर्तनपुर गोस्वामी हैं, रामचंद्र मखीजा जी हैं, अभिषेक चौधरी हैं, विष्णु टेलर है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस कार्यक्रम में अपने सुविचार भेजे और इस पोस्ट को लाइक किया। थैंक यू सो मच आपके सुविचारों के लिए। और सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब, क्योंकि आज है 27 जुलाई और आज का दिन अपने आप में बहुत ही ख़ास है। और ये ख़ास क्यों है ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। तो बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। और हमने आपसे संदेश से पहले कहा था कि 27 जुलाई क्यों खास है, तो आज बात उनकी करेंगे जो हर मुश्किल परिस्थिति में डटकर खड़े रहते हैं। उनके लिए ना तो कोई छुट्टी है ना त्यौहार, वो हर वक्त खड़े रहते हैं एक प्रहरी की तरह, ताकि हम सुरक्षित रहें, हम अपने तीज त्यौहार का आनंद ले सकें। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की। और आज CRPF का स्थापना दिवस है। 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान CRPF का गठन हुआ था। उस दौरान इसे क्राउन

रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम दिया गया। देश की आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने पर इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया गया। श्रोताओं, आपको बता दूं, यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, कानून व्यवस्था को संभालना और आतंकवाद और नक्सलवाद का मुकाबला करना है। सीआरपीएफ राज्य सरकारों को शांति कानून व्यवस्था बनाने रखने में मदद करता है, प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की मदद करना और राहत कार्य चलाना भी सीआरपीएफ का काम है। देश भर में होने वाले आम और लोकसभा विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराना सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है। एक और बात आप सभी को बता दूं कि वर्ष 1986 में पहली बार महिला सीआरपीएफ बटालियन की स्थापना नई दिल्ली में की गई। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य मोटो, या शुद्ध हिंदी में कहें कि ध्येय वाक्य क्या है, तो सीआरपीएफ का ध्येय वाक्य है सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ का ये ध्येय वाक्य है श्रोताओं, और जो ये पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो भाई, आज हमने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस और 27 जुलाई क्यों खास है। बातें और भी करेंगे, लेकिन अपने उन सैनिकों को ये गीत समर्पित करती हूँ और आप सबको समर्पित करती हूँ ये गीत। आप सुनिए और बताइए ये गीत आपको कैसा लगा।

भारत हमको प्यारा है और हिंदुस्तानी नाम हमारा है, ये बहुत फख्र की बात है। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि 27 जुलाई क्यों खास है। आज देश के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी

अग्नि और पृथ्वी जैसे महत्वपूर्ण मिसाइलों के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। आपको याद ही होगा पोखरण का वो सफल परीक्षण 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में अहम तकनीकी और संगठनात्मक भूमिका निभाई। और आपको बता दूं APJ अब्दुल कलाम जी छात्रों और युवाओं को जीवन भर प्रेरित किया। वो छात्रों और युवाओं से बेहद लगाव रखते थे। वो युवाओं से कहते थे कि आप युवा हैं, सोच का अपार भंडार आपके पास है, अपने दिमाग को सही दिशा दीजिए और हमेशा नया कुछ नया करने की कोशिश करते रहिए। विंग्स ऑफ फायर जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें भी आपने ही लिखी। वर्ष 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में APJ अब्दुल कलाम जी ने देश की सेवा की और भारत सरकार ने सन 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। इनके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी। APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में तमिलनाडु में हुआ और 27 जुलाई सन 2015 को हम सब के प्यारे APJ अब्दुल कलाम जी के शिलोंग में एक व्याख्यान देते समय हृदयगत की गति बंद हो गई और जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। देश में शोक की लहर दौड़ गई, सभी की आंखें नम हो गईं। 27 जुलाई को APJ अब्दुल कलाम जी के स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनकी पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके योगदान को याद किया जाता है। आइए हम सब मिलकर देश के सपूत अबुल पाकिर जैबुन्नदिल अब्दुल कलाम जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं।

श्रोताओं आज का नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अब अपनी रेडियो हमारा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दी। प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की थी। नमस्कार।

0: हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकीज़ा फिल्म का, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। कमाल अमरोही जी की रचना है और संगीत से सजाया है गुलाम मोहम्मद ने। तो आनंद लीजिए इस गीत का।

मौसम है आशिकाना ए दिल कहीं से ऐसे भी उनको ढूंढ लाना। श्रोताओं, ये गीत सुनकर तो आप झूम ही गए होंगे और बाहर का मौसम कैसा है आप हमें ज़रूर बताएं।

सही है, क्योंकि अभी तक तो हम बाहर निकले नहीं हैं। मेरे ख्याल से धूप काफ़ी तीखी निकली हुई है। बहरहाल, आपको फिल्म संगीत का अगला गीत हम सुनवाते हैं। ये गीत हमने लिया है सत्ते पे सत्ता फिल्म से, और आशा भोसले और दिलराज कौर की खूबसूरत सी आवाज़ें हैं। गुलशन बावरा ने इस गीत की रचना की है, आरडी बर्मन का संगीत है, और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए किडने फिल्म का गीत। तो और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है श्रेया घोषाल जी ने, रचना है मयूर पुरी का और प्रीतम जी ने संगीतबद्ध किया है। तो ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ज़िले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बाराबंकी और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद का।
1: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विगत दिनों जनपद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा रामनगर के श्री लोदेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा रामनगर और दरियाबाद में 542 करोड़ से अधिक लागत की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर यहां के लोगों को विकास की सौगात दी। इस दौरान लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। इस विरासत के संरक्षण, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विगत दिनों जिला अस्पताल पहुंचकर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान बताते हुए लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। आगामी श्रावण मास मेले की तैयारी के डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विजय वर्ग

ने गत दिनों महादेवा मंदिर परिसर का व्यापक एवं गहन निरीक्षण कर सुरक्षा, निर्माण कार्यों, विद्युत व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं का स्थलीय जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रवण मास मेले की सभी तैयारियां सेफ्टी फर्स्ट की अवधारणा के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने कहा कि श्रवण मास मेले में श्रद्धालुओं कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि मेला

0: समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने कहा कि श्रवण मास मेले में श्रद्धालुओं कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में पुलिस बल की तैयारियां, बैरिकेटिंग, सीसीटीवी निगरानी, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा आपातकालीन रिस्पांस व्यवस्था की पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। प्रत्येक संवेदनशील स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए तथा किसी भी प्रकार की सूचना एवं त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनपद के कटुआ धाम स्थित जगजीवन मंदिर को नया पर्यटन स्वरूप देने की योजना है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास परियोजना के तहत 202.51 लाख रुपए की लागत से यहां पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य सतनामपन से जुड़े आस्था स्थल को विशिष्ट पहचान दिलाते हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि समर्थ साहब बाबा जगजीवन दास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना की थी। ये पंथ सत की उपासना, मानवीय समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। इसकी मूल भावना आडंबरों और भेदभाव से परे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सभी धर्मों, पंथों और समुदायों की आस्था का सम्मान करते हुए धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास कर रही है। इसी क्रम में कोटवा धाम में जगजीवन राम मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 150 लाख की राशि जारी कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश के दृष्टिगत संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विगत दिनों रामनगर तहसील अंतर्गत सूरतगंज विकास खंड के तेजपुरवा गांव पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ संभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील प्रशासन, सिंचाई विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने नदी तटबंधों, कटान संभावित स्थलों तथा जल निकासी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। नई दिल्ली में सांस्कृतिक विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में देशभर से 25 यानी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी DDR योगदान कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बाराबंकी की बेटी सिंपी मौर्य ने किया। सिंपी मौर्य को सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुलकर द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सिंपी मौर्य ने 200 से अधिक गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन, संघर्ष और बलिदान की गाथाओं पर गहन शोध कर उन्हें अपने लेखन के माध्यम से दस्तावेजीकृत किया है।
1: बाराबंकी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोनेलाल का।
2: कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री पशुपालन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान ने गौ संरक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गौवंशों का टीकाकरण आवश्यक है। 2,62,400 गौवंशी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। गौवंशों को खुरपका, मुंहपका, एक विषाणु जनित संक्रमण रोग से बचाना है। उन्होंने कहा कि संक्रमण जनित पशुओं को बुखार आता है, मुंह से लार गिरती है, पैरों में छाले पड़ते हैं और चारा खाना छोड़ देता है, तो उसे पशुओं के झुंड से अलग कर दिया जाए। वर्षा काल में पशुओं को चारा, दाना, भूसा प्रतिदिन दिया जाए। गौवंशों का ईयर टैग आवश्यक है। राजमंत्री एक पेड़ माँ के नाम मुरतगंज गौशाला में आम का वृक्ष रोपित किया। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमें फल के साथ साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। पौधों का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने महिला उत्पीड़न मामलों की जनसुनवाई की। उन्होंने बताया कि महिला उत्पीड़न के मामलों में दहेज हत्या, घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न में 2 दर्जन से अधिक फाइलों की जनसुनवाई की गई। जिला प्रशासन अधिकारियों को शिकायती पत्रों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कौशाम्बी जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को जागरूक किया गया। जिला अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार पाल ने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को जागरूक किया गया। रासायनिक खाद, बीज और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण संतुलित उर्वरक का प्रयोग करने के लिए किसानों को जानकारी दी गई। मृदा परीक्षण स्वास्थ्य कार्ड भी किसानों को जारी किया गया। कौशाम्बी जिले में संकल्प अभियान के अंतर्गत हर बच्चा स्कूल जाए गांव-गांव भ्रमण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्षा कल्पना सोनकर ने कहा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 100% स्कूलों में नाम दर्ज किया जाए। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क किताबें, यूनिफार्म, जूते, मोजे क्रय करने के लिए अभिभावकों के खाते में धनराशि जारी की गई। शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि बच्चों का प्रवेश कराकर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाए। कौशाम्बी जिले में किसानों को खरीफ फसलों के बीज

0: निःशुल्क वितरित किया गया। उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि किसान ऑनलाइन आवेदन स्मार्टफोन या जनसेवा केंद्र से कृषि विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। किसानों को अरहर, उर्द, मूंग, तिल, सावा, कोदो, रागी, संकुल बाजरा, संकुल ज्वार, काकुन और कुटकी के बीज वितरित किया गया। चायल विकास खंड में 1546, मूरतगंज विकास खंड में 1495, नेवादा में 1898, मंझनपुर में 1713, सरसवा में 2234, कौशाम्बी में 2783, सिराथू में 1978 और कड़ा में 1824 किसानों को बीज वितरित किया गया। कौशाम्बी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सिराथू विकास खंड में साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण साक्षरता अभियान का आयोजन ब्लॉक परिषद में किया गया। पैरा विधिक स्वयं सेवा सतीश सिंह ने बताया कि लोगों को नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन योजना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कानूनी सेवाओं के लिए गरीब बेसहारा लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में वृक्षारोपण महायज्ञ दिवस पर कपिवन आश्रम में फलदार आम का पौध मंडलायुक्त ने रोपित किया। मंडलायुक्त समय अग्रवाल ने बताया कि वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत कपिवन में एक पौध आम का रोपित किया। उन्होंने कहा कि 39,81,200 पौध रोपण का लक्ष्य जिले को निर्धारित किया गया है। वन विभाग द्वारा 24 लाख, कृषि विभाग द्वारा 7 लाख, उद्यान विभाग द्वारा 3 लाख तथा पर्यावरण विभाग द्वारा 1 लाख, पंचायती राज विभाग द्वारा 1 लाख, राजस्व विभाग द्वारा 1 लाख, नगर विकास विभाग द्वारा 74,000, पशुपालन विभाग द्वारा 23,000, स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा 19,000, सिंचाई विभाग और जलकर संसाधन एवं रेलवे द्वारा 15,000, लोक निर्माण विभाग द्वारा 14,000, उद्योग विभाग द्वारा 11,000, बेसिक शिक्षा एवं गृह विभाग द्वारा 9,000, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 8,000, नमामि गंगे द्वारा 7,000, सहकारिता एवं शिक्षा विभाग द्वारा 5,000, श्रम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा 2,000 पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में जिला जेल का जिला जज द्वारा निरीक्षण किया गया। जिला कारागार अधीक्षक अजतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कारागार की साफ सफाई, मरीजों का उपचार और बंदियों को भोजन वितरण की एक एक बंदी से जानकारी ली गई। महिला बंदियों से उनके साथ मौजूद बच्चों के खान पान एवं दुग्ध वितरण की जाँच की गयी। जिला कारागार में निरुद्ध असहाय बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, भी आप देशगान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: रात कितनी ही तारीख क्यों ना हो, सुबह का सूरज हमेशा एक नई उम्मीद लाता है। इसी पैगाम के साथ रेडियो प्रयागराज मरकज से मैं निकहत सिद्दीकी आपकी रफीक सफर एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम। पुरखलूस आदाब कबूल फरमाएं। सामिन, अदब इंसानी जज्बात का वो आईना है जिसमें हम अपना अक्स देखते हैं, और जब हम बज़्मे अदब को आरास्ता करते हैं तो इसके दो अजीम सुतून हमारे सामने आते हैं, एक है नस्र और दूसरा है नज्म। नस्र जहां हमारे फहमो इदराक को शऊर और संजीदगी का लहजा अता करती है, वहीं नज्म हमारे दिल की धड़कनों को सुर ताल और तासीर बख्शती है। आज की इस महफिल में हम इन दोनों असनाफ से आपकी समातों को मुअत्तर और शादाब करेंगे। तो सामिन, उर्दू बज्म का बाकायदा आगाज करते हैं नस्र की सदारत से। नस्र यानी वो इजहार ख्याल जो बहर रदीफ और काफिये के बंदिशों से आजाद होकर भी अपने अंदर मानी का एक बेकरा समंदर समेटे रहता है। आज की इस महफिल में नस्र निगारी की नुमाइंदगी के लिए पेशे खिदमत है एक नहायत ही मुनफरिद मकाला जिसका उनवान है उर्दू में जासूसी नॉवेल निगारों की रिवायत और इब्ने सफी का मुकाम। मकाला निगार हैं जनाब आफताब रश्क मिसबाही। समाद फरमाएं।
1: इंसानी जिबिलत का एक बुनियादी और कदीम तरीन वस्फ तजस्सुस है। कुछ जानने, कुछ खोजने और नादीदा दुनिया के असरार से पर्दा उठाने की यही तड़प जब अदब का लिबास ओढ़ती है तो उसे

हम जासूसी फिक्शन या सस्पेंस के नाम से जानते हैं। एक तवील अरसे तक उर्दू के संजीदा अदबी हलकों में जासूसी नावल निगारी को अवामी या बाजारी अदब कहकर नज़रअंदाज किया जाता रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस सिनफ अदब ने करोड़ों कारीन को किताब की समत मोड़ा, उनमें मुताले का ज़ौक पैदा किया और उर्दू ज़बान को घर घर पहुँचाया, वो यही जासूसी अदब है। और जब हम उर्दू जासूसी फिक्शन का नाम लेते हैं तो एक ऐसी अबकरी शख्सियत का नाम जहन के उफक पर उभरता है जिसने उस पूरी रिवायत को बदल कर रख दिया, यानी मोहतरम इब्न सफ़ी। उर्दू में जासूसी फिक्शन का सफ़र अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसके नकूश हमारे कदीम दास्तानों में पाए जाते हैं। हमारी क्लासिकी दास्तानों जैसे दास्तान अमीर हमज़ा या तिलिस्म होशरुबा में जो अय्यार होते थे, मसलन उमर अय्यार या अफरासियाब, वही दरअसल हमारे कदीम सुराग रेसा या जासूस थे। चेहरा बदलना, भेस बदलकर दुश्मन के कैंप में घुसना, खुफिया इशारों का इस्तेमाल करना और अपने ज़हानत से मुहिम सर करना, ये तमाम अनासिर दौर जदीद की जासूसी के ही इब्तदाई रूप थे। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में जब मगरबी अदब के असरात हिंदुस्तान पर पड़े तो जासूसी अदब बाकायदा सिनफ की शक्ल में उभरा। इस दौर में मुतरजमीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तीरथ राम फिरोजपुरी, उन्होंने अंग्रेज़ी के मशहूर जासूसी नाविलों, ख़ास तौर पर आर्थर कोनन डॉयल के शरलॉक ह्यूम्स के बेशुमार तर्जमे किए। इन तर्जमों ने उर्दूदा तबके में सस्पेंस और सुराग रसानी का एक नया ज़ौक पैदा किया। इसी तरह 1913 में जफ़र उमर ने नीली छतरी के नाम से एक नाविल लिखा जिसे उर्दू का पहला बाकायदा जासूसी नाविल तस्लीम किया जाता है। यह नाविल अपने दौर में इतना मकबूल हुआ कि उसकी मांग को पूरा करना पब्लिशर्स के लिए मुश्किल हो गया। उसके बाद नदीम सहबाई जैसे बहुत से मुसन्निफीन ने भी तबाज़ाद नाविल लिखे, लेकिन उस इब्तदाई दौर के नाविलों में प्लॉट की खामियां थीं, ज़बान में तर्जमे का बोझ था और माफ़ोकुल फितरत या गैर मंतकी अनासिर ज़्यादा थे। ये वो मोड़ था जहां उर्दू जासूसी अदब को एक मसीहा की ज़रूरत थी जो उसे एक बाकायदा और मोतबर फन का दर्जा दिला सके। 20वीं सदी के वस्त यानी 1952 में जब इलाहाबाद के एक नौजवान अस्सार अहमद ने इब्ने सफ़ी के कलमी नाम से लिखना शुरू किया तो उर्दू फिक्शन की दुनिया में एक जलजला आ गया। ये वो दौर था जब मुल्क की तकसीम के बाद हर तरफ इस्तराब था और उर्दू बाज़ारों में सस्ती रुमानियत और गैर मेयारी अदब की भरमार थी। ये दावा किया जाता था कि अवाम सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं। इब्न सफ़ी ने इस नज़रिए को यकसर मुस्तरद किया और पाकीज़ा सस्पेंस से भरपूर और आला अखलाकी अकदार के हामिल नाविल पेश किए। उन्होंने दो ऐसी लाजवाब सीरीज तख्लीक की जिनकी मकबूलियत आज भी बरकरार है। जासूसी दुनिया, जिसके मरकज़ी किरदार कर्नल अहमद कमाल फरीदी और कैप्टन साजिद थे। इमरान सीरीज, जिसका मरकज़ी किरदार अली इमरान था। इब्न सफ़ी कहानियाँ नहीं बुनते थे, बल्कि वो एक माहिर नफ्सियात और मेमार की तरह अपने नाविल की कायनात तख्लीक करते थे। उनके फ़न की चंद ऐसी खसूसियात हैं जो उन्हें दुनिया के किसी भी बड़े क्राइम राइटर के हमपल्ला खड़ा करती हैं। इब्न सफ़ी के किरदार गोश्त पोस्त के इंसान हैं। कर्नल फरीदी का किरदार एक ऐसे कानून पसंद, इंतहाई ज़हीन, बावक़ार और संजीदा इंसान का है जो मुजरिम की नफ्सियात का गहरा इल्म रखता है। दूसरी तरफ अली इमरान का किरदार है MSc PhD। ये उर्दू फिक्शन का सबसे अनोखा और सेहरांगेज किरदार है। वो बज़ाहिर एक अहमक, मसखरा और लाउबाली नौजवान नज़र आता है, लेकिन दर हकीकत एक खौफनाक हद तक ज़हीन, चट्टान की तरह मजबूत और सीक्रेट सर्विस का चीफ X2 है। इमरान का किरदार मजाह और सुराग रसानी का एक ऐसा लाजवाब इम्तिजाज है जिसकी मिसाल आलमी अदब में भी कम मिलती है। इब्न सफ़ी की सबसे बड़ी ताकत उनकी ज़बान थी। उन्होंने जासूसी नाविल को बाज़ार की आमियाना ज़बान से निकाल कर दिल्ली और लखनऊ की शाइस्ता, टिकसाली और चाशनी से भरपूर अदबी ज़बान अता की। उनके नाविलों में तंज़ो मज़ाह का अंसुर इतना लतीफ़ होता था कि क़ारी मुस्कुराए बग़ैर नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर एक जगह इमरान अपने वालिद से कहता है, अब्बा जान, दुनिया में दो ही चीज़ें देखने के लायक हैं, एक आपका गुस्सा और दूसरी मेरी बेगुनाही। आज से 70-80 साल पहले इब्न सफ़ी ने अपने नाविलों में जिन साइंसी इजादात, ब्रेन वाशिंग के तरीक़ों, नफ्सियाती अमराज और केमिकल्स का जिक्र किया, वो उनके वसी मुताले और साइंसी बसीरत का सबूत था। वो सिर्फ जुर्म की दास्तान नहीं सुनाते थे, बल्कि जुर्म के पीछे छुपी

कि निगाह वक्त के सूरज पे आई जाती है, कि निगाह वक्त के सूरज पे आई जाती है, चिरागे सुबह की लौ झिलमिलाई जाती है, कि चिरागे सुबह की लौ झिलमिलाई जाती है, और ज़हीन बच्चों को आए न नींद क्यों आखिर, कि ज़हीन बच्चों को आए न नींद क्यों आखिर, उन्हें पुरानी कहानी सुनाई जाती है, कि उन्हें पुरानी कहानी सुनाई जाती है, और सुकून बख्श है तरके ताल्लुकात अगर, कि सुकून बख्श है तरके ताल्लुकात अगर, ये आँख किस लिए फिर डबडबाई जाती है, कि ये आँख किस लिए फिर डबडबाई जाती है, और वफा पसंदों की ही बेवफाइयों के सबब, कि वफा पसंदों की ही बेवफाइयों के सबब, तरह तरह से वफा आजमाई जाती है, तरह तरह से वफा आजमाई जाती है। एक दूसरी गज़ल का मतलब और चंद अशआर मुलाहज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि खुद कफीली थी तो अमान में था, कि खुद कफीली थी तो अमान में था, इस्तेकामत के सायबान में था, कि खुद कफीली थी तो अमान में था, इस्तेकामत के सायबान में था, और अब ज़रूरत नहीं तो ज़िक्र नहीं, कि अब ज़रूरत नहीं तो ज़िक्र नहीं, कल तलक खूब वो बयान में था, कि कल तलक खूब वो बयान में था, और था मुआफिक हवा का रुख लेकिन, कि था मुआफिक हवा का रुख लेकिन, ऐब कश्ती के बादबान में था, कि ऐब कश्ती के बादबान में था। और मुलाहज़ा फरमाएं कि मुझसे पहले पहुंच गया मुझ तक, कि मुझसे पहले पहुंच गया मुझ तक, जाने वो किसके कारवान में था, कि मुझसे पहले पहुंच गया मुझ तक, जाने वो किसके कारवान में था। और मुलाहज़ा फरमाएं कि हम ही थे जो सबक न ले पाए, कि हम ही थे जो सबक न ले पाए, वरना सब कुछ तो दास्तान में था, कि हम ही थे जो सबक न ले पाए, वरना सब कुछ तो दास्तान में था। और उसके हिस्से ज़मीन ही आई, कि उसके हिस्से ज़मीन ही आई, जो ख्यालों में आसमान में था, कि इसके हिस्से ज़मीन ही आई, जो ख्यालों में आसमान में था। मुलाहज़ा फरमाएं कि वक्त के ज़र्ब से वो टूट गई, ज़ोम हद से सिवा चट्टान में था, कि ज़ोम हद से सिवा चट्टान में था। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएं कि एक दूजे के गम गुसार थे सब, कि एक दूजे के गम गुसार थे सब, ये चलन पहले ख़ानदान में था, कि एक दूजे के गम गुसार थे सब, ये चलन पहले ख़ानदान में था। और कैसे देता भला जवाब कमर, कि कैसे देता भला जवाब कमर, उसका ख़त दूसरी ज़बान में था, कि उसका ख़त दूसरी ज़बान में था। मुलाहज़ा फरमाएं एक गज़ल का और एक मतला और दो तीन शेर हाजिर कर रहा हूँ कि दौरे जफा में खून की तहारत का इम्तिहान, कि दौरे जफा में खून की तहारत का इम्तिहान, हम दे रहे हैं रोज़ शराफत का इम्तिहान, कि दौरे जफा में खून की तहारत का इम्तिहान, हम दे रहे हैं रोज़ शराफत का इम्तिहान, और नज़रों में रख के अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी। मुलाहज़ा फरमाएं कि नज़रों

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

कार्यक्रम में आज आप मल्लिका चटर्जी के स्वर में गाए भजनों का आनंद लेंगे। तो आइए सुनते हैं मल्लिका चटर्जी के स्वर में गाया ये भजन।

सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इस वक्त आप सुन रहे हैं मल्लिका चटर्जी के स्वर में गाए भजनों को। और एक और भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है मल्लिका चटर्जी के।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप मल्लिका चटर्जी के स्वर में गाए भजनों का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को

0: सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संद्रिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि असाधारण साहस, अटूट समर्पण तथा उच्चतम मानकों के साथ सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ अटूट साहस, असाधारण कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: टी में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05:25 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। वॉइस ऑफ प्रयागराज में आज आप स्वर और आलेख हैं मधु कुमार की और प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की है।
4: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का नमस्कार। आज की वॉइस ऑफ प्रयागराज में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी नींव है, जो हमारी छांव है और जो हमारी छत है। दोस्तों, घर की जो सबसे पुरानी और मजबूत छत होती है ना, वो अक्सर धूप और बरसात अकेले झेलती है ताकि नीचे रहने वाले सुरक्षित रह सकें। हमारे घर के बुजुर्ग भी ठीक वैसे ही होते हैं। आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में जहां हम सब अपने भविष्य के पीछे भाग रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं हमारे वो बुजुर्ग जिनके हाथों ने कभी हमें चलना सिखाया था। आज हम बात करेंगे उनके अकेलेपन की, उनकी उन खामोश तकलीफों की जो वो अक्सर किसी से नहीं कह पाते। ढलती उम्र की ढलती शामें अक्सर सूनी हो जाती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब दीवारें रोती हैं। पैसा, शोहरत सब कमा लिया इस जमाने में, मगर तरस गए माँ

0: बाप बच्चों के साथ एक चाय पीने में।
1: बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: दोस्तों, अभी आपने ये गीत सुना। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या जो हमारे बुजुर्गों के सामने है, वो कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, वो है अकेलापन, लोनलीनेस। एक उम्र के बाद जब बच्चे अपने काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं या अपनी व्यस्त दुनिया में खो जाते हैं, तो घर के उन बड़े बुजुर्ग के पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। खाली कमरा, टिक टिक करती घड़ी, पुरानी तस्वीरें, बस यही उनकी दुनिया बनकर रह जाती हैं। अकेलापन सिर्फ मन को ही नहीं, शरीर को भी बीमार कर देता है। डिप्रेशन, याददाश्त कमजोर होना, बेवजह का चिड़चिड़ापन और डर, ये सब इसी अकेलेपन की देन है। तो चलिए आज हम सीधे बात करते हैं समाज के उन लोगों से जो इस दर्द को महसूस कर रहे हैं।
1: जी, योगेश जांगड़े, और हम अपने एक विषय पर बात करना चाहेंगे कि जो हमारे माता पिता हैं या जो हमारे दादा दादी लोग हैं, हम हमेशा उनके साये में पले बढ़े हैं, और आज के दौर में जहां कई लोग छोटे फैमिली का ख्वाहिश रखते हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि हम अभी भी संयुक्त परिवार में निवास करते हैं और लगातार हर सुख दुख, हर अच्छे बुरे दौर में उनके साथ रहते हैं। और हमारा तो मूल काम खेती बाड़ी का है, तो ज्यादातर हम जो भी खाली समय हमारा होता है, तो अपने माँ बाप का ख्याल रखना, दादी लोगों का ख्याल रखना, उनका हाल चाल पूछना, किसी भी परेशानी में उनका पूरा मतलब मदद करना, ये सारी चीजें हम कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से मतलब पूरी तरह से कर पाए। यही कहना चाहेंगे कि हम आज अगर अपने माँ बाप का सेवा करेंगे या करते दिखाई देंगे, तो हमारे जो आने वाले भावी पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे जो वृद्धावस्था का समय आएगा, तो हमारा उसी ढंग से बेहतर ढंग से ख्याल रख पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही से सीखते हैं, वही संस्कार अपनाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यह समझ में आता है कि आने वाले समय में

0: इन सब चीजों को देखेंगे तो वो भी अपने मतलब जो हम सेवा भाव अपना रहे हैं वो अब भी अपने माता पिता के लिए इस भाव को आगे रखेंगे और आने वाले भावी पीढ़ी इससे बहुत कुछ सीखेगा।
1: आपकी ये बात हमें सीधे दिल पर चोट करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये आवाज आज कई बच्चों के कानों तक जाएगी और वो इस बात की पहल करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी आपने जो बातचीत सुनी उस दर्द को महसूस करते हुए ऐसा ही एक गाना हम लोग सुनते हैं जो माता पिता के निस्वार्थ प्यार को बयां करता है।

0: दोस्तों हमारे साथ लाइन पर एक और श्रोता हैं जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं इसी विषय पर। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: मैं मधु कनौजिया, पुलिस लाइन से।
0: जी मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का जो अकेलापन है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि इससे संबंधित कुछ बातें अगर आपको कहनी हो तो जरूर बताएं।
1: जी मैम, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे मम्मी और पापा हैं, मैं शहर बाहर मेरी शादी हुई है
0: जी,
1: और वो लोग एकदम अकेले रहते हैं। जब भी फोन करो तो मेरी मम्मी एकदम मतलब उदास होकर बोलती हैं कि बच्चे ऑफिस चले गए, जो घर में छोटे बच्चे पोता पोती हैं वो स्कूल चले जाते हैं, कोचिंग चले जाते हैं, घर में एकदम खालीपन रहता है। और हम लोग इस उम्र में जब हम लोग इतना उन्हें बड़ा किए हैं इस सहारे के लिए कि हाँ वो मेरी सेवा करेंगे, हमसे बात करेंगे, लेकिन आज के समय में वो मैम इतना मोबाइल से बैठे रहते हैं, वो लोग एकदम
0: मतलब बातचीत कम होती है। हाँ हाँ
1: जी, किसी के पास टाइम ही नहीं कि उनसे पूछे हाल चाल कि हाँ वो कैसे हैं, उन्होंने क्या किया दिन भर में, कुछ भी नहीं। अच्छा। सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है, मम्मी की बातों से बहुत लगता है दुख, पर क्या करें मैम, इतना दूर है, हम लोग भी अपनी बुरा लगता है, इस उम्र में भी उन्हें इतना परेशान होना पड़ता है।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि अकेलापन जो होता है ना वो बहुत बड़ी अपने आप में ही एक बीमारी होती है। मतलब घर में सबका साथ है लेकिन साथ भी नहीं है।
1: नहीं है जी
0: जी जी जी, तो आपने
1: तो
0: देखिए,
1: हम तो बस यही कहेंगे सबसे मैम कि प्लीज मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, अपने घर में जो आपके बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, उनसे पूछिए, उनकी आप भी जानिए कि वो कैसे रहे, कैसे उन्होंने इतना संघर्ष किया आपको यहाँ तक पहुँचाने में।
0: जी मधु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और आशा करते हैं आपकी इस हमारी बातचीत को जो भी श्रोता सुन रहे होंगे उनको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमारे आसपास एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हमारे बुजुर्ग वाकई अकेलापन रोज़ झेलते हैं और इंतजार करते बच्चों का।
1: जी बच्चे विदेश रहते हैं, सोचिए उनका क्या हाल होता होगा।
0: सही बात है, बिल्कुल सही कहा, तो और भी अकेले हो जाते इतनी दूर से सिर्फ फोन से बात, वो भी कभी कभी नहीं, वहाँ की लाइफ तो और बिजी रहती है,
1: और बिजी रहती है, मेड के सहारे छोड़ के चले जाते हैं, वो भी आई नहीं आई, खाना बनाई नहीं बनाई।
0: जी जी जी,
1: चीजें बहुत

0: दुखदाई, वो सोच के देखे कि उनके साथ अगर ऐसा हो तो उन्हें कैसा लगेगा।
1: सही बात है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिससे हम सभी को गुजरना है।
0: सभी को गुजरना है। जी मैम
1: जी, जो मधु जी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों को समय देना बहुत ही आवश्यक है, और आपने अपने विचार हमारे इस कार्यक्रम में साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और अभी हमने जो बातचीत सुनी वो एक कहानी नहीं है, हमारे देश के लाखों बुजुर्गों की यही दास्तान है। लेकिन क्या कोई इसका समाधान नहीं है? बुजुर्गों को हमसे बड़ी चीजें नहीं चाहिए, इस उम्र में उन्हें महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले वो भी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका थोड़ा सा वक्त।

दोस्तों, बुढ़ापा एक चक्र है। आज जो आपके माता पिता हैं, कल आप भी उस मुकाम पर होंगे। बुजुर्गों को अकेला छोड़ने की बजाय उन्हें घर के फैसलों में शामिल करें और उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, ताकि उन्हें लगे कि इस घर में भी उनका कोई वजूद है। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ बैठकर मुस्कुराकर दो घड़ी बात जरूर करिए। याद रखिएगा, ये दवाओं से बढ़कर दवा है अपनों का साथ, और इस उम्र में अपने बच्चों का साथ।

तो दोस्तों, आज के इस सफ़र को समेटने का अब आ गया है वक्त। लेकिन चलते चलते मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि पेड़ कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसकी छांव हमेशा ठंडी ही होती है। अपने बुज़ुर्गों को अकेलापन मत दीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए। उनको कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करवाएं जहां उनके हम उम्र के लोग हों, जो आपस में बैठकर बातचीत कर सकें, दो घड़ी मुस्कुरा सकें और कुछ योगाभ्यास भी कर सकें। अगर अब आप घर जाएं तो फ़ोन को थोड़ी देर अलग रख दीजिए। अपने माता पिता, अपने दादा दादी के पास बैठें, उनका हाथ थामें और कहें, हम आपके साथ हैं। टहनियों के पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, कुछ दिन में खुद ही झड़ जाएंगे। कभी अपने बुजुर्गों के साथ वक्त बिताया करो तुम, एक दिन केवल तस्वीर में ही रह जाएंगे। कुछ कर लेने दो तुम उनको उनके हिसाब से, क्योंकि एक दिन सब तुम्हारे लिए ही छोड़ जाएंगे। बार बार वही बात दोहराने पर मत रोको टोको तुम, एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। आज का ये प्रोग्राम दोस्तों आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और इसको बताने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 800-492-6250। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए और दीजिए मधु को इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम। स्वर और आलेख था मधु कुमार का, प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं सीमा उपाध्याय, कल्लू निराला और साथी, और साथ ही आप सुनेंगे सावित्री श्रीवास्तव के स्वर में गाए लोकगीत। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं सीमा उपाध्याय के स्वर में गाया ये देवी गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम, और अब लीजिए सुनिए कल्लू निराला और साथियों के स्वर में गाया ये लाचारी गीत।

आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और आप लीजिए सुनिए सावित्री श्रीवास्तव के ही स्वर में गाया ये कहरवा गीत।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बनी रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। नमस्कार श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ ऐसे नाम होते हैं जिन्हें केवल संगीतकार कहना उनके व्यक्तित्व को सीमित करना होगा। वे संगीत के सृजनकर्ता होते हैं, धुनों के जादूगर होते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत समर्पित है एक ऐसे ही महान संगीतकार को जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को न केवल मधुरता दी बल्कि उसमें शास्त्रीय संगीत, लोकधुनों और पश्चिम

संगीत का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महान संगीतकार, गीतकार, लेखक और कवि सलिल चौधरी की।

दोस्तों, सलिल चौधरी का जन्म 19 नवंबर 1922 को बंगाल में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत का गहरा संस्कार मिला। उनके पिता को संगीत से विशेष लगाव था और घर में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों और संगीत की धुनों का वातावरण रहता था। यही कारण था कि सलिल चौधरी के व्यक्तित्व में बचपन से ही संगीत के प्रति गहरी रुचि विकसित हुई। लेकिन सलिलदा केवल संगीतकार ही नहीं थे, वे एक संवेदनशील लेखक, कवि और विचारशील व्यक्तित्व भी थे। उनके जीवन में साहित्य और संगीत का अद्भुत मेल दिखाई देता है।

0: कभी तो हंसाए,
1: श्रोताओं। सलिल चौधरी का संगीत सुनते ही ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं हमारे सामने आकर गुनगुनाने लगी हो। पहाड़, झरने, बादल और हरियाली, इन सबको उन्होंने अपनी धुनों में कुछ इस तरह पिरोया कि गीत केवल गीत नहीं रहे बल्कि एक खूबसूरत दृश्य बन गए। उनका संगीत और प्रकृति की खूबसूरती के कारण हम सभी के मन को उसी तरह मोह लेता है जैसे कि ये गाना।
2: ओ सजना।

श्रोताओं, सलिल चौधरी के संगीत की एक खासियत ये भी थी कि वे गीत के भाव को समझते थे। विरह हो, प्रेम हो, प्रकृति हो या जीवन का संघर्ष, हर भावना के लिए उनकी धुन का अपना एक रंग था। उनके संगीत में हमें बंगाल की लोकधुनों की मिठास, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई और पश्चिमी संगीत की ऑर्केस्ट्रल तकनीकी, तीनों का अनोखा संगम देखने को मिलता है।

दोस्तों, सलिल चौधरी की संगीत यात्रा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने बंगाली और मलयालम सहित कई भाषाओं में संगीत दिया। उनकी धुनों में एक ओर भारतीयता की गहरी जड़ें थीं, तो दूसरी ओर पश्चिमी सिम्फनी और ऑर्केस्ट्रा की झलक भी दिखाई देती थी। वे एक ऐसे संगीतकार थे जो एक ही धुन में कई वाद्य यंत्रों का ऐसा संयोजन करते थे कि गीत सुनते समय हर बार कोई नया संगीत सुनने को मिलता था।

बारिश की पहली बूंद, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों पर ठहरी बूंदें और मन में जागता हुआ कोई पुराना प्रेम। बारिश का मौसम अपने साथ कितनी ही यादें लेकर आता है। सलिल चौधरी की ये धुन जैसे सावन की फुहार बनकर मन को भिगो देती है। लता मंगेशकर की मधुर आवाज में सुनिए एक ऐसी रचना जिसमें सावन भी है, प्रेम भी है और प्रतीक्षा भी।

0: श्रोताओं, सलिल चौधरी को मिले प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की अगर बात की जाए तो उसमें तो बहुत सारे हैं, मगर कुछ चुनिंदा हमारे पास हैं जो कि हम आपको बताते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 1959 में फिल्म मधुमति के संगीत के लिए इनको मिला। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1988 में संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इनको दिया गया। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड 1973 में, उत्तर प्रदेश फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार 1966 में उनकी निर्देशित फिल्म पिंजरे के लिए पंक्षी के लिए दिया गया। उनकी निर्देशित फिल्म पिंजरे के पंक्षी के लिए दिया गया।
1: तस्वीर तेरी दिल में

श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना महान संगीतकार सलिल चौधरी के जीवन और उनके संगीत की उस अनूठी दुनिया को, जहां हर धुन में एक कहानी है, हर सुर में एक भावना है और हर गीत में जिंदगी का कोई न कोई रंग छिपा है। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने की सबसे सुंदर भाषा है। आज सलिल चौधरी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी धुनें आज भी हमारे साथ हैं। उनके संगीत को सुनते हुए मन कह उठता है, कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वे हर बार सुनने पर एक नई कहानी कहती हैं। कुछ संगीतकार चले जाते हैं दुनिया से दूर, लेकिन उनके सुर हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं। और इन्हीं अमर सुरों को सलाम करते हुए अब हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। हमारा आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम आधारित था एक ही कलाकार पर, और हमारे आज के कलाकार थे सलिल चौधरी।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में अभिनेत्री फिल्म से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, शब्द रचना मजरूह की।

मन मेरा, अरे रे रे रे रे दुखता है, हाँ रुको व्याकुल।

श्रोताओं, अगला गाना सुनिए कुमार शानू और साथियों की आवाज में शिकारी फिल्म से। संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, शब्द रचना समीर की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म का ये गाना। संगीत है इस

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: सुनते हैं हिंद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
2: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपंडेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता।

0: को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over alleged police action during students' protest over the NET issue. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., Lok Sabha Speaker Om Birla congratulated India's star weightlifters Mirabai Chanu, Chanambam Rishikanta Singh, Raja Muthupandi and para power lifter Chandu Kumar on winning medals at the 23rd Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla warned that he will be forced to take action against those members who are attempting to undermine the traditions and decorum of the House. In the Rajya Sabha, the scene was no different. When the House assembled to begin its proceedings at 11 a.m., union ministers laid papers on the table. Amid the uproar by the opposition members, the House was adjourned till 12 noon. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Supreme Court today agreed to hear tomorrow a batch of pleas alleging excessive use of police force against students protesting over the issue of examination paper leaks. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joymala Bagchi and V. Mohana also agreed to take up a separate plea filed by a few family members of those police personnel who were attacked during the protest, along with other listed petitions. Meanwhile, Chief Justice Surya Kant today observed that the right to peaceful and lawful protest is constitutionally protected. Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the centre, said he will assist to the court. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said the task force will focus on examination reforms, and based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of upcoming examinations. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. In Nagaland, the Indian Air Force IAF continued its aerial humanitarian operations, evacuating stranded passengers from different parts of the state following widespread disruption of road connectivity caused by the ongoing monsoon-related incidents. Two Indian Air Force helicopters were deployed to the EAC headquarters in Namsang Circle under Longleng District. They've successfully evacuated a total of 42 stranded passengers. Earlier on the 20th

0: The 3rd and 24th of July, the IAF had evacuated a total of 148 stranded passengers. The nation is paying tribute to former president and renowned scientist Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary today. He played a crucial role in India's space and missile development programs. Dr. Abdul Kalam is also known as the Missile Man of India. He died on this day in 2015. News just in, the government has introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. India's weightlifting queen Mirabai Chanu has won the first gold medal for the country at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. She dominated the women's 48-kilogram weightlifting event with a record-breaking total lift of 190 kilograms. India's medal tally now stands at 4 with 1 gold, 2 silver and 1 bronze. Para power lifter Chandu Kumar had opened the country's account with a bronze medal in the men's heavyweight event on the opening day of the competition. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Odisha and Chhattisgarh today. IMD said Odisha will experience widespread to extremely heavy rainfall under the influence of a depression over the northwest bay of Bengal. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे दिन में 12:15 पर कमला बोस का ख्याल गायन और रात 10:30 पर नम्रता देव का ख्याल गायन। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी नीरा त्रिपाठी की वार्ता, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता विकल्प या आवश्यकता। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 2:30 पर। शाम 5 बजे नन्ही दुनिया कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने सुनेंगे आओ जाने दर्पण में हमारा चेहरा कैसे दिखाई देता है। शाम 5:15 युववाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे अमित शर्मा की वार्ता, खाद्य सुरक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे छंगूलाल लहरी और साथियों की आवाज में लोकगीत और सबरेज अहमद से लोकभाषा कविता पाठ। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा अनिल रंजन भौमिक की वार्ता, भारतीय सिनेमा और सामाजिक यथार्थ। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी मंजू नारायण। रात 8:30 पर विज्ञान जगत। रात 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब हम आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। लालती देवी पत्नी स्वर्गीय लालचंद्र यादव निवासी तारडीह उर्फ सूदी का पूरा थरवई प्रयागराज सूचित करती हैं कि इनकी पुत्री लक्ष्मी देवी उम्र 22 वर्ष इकहरा बदन रंग सांवला आंख नाक कान गला औसत इनके बाल काने काले घने व लंबे हैं। ये 3 जून 2026 से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने नीले रंग की जीन्स और सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहन रखा था। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें

8423821244। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 8423821244। एक और सूचना सुनिए, श्रीमती गुड्डी पत्नी राजकुमार निवासी 335/63 पूरा दलेल अल्लापुर प्रयागराज सूचित करती हैं कि इनकी पुत्री रिया उम्र करीब 17 वर्ष, लंबाई 150 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य है। ये 14 जून 2026 से लापता हैं। लापता तो होने के दिन इन्होंने सलवार कुर्ता पहन रखा था। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर संपर्क करें। श्रीमती गुड्डी पत्नी राजकुमार निवासी 335/63 पूरा दलेल अल्लापुर प्रयागराज। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कमला बोस का राग धानी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री विनोद कुमार मिश्र, हारमोनियम पर श्री अनिल कुमार। तो लीजिए सुनिए कमला बोस का रागधानी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कमला बोस का रागधानी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री विनोद कुमार मिश्र, हारमोनियम पर श्री अनिल कुमार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सी पंक्ति आज मैंने पढ़ी, मैं अपने श्रोताओं को भी वो सुनाना चाहती हूँ जो आजकल के समय में बिल्कुल फिट बैठती है। तो पंक्तियाँ कुछ यूं हैं कि नाराज क्यों होना किसी से, नजर में रखना छोड़ दीजिए। नाराज क्यों होना किसी से, नजर में रखना छोड़ दीजिए। काम से काम रखिए बस, उन्हें मनाना छोड़ दीजिए। माफ कर दीजिए दिल से, अपना मानना छोड़ दीजिए। परवाह कर लीजिए चाहे, पर बताना छोड़ दीजिए। तो भाई, ये बात और ये पंक्तियां जो हैं बिल्कुल फिट हैं आजकल के दौर में, क्योंकि अगर आप किसी पर ज्यादा हक जताते हैं या किसी की बहुत चिंता करते हैं तो वो कहते हैं ये बहुत इंटरफेयर करते हैं। भाई, वो इंटरफेरेंस नहीं है, वो आपकी परवाह है, हमें चिंता है आपकी। तभी तो बीच बीच में लोग बताते रहते हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उस बात को लोग अन्यथा में ले जाते हैं कि ये बहुत इंटरफेयर करते हैं। तो ये थी वो पंक्तियाँ जिन्हें मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाह रही थी। और हमारे श्रोता गीत सुनना चाह रहे हैं तो वो भी हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। पहला गीत है, फिल्म का नाम है जैसे को तैसा, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और इस गीत की फरमाइश आई है सहारनपुर से मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली, वकील अहमद। नांदेड़ महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्री देवी जायसवाल। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

और अब आपकी पसंद कार्यक्रम में आ रहा है आंधी फिल्म का गीत, और इस गीत की फरमाइश आई है पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू, मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, पंकज, सीमा, तन्वी, मानवी, काजल, राजपाल, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो आपकी पसंद का आंधी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, आइए सुनते हैं।

दोस्तों, आज से लगभग 25 से 30 साल पहले का वो वक्त याद कीजिए जब लोग रिश्तों को संभाला करते थे। आज लोग मोबाइल को संभाल

करते हैं। उस समय पहले घर छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़े थे। आज घर तो बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ गई हैं। पहले लोग एक दूसरे का हाल पूछा करते थे लेकिन सवेरे सवेरे आजकल सभी एक दूसरे का स्टेटस देख लेते हैं और अनुमान लगा लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है इनके दिमाग में या ये किस दौर से गुजर रहे हैं। समय बदल गया है लेकिन प्यार और सम्मान सबसे बड़ी दौलत है, ये कभी नहीं बदलेगा। और अगर हमने रिश्तों को बचा लिया तो यकीन मानिए ये ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल बनी रहेगी। तो चलिए चलते हैं ऐसे ही एक अच्छे से गीत की तरफ। और जो गीत है उसमें आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने और गाना भी बड़ा ही सटीक बैठता है इन पंक्तियों पर कि थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। तो चलिए इस गाने के माध्यम से हम जाने कि ज़िंदगी को और भी खूबसूरत हम बना पाएंगे अगर हमारे अपनों का साथ हो।

0: सुनिए इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम।
1: जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। मालवा रेडियो श्रोता संघ से हैं जगदीश ठाकड़, नायमा, रंजूबाई ठाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी ठाकड़। छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद मुरली वर्मा। संभलपुर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। और गुलजार साहब लिखते हैं कि हम जिनके झूठ का भी मान रख लेते थे, वो समझते हैं कि हमें बेवकूफ बना दिया। और अब आ रहा है कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत सा गीत, आवाज अरिजीत सिंह की है और फिल्म का नाम है ऐ दिल है मुश्किल। जी हाँ, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन उससे पहले सुनिए ये पंक्तियाँ। जरा कुछ देर और ठहरो, दिल अभी भरा नहीं, तुम्हारे जाने के बाद कोई भी अपना लगा नहीं। यूं तो हसीन चेहरे बहुत मिले इस जहां में, मगर तुम्हारे सिवा किसी पर ये दिल कभी मरा नहीं। तो पहले तो सुन लेते हैं ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का ये गाना, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये गीत किन श्रोताओं ने पसंद किया था। लीजिए सुनिए ये गीत।

तो अभी आपने सुना ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गाना, और इसकी फरमाइश आई थी राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके परिवार के अन्य सदस्य, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, हंडिया से प्रेमचंद्र यादव, दादनपुर प्रयागराज से विकास और नीतीश आर्या, पुलिस लाइन प्रयागराज से मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, बाला कनौजिया, हनी और गौरी कनौजिया, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद, और इस कार्यक्रम में आप अपनी पसंद के गानों को सुनने के लिए अपने संदेश और अपनी फरमाइशी गानों को लिख सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 8004926250। और अब दीजिए मधु को इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी

35,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698 जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाई और मिजाइल की तरक्की के प्रोग्रामों में कलीदी किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिजाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में साबिक सत्र भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपनी आजिजाना खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लिखा कि दिफा और खिलाई साइंस के शोबों के साथ साथ मुल्क की एटमी ताकत में हिंदुस्तान की आलमी शिनाख्त में उनकी शराकतें बेमिसाल है। उनका विजन सादगी और कौमी खिदमत की लगन नौजवानों के लिए मिशाल राह है। हिंदुस्तान के वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन के 48 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता। इस दौरान ऋषिकांत सिंह चानबम ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग जुमरे में चांदी का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। हापुड़ जिले में नेशनल हाईवे 9 पर गढ़ मुक्तेश्वर थाने के इलाके में सियाना चोपला के करीब कल देर शाम एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब दिल्ली से बिजनौर जाने वाली एक 4-व्हीलर ने अपना कंट्रोल खो दिया और मुखालिफ सिम से आने वाली एक और 4-पहिया गाड़ी से टकरा गया। हापुड़ पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले नसफ दर्जन से जायद अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महकमा मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मशरकी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरियासना बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने से बदायूं में दरियाए गंगा के आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। बहने सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: माँ की ममता, बेटी का प्यार, बहू से जुड़े संसार के तार, स्त्री के बिना अधूरा है ये पूरा संसार, क्योंकि बेटी बहू या माँ के रूप में ये होती है हर रूप में अनमोल उपहार। इन्हीं पंक्तियों के साथ हाजिर हैं आपकी दो सखियाँ, मैं पूनम
1: और मैं प्रीति। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: कहीं बादल और कहीं बूंदों के बीच आज का आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। एक बार फिर करेंगे आपसे आपकी बात। तो पूनम, आज क्या क्या है हमारे पास?
0: आज हमारे पास है एक ऐसी वार्ता जिससे आप निश्चित रूप से कनेक्ट होंगी और सोचेंगी कितना सही और सार्थक है यह विषय। इनके बीच हम करेंगे आपके पसंदीदा गीतों से आपका मनोरंजन और साथ ही होगा आपके हमारे काम के गृहलक्ष्मी टिप्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, साथ ही अपने घर के रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा लीजिए, क्या पता आपके मन के रेडियो पर बज रहे इस गीत से मैच हो जाए।
1: तो चलिए

0: तो भाई ये प्यारा सा गीत जो आपने सुनवाया हमारी सखियों को बहुत पसंद आया पूनम।
1: और मुझे भी बहुत ही पसंद आया।
0: और पूनम देखो, जब हमने अपनी जैसा दोस्तों से सखियों से वादा किया है कि आज हम चर्चा भी करेंगे और ऐसे कुछ वह महत्वपूर्ण विषय हैं जो थोड़े कॉमन तो हैं पर वो इम्पॉर्टेंट बहुत है, और हम में से हर कोई, हम स्त्रियाँ खास उस पर चर्चा ज़रूर करती हैं, कभी यूं ही, कभी बैठ के, कभी तसल्ली से, चलते चलते, मतलब वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
1: सही कहा प्रीति। हर स्त्री के जीवन में अलग अलग पायदान पर अलग अलग भूमिकाओं को निभाती है और कोशिश भी यही करती है कि संतुलन हमेशा बना रहे।
0: सही कह रही हो पूनम। और देखो, उसकी कोशिशों में तो कोई कमी नहीं रहती, हाँ परिणाम जरूर हर बार अपेक्षित नहीं होता। ऐसे में हम कई तरह के पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक दबाव महसूस करते हैं।
1: श्रोताओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है नारी, बेटी, बहू, माँ और प्रोफेशन, अनेक भूमिकाओं में संतुलन।
0: देखो, ये जो संतुलन है ना, हम यही तो कोशिश करते हैं, यही प्रयास तो हमारा रहता है कि सब कुछ सही से कर लें। सबकी उम्मीदें भी यही होती हैं। और भाई देखो, आज तक नारी को इतना महिमा मंडित, आभा मंडित भी किया गया कि भाई तुम सब कुछ कर सकती हो, जो भी, जिस भी रोल में रहो, बेटी की रोल में रहो, बहू बन जाओ या फिर माँ बनो, हर चीज़ तुम 100% अच्छा करोगी, सही करोगी। पर थोड़ा थोड़ा कई बार ऐसा होता है ना कि इतना ज्यादा प्रेशर में हम परेशान हो जाते हैं।
1: देखा जाए प्रीति, तो दो प्रश्न है कि संतुलन कैसे रखें और दबाव को कैसे हैंडल करें यदि संतुलन बिगड़े तो।
0: सही कह रही हो पूनम। तो सबसे पहले तो हम स्त्रियों को खुद स्वयं को इस दबाव से मुक्त करना होगा। हमें अपनी लिमिट तय करनी होगी। और साथ में देखो, बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि जो परिवार की है ना, उसकी हमें केयर तो करनी है, लेकिन उनके साथ कुछ काम शेयर भी करने चाहिए, है ना।
1: यानी कि शेयरिंग और केयरिंग, है ना।
0: बिल्कुल हाँ, तो जैसे दोनों तरफ से होना चाहिए ना। फैमिली को भी ये देखना चाहिए कि अगर जो स्त्रियां बाहर जा रही हैं, जो वर्किंग हैं, भाई उनके पास दोहरा दबाव होता है। वो
1: बिल्कुल
0: हर काम कोशिश तो कर रही हैं, एटलीस्ट देखिए कोशिश करना कितना महत्वपूर्ण है। पर अगर कुछ रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, तो आप ये मान लीजिए कि गलतियां उनसे होंगी, गलतियां हो सकती हैं, तो थोड़ा आप अगर उनका सहयोग करेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से वो भी बच जाएंगी और आप भी।
1: यानी कि जैसे अगर कोई काम है या फिर कोई चीज़ है हमसे छूट गई है तो वो आप भी तो मैनेज कर सकते हैं ना।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तुमने देखा है ना, कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चों को ट्यूशन ढूंढना भी है या अच्छा टीचर ढूंढना है, तो वो काम भी माँ ही करेंगी।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को अगर अपने इन लॉस को डॉक्टर को दिखाना है, तो वो भी घर की बहू ही करेगी। और अगर किसी फंक्शन में जाना है, तो ठीक है तुम घर का काम निपटा लो, लेकिन वहां भी जाना उतना ही
1: हाँ
0: जरूरी है। ये भी तो हो सकता है कि चलो ठीक है, तुम आज तुम

0: हरी में रह जाओ, बाकी लोग तुम्हारे बदले चले जाते हैं, तुम घर में बैठ के थोड़ा आराम भी कर लो, और बाकी काम तुम्हें चूंकि तुम्हें निपटाना ही है तो वो निपटा भी सकते हैं।
1: यानी कि वहां पर भी दोहरा संतुलन बनाना है।
0: हाँ, तो ऑफिस में भी यही होता है कि ऑफिस में भी कई बार होता है कि हमको लगता है कि जितनी भी प्रोजेक्ट्स आए, हर प्रोजेक्ट में हम रहें, थोड़ा ये काम कम करना होगा कि नहीं, ठीक है कुछ काम आप कर सकते हैं, कुछ काम आप नहीं कर सकते हैं, और हमें अपनी जो लिमिट है, जैसा हमने पहले भी कहा ना कि अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा कि हमसे क्या क्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं हर टास्क में, हर काम में हम रहें, कुछ काम छोड़ने भी पड़ेंगे, है ना।
1: हाँ, कुछ काम छोड़ने पड़ेंगे, कुछ काम बांटने भी पड़ेंगे, और कुछ को तो ना भी कहना होगा,
0: सही
1: है ना।
0: हाँ।
1: और जो भी गलतियां हैं उनसे सीखना होगा, इसलिए ये समझना होगा कि हमसे गलतियां होंगी।
0: बिल्कुल, देखो कई बार ये लोग सोचते हैं ना कि नहीं नहीं तुम बहू हो या फिर अब मम्मी बन गई हो तो कोई गलती नहीं करोगी, ऐसा नहीं होता भाई, आखिर है तो हम भी इंसान, तो जब आप बहुत सारे दबाव में रहते तो कुछ गलतियां हो जाती हैं।
1: हाँ, यानी कि हर काम में परफेक्शन संभव नहीं है।
0: हाँ, कभी कभी दाल में नमक पड़ जाता है ज्यादा, या कभी हम दाल में नमक भूल भी सकते हैं भाई, फिर ये कहना कि भाई आप तो इतने वर्षों से खाना बना रही हैं फिर भी आज ये गलती हो गई, अरे हो जाती है। तो इसके लिए कभी ऐसी गलती हो जाए ना तो आप उतना ही इत्मीनान से रहिए, थोड़ा चिल करिए और ये मानिए, और उन्हें भी बताइए फैमिली को भी कि हाँ भाई हमसे गलती हो सकती है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। कुछ काम हम जो छोड़ के घर में जाते हैं, जो घर में मौजूद हैं वो लोग कर सकते हैं, मसलन जैसे अगर हम घर से बाहर गए हैं तो बच्चे हैं घर में तो वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल सकते हैं, जो सूख गए हैं कपड़े उनको उठा सकते हैं, घर को ठीक कर सकते हैं, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जब आप फैमिली मेम्बर्स को ये समझना होगा कि वो ये थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं तो जो गृहिणी होती है उससे भी बहुत अच्छा लगता है, उससे भी लगता है कि लोग हमारी केयर कर रहे हैं, है ना। काम
1: यानी कि अगर हम चार लोगों का या छह लोगों का काम एक साथ करेंगे तो उसमें समय लगेगा,
0: समय लगेगा,
1: और वही काम अगर छह लोगों में बट जाए तो बड़े आराम से हो जाएगा। हाँ। और हमारा प्यार भी बना रहेगा,
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: और हमें भी तो क्वालिटी टाइम मिलेगा फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। पता चला है कि जब सभी लोग फ्री हो गए हैं तब भी हम काम ही निपटा रहे होते हैं। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है पूनम कि लोग खाने का इंतजार करते रहते हैं कि बहू आएगी या फिर जो मम्मी आएंगी तो खाना देंगी तो हम खाएंगे।
1: हाँ,
0: ये थोड़ा सा कई कई बार ये सोचने वाली बात है ना कि भाई कोई बात नहीं आप खाना खा लीजिए, मम्मी को बहुत खुशी होगी अगर आपने खाना खुद से गर्म करके खा लिया। हाँ। और मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आप अगर मम्मी आती, अगर आप उनको भी खाना परोस देंगे तो उन्हें
1: हाँ,
0: और अच्छा
1: और
0: लगेगा,
1: ज्यादा खुशी होगी।
0: तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि जो बेटी है, जो बहू है, माँ है, उसे भी प्यार और केयर उतनी ही चाहिए जितना वो सबकी करती है। जरा एक बार सोचने वाली बात है ना कि वो अपना बाहर का काम भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है, सबकी देखभाल कर रही है, अगर थोड़ा सा हम उसकी मदद करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा, उसे भी वो प्यार वो केयर महसूस होगा। जैसे हमें लगता है ना कि हमसे हम ऐसा सोचते हैं, हम स्त्रियां ऐसा सोचते हैं कि भाई हम इन्हें प्यार करते हैं इसलिए हम इनका काम कर रहे हैं, बस यही बात उनके लिए भी है कि आप थोड़ी सी उनकी मदद करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से हम अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपने घर के जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में संतुलन बना पाएंगे। क्यों?
1: और बैलेंस बनाने का यही नियम भी है,
0: सही
1: कि हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट में साथ में रहना जरूरी है, साथ में करना जरूरी है।
0: हाँ, सही कहा कि साथ और अपनों का साथ जब आता है, जब थोड़ा सा हाथ बट जाता है तो चीज़ें आराम से हो जाती हैं, है ना। और देखो इतनी सारी बातें हमने सखियों से कर ली, और हमारी जो श्रोता है ना वो इससे कनेक्ट हो रही होंगी, और बाकी जो श्रोतागण सुन रहे होंगे ना वो भी कनेक्ट हो रहे होंगे। और मुझे तो लगता है कि आज कुछ लोग जो ध्यान से सुन रहे होंगे, जहाँ भी सुन रहे होंगे, आज जाके वो अपनी वाइफ को चाय तो कम से कम बना के देंगे। और इसी बात पे ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: तो पूनम, देखो जो जो चर्चा भी हम कर रहे थे उसमें हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं।
1: बिल्कुल
0: और अभी हमारे अनाउंसर जो महोदय, उन्होंने भी ये बात कही कि जो आपकी चर्चा है तो बड़ी सार्थक, और ये हम जो औरतें हैं वो जब हम बाहर का काम कर लेते हैं, काम करके फिर हम घर के काम पे लौटते हैं, हमें तो कहीं फुर्सत नहीं है, एक काम पूरा करके दूसरे काम पे आ जाते हैं, और उनकी इस बात से

0: भी इत्तेफाक रखते हैं, बात उन्होंने बहुत सही कही। और ये मैसेज है हमारे पूरे परिवार के लिए, सबके लिए, कि भाई देखिए हमें भी काम से थोड़ा आराम चाहिए होता है, तो जब हम काम से अपने घर आए तो वहाँ पर थोड़ी देर हमें आराम मिले।
1: हाँ, यानी कि थोड़ी देर का ब्रेक तो जरूर मिलना चाहिए
0: क्योंकि हमें भी तो भाई अपना मी टाइम, फैमिली टाइम चाहिए होता है। हर वक्त हम घड़ी की सुई की तरह चल नहीं सकते वैसे पूनम, हमारे जो हमारा प्रोग्राम है गृहलक्ष्मी, इसमें हम बहुत सारी बातें और ज़्यादातर हम महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, तो मैं ये बताओ कि किसी महिला के लिए जो सबसे इसेंशियल चीज़ है आज की डेट में वो क्या है?
1: पहले तो है शिक्षा, उसके बाद है स्वतंत्रता।
0: स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता जो सबसे ज़रूरी हो?
1: हमारी आर्थिक स्वतंत्रता।
0: अच्छा, हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम लोग फाइनेंशियली जब फ्री होते हैं तो उसके क्या फ़ायदे लगते हैं?
1: फ़ायदे ये हैं कि उसके लिए हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि वो हमको कुछ देगा उसके बाद फिर हम कुछ लेंगे।
0: अच्छा।
1: हम स्वतंत्र रहते हैं अपनी हर चीज़ के लिए, चाहे वो बच्चों के लिए करना हो, परिवार के लिए करना हो, या फिर खुद के लिए करना हो।
0: हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही कि जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है तो हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी आ जाती है। हम ये तय कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और किस तरह से हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। देखो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हम एक वार्ता लेकर आए हैं, बड़ी प्यारी सी वार्ता है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, ये विकल्प या आवश्यकता है? वार्ताकार है नीरा त्रिपाठी। तो पहले हम ये वार्ता सुन लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: महिलाओं की आर्थिक स्थिति अब विकल्प के रूप में नहीं बल्कि समाज के, देश के विकास के लिए अति आवश्यक हो गई है। इसके बिना एक विकसित और आत्मनिर्भर समाज की कल्पना संभव नहीं है। किसी भी देश के विकास में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक स्वतंत्रता एक जरूरी आवश्यकता है। सबसे बड़ी परिवार की सुरक्षा। जब महिलाएं बाहर निकल के काम करती हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उनको धन मिलता है। वो धन मिलने से बच्चों की परिवारिक स्वास्थ्य जीवन और पढ़ाई के स्तर में सुधार होता है और स्वास्थ्य जीवन में भी सुधार हो जाता है। दूसरा कारण है लैंगिक समानता। महिलाएं जब कमाती हैं तो वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं और वो सक्षम होती हैं, चार पैसे खर्च भी कर सकती हैं। उन महिलाओं में किसी भी काम का निर्णय लेने की शक्ति पैदा हो जाती है। वो जागरूक हो जाती हैं। जैसे पहले घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, मारतूर होती थी, तब महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं थीं, तब उनको बहुत भय सताता था, पर आज महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ जागरूक हो गई हैं। राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। सर्वे के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों के समान हो जाएगी तो देश के GDP ग्रोथ, विकास की ग्रोथ में इजाफा हो सकता है और राष्ट्रीय विकास के लिए अच्छा कदम साबित होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या पहले बहुत गरीबी थी, अब धीरे धीरे भारत गरीबी रेखा को पार करके अब आगे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार भी हो रहा है। भारत में अब महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अपने निर्णय अपने आप ले रही हैं और कामों को कर रही हैं। धन में सहभागिता निभा के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। जो काम वो कर नहीं सकती थी उन काम को भी अब करने लगी हैं। तुलनात्मक स्थिति को अगर देखा जाए तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है और आगे भी होती जाएगी, यही अनुमान लगाया जा रहा है। आज भारत की श्रम शक्ति में महिलाओं की सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो गई है। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। भारत की जनगणना को देखते हुए कुल श्रमिक संख्या में से अधिकांश श्रमिक जो हैं वो महिलाएं हैं, पुरुषों के आगे और बराबर चल रही हैं। आज देखा जाए तो स्थिति में बहुत बदलाव आया है और आज महिलाएं अपने अनुकूल समझे जाने वाले पेशे को पारंपरिक जो हैं उन्हें लगते हैं, जैसे अध्यापिका है, नर्स हैं, डॉक्टर हैं,

0: एयर होस्टेज हैं आदि क्षेत्रों में रोजगार परिदृश्य पर नजर आ रही हैं। आज महिलाएं सेना में काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रही हैं, यहाँ तक कि ट्रक, विमान, रेल तक चला रही हैं। यहाँ तक पुलिस बल, अर्धसैनिक बल में भी भूमिका निभा रही हैं। आज मीडिया में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी बढ़ चढ़ के हो रही है। महिला हर जगह पेपर में, हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आज की महिलाएं पुरुषों से किसी तरह भी कम नहीं आंकी जा सकती हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व है, महिलाओं का बोलबाला है। वो अपनी आर्थिक स्थिति निर्वहन कर रही हैं और आर्थिक स्थिति पर पहले की तुलना में जो उनकी काफ़ी मजबूत हुई है उसको संभाल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। आज के समय को देखते हुए महिलाओं का आर्थिक निर्भर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर महिलाएं आर्थिक निर्भर नहीं होंगी तो आगे आने वाले समय में उनको अपना परिवार देखना, समाज देखना बहुत मुश्किल होगा। इसकी आवश्यकता है, विकल्प के रूप में देखना सही नहीं होगा। अगर आधी आबादी को घर तक ही सीमित रखा जाएगा तो समाज उनकी बौद्धिक कार्य क्षमता से वंचित हो जाएगा। आधी आबादी को हर क्षेत्र में काम करने का अब अधिकार मिल रहा है और वो कर भी रही हैं। आर्थिक निर्भरता महिलाओं को जीवन भर असुरक्षित रखती है, विशेषकर जब संकट के समय होता है तो अगर वो आर्थिक रूप से नहीं संबल होती हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है और ऐसे समय में वो अपने को नहीं ढाल पाती हैं। पहले महिलाओं के लिए कार्य करना एक विकल्प ही माना जाता था, पर आज के युग में शिक्षा और जागरूकता ने इसे जीवन की मुख्य धारा का अहम हिस्सा बना दिया है। आज की महिलाएं नौकरी करने तक ही सीमित नहीं हैं, नारी शक्ति के तहत सरकार की योजनाओं का बहुत फायदा उठा रही हैं और सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को भी लागू किया है, जिन योजनाओं को वो अपने आगे बढ़ के लाभ उठा रही हैं और व्यवसाय कर रही हैं। अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए उनकी जो आवश्यकता है वो सरकार उनको मुहैया करा रही है। सरकार और विभिन्न संस्थाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। जो महिलाएं उन सहायताओं को ले रही हैं वो कम से कम ऋण में कार्य शुरू कर रही हैं। मुद्रा लोन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आसान दरों पे ऋण दे रही है सरकार। पीएम स्वनिधि महिला स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करता है। NRNM और स्वयं सहायता समूह SHG ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर स्वरोजगार और कृषि से जोड़ने का कार्य करती है। इसी तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी अपनी योजनाओं में बहुत तरह के ऋणों को लागू किया है और केंद्र ने समय समय पे महिलाओं के लिए कई तरह की सशक्तिकरण के साथ साथ समाज में विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और महिला सशक्तिकरण एक विकसित समाज की महत्वपूर्ण पूंजी है। इसलिए सबसे पहले ये कहना होगा कि आज महिलाओं को अपने आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर महिलाएं स्वतंत्र रहेंगी तो वो आगे बढ़ेंगी, धन अर्जित करेंगी और अपने परिवार को, अपने समाज को संबल प्रदान कर सकती हैं। आर्थिक स्थिति में महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है, जिससे महिला आगे बढ़ें और हमारी ग्रोथ में सहायता करें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, विकल्प या आवश्यकता। वार्ताकार थी नीरा त्रिपाठी। पूनम,
2: वैसे तुम इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हो कि ये आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाओं की, ये हमारा विकल्प है या आवश्यकता, तुम्हें क्या लगता है?
1: मुझे लगता है कि आवश्यकता है।
2: सही कह रही हो, मुझे भी यही लगता है कि अब ये आवश्यकता बन गई है हमारी। हाँ। क्योंकि जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं तो हम अपने परिवार को परिवार में एक महती भूमिका निभाते हैं और जो उसके जो आर्थिक जितने भी डिसीजन होते हैं, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, उसमें हम अच्छा रोल प्ले कर पाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: है ना। और जहाँ तक बात है, भले वो हम किसी भी वर्ग से आते हो, जैसा कि अभी इन्होंने चर्चा किया कि अब सरकार भी हमारी बहुत मदद कर रही है, जो घर में जो हाउसवाइफ्स हैं, जो होम मेकर हैं, या फिर आप अगर आपको कुछ

0: आता है कुछ भी, अगर आपके
1: हाँ,
0: पास
1: अगर
0: हुनर
1: टैलेंट
0: है,
1: है।
0: हाँ, तो आप कोई भी लोन लेके सरकार से, जो सरकार से मिल रहा है, अब कई बार तो कुछ एनजीओज भी देते हैं, तो आप उनकी मदद करके कुछ अपना काम कर सकती हैं। और जैसा कि हमने बातचीत में भी कहा ना, कि जब हम फाइनेंशियल फ्री होते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और एक जो सबसे अच्छी बात होती है ना, खुद में एक अच्छा फील गुड वाला फैक्टर काम करता है ना।
1: और सबसे बड़ी बात कि हम खुद के लिए कुछ कर पाते हैं, है ना।
0: हाँ, उसके लिए हमें किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी आवश्यकता है, या जो हमारे सपने हैं, उसको हम अगर अपने पैसों से पूरा कर पाते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है वो कुछ और ही होती है। और भाई देखो, अपनों के लिए तो हम लोग हर हाल में करना चाहते हैं, तो ये तो करते रहते हैं। इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हम अपनी जो हमारी सखियां हैं, जो हमारी श्रोता हैं, उनसे भी कहेंगे कि अगर आपका कोई मैसेज हो, आपकी कोई राय हो, तो हमसे शेयर ज़रूर करिएगा, है ना।
1: बिल्कुल,
0: और अभी इस बातचीत के बाद, इस खूबसूरत से बातचीत के बाद, क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुनवाया जाए।

0: तो ये प्यारा सा गीत हमारे जो श्रोता बहने सुन रही होंगी
1: हाँ
0: जरूर थोड़ा सा थिरक रही होंगी।
1: बिल्कुल
0: वैसे तुमने जो अभी बात कही मुझे बहुत पते की लगी, तो कहो तो मैं अपनी सखियों से शेयर कर लें।
1: बिल्कुल करना ही
0: देखिए भाई,
1: चाहिए।
0: पूनम अभी ये कह रही थी कि ऐसा है प्रीति कि हम लोग अब तो हर चीज़ फ़ोन में नोट करने लगे हैं, जो कॉपी पेन डायरी की जो आदत थी वो बिल्कुल
1: हाँ, कहीं
0: भूल
1: छूटती जा रही
0: छूट
1: है।
0: गई है। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि जितने भी इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे बचपन में होता था कि सब एक जगह डायरी में नोट होते थे, तो ये आदत छोड़नी नहीं चाहिए।
1: यानी कि वो नंबर हम अपने डायरी में सेव कर लें, जो कि
0: हाँ
1: हमेशा के लिए वो सेफ रहे, है ना?
0: हाँ और उससे एक फायदा ये है कि भाई जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो ना, सबको पता रहता है कि ये इनके जो भी हमारे क्लोज रिलेटिव हैं, आसपास के जो मतलब जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे ज़रूरी नंबर्स होते हैं ना, वो हमें फ़ोन की बजाय अगर हम एक डायरी में रखें तो वो हमारे थोड़ा आसान रहेगा कि कभी अगर फ़ोन कहीं इधर उधर रख जाता है, गुम हो जाता है, तो वो कई बार

0: होता है ना कि हम उसे तुरंत सारा,
1: फिर हमको नंबर ढूंढने पड़ते हैं एक सिरे से सबके।
0: तो ये छोटी सी बात जो तुमने बताई, मैंने मुझे लगा कि अपने भाई श्रोताओं के साथ इसको शेयर कर लें, ये बहुत ज़रूरी बात थी। वैसे तुम ये बताओ, तुम मुझसे कुछ कह रही थी ना कि तुम मुझे आज कुछ टिप्स देने वाले हो, क्या टिप्स है?
1: आज मैं आपको टिप्स दूंगी कि किचन हमारे जो घर में है उसमें फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होना चाहिए।
0: हाँ, ये बात तो तुमने सही कहा।
1: हाँ, क्योंकि तो, हम जो महिलाएं हैं उनका अधिकतर समय तो घर की रसोई में ही बीतता है।
0: सही कह रही हो,
1: चाहे वो ऑफिस से जाने से पहले हो या ऑफिस से आने के बाद हो
0: सही या जब हम घर में रह रहे हो
1: तब भी। और खाना बनाते समय जलना, कटना या छोटी मोटी जो चोट है वो हमारे लिए आम बात है।
0: सही कह रही हो।
1: हाँ, और इसीलिए घर में एक सुव्यवस्थित फर्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत ही जरूरी है।
0: हाँ, और ये बॉक्स ऐसी जगह पे रखिए ना जहाँ पे हमारे घर के बच्चे बड़े सभी जानते हो कि ये यहाँ पे पड़ा है और जरूरत पड़ने पे हम उसे इस्तेमाल कर सके।
1: फर्स्ट एड बॉक्स में सबसे पहले विभिन्न आकार के बैंडेज और रुई रखें, साथ ही एंटीसेप्टिक क्रीम जो कि घाव को संक्रमण से बचाने में मदद करती है, कॉटन, मेडिकल टेप, कैंची, चिमटी, ट्वीज़र भी बहुत ही ज़रूरी है इसमें रखना, और हल्की जलन के लिए बर्न क्रीम या फिर एलोवेरा जेल ज़रूर रखें। हाथों को साफ रखने के लिए हैंड सैनिटाइज़र और डिस्पोजल दस्ताने भी शामिल कर सकते हैं।
0: और अगर आप दर्द और बुखार के लिए जो सामान्य दर्द निवारक दवाएं हैं वो हमें डॉक्टर की सलाह से रखनी चाहिए और समय समय पे इस फर्स्ट एड बॉक्स को ना चेक करते रहना चाहिए कि ऐसा तो नहीं इसमें दवाइयां एक्सपायरी डेट हो गई हों, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और एक बात, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं ना ये मौसम बदल रहा है, तो अक्सर हम देख रहे हैं कि कभी धूप हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है, बच्चे भींग के आ रहे हैं, वहीं एसी में बैठ जा रहे हैं, तो हल्का फुल्का कभी जुखाम है, खांसी है या फिर डिहाइड्रेशन है या बाहर का कुछ खा लिया, तो कई बार देखते हैं कि लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ORS का पैकेट वगैरह ये सब भी रखना चाहिए कि जैसी ज़रूरत पड़े हम इसको ले सकें,
1: हाँ, इस्तेमाल में ला सकें। और इसके साथ ही डिजिटल थर्मामीटर भी बहुत ही ज़रूरी है घर में रखना।
0: और अगर देखो घर में अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो अब आजकल देख रहे हो बहुत हैंडी एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, हाँ, BP नापने वाली मशीन वो भी आती है, उसको भी रख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम रख करके अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी देख सकते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक रह रहा है कि
1: हाँ, और जब हमारा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो हम अपना भी ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं उसमें तो श्रोताओं, इस प्रकार ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमारे घर के फर्स्ट एड बॉक्स में रहती हैं वो रसोई या फिर घर में होने वाली छोटी छोटी दुर्घटनाओं में हमें सहायता प्रदान करती है।
0: वैसे पूनम, अगर तुम मेरी इस बात से इत्तेफाक ही रखोगी कि जो हमारा किचन है ना उसमें भी बहुत सारे जो फर्स्ट एड हैं, जैसे कि अगर हमें चोट लग जाए तो अगर ओरिजिनल हल्दी है तो उसको जैसे ही हम अपने कुछ कट ले जाता है उस पर लगाएंगे तो अगर 2 मिनट तक आप उसको दबाए रखिए ना तो आपका ब्लड बंद हो जाता है, और ये तो बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर हम जब छोटे थे तो मैंने देखा कि जब हमें कुछ लग रहा था कि कुछ अपच जैसा हो रहा है,
1: तकलीफ दिक्कत होती थी, तो मम्मी तुरंत अजवाइन या फिर हींग गर्म पानी के साथ दे देती थी।
0: और ऐसे ही हो जाता है कि अगर आपको बहुत लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा कुछ हैवी खा लिया तो अदरक का रस पानी में, गर्म पानी में मिला करके दे दो तो भी वो पाचन अच्छे से हो जाता है। अगर हम अपने खाने में ये सब छोटी छोटी चीज़ें शामिल करते हैं तो जब हम खाना अच्छे से पचता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम से भी दूर रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें किचन में मिल ही जाती हैं
1: हाँ
0: और देखो हम अपनी जो सखियों से जो बातें कर रहे हैं, जो ये मौसम चल रहा है ऐसे मौसम में आप देख रहे हैं कि अक्सर वायरल है, फ्लू है, आम सी बात हो गई है, तो बच्चे हों या बड़े हों या आप खुद भी घर से जब भी बाहर निकल रही हो कोशिश ये करना है कि छाता ले के रखें, बच्चों को भी इसकी आदत डालें, रेन कोट, टोपी, कैप ये सब ज़रूर दें
1: और साथ ही पानी बोतल तो ज़रूर साथ में रखें चाहे वो कोई भी मौसम हो।
0: सही कह रही हो, पानी तो इतना इसेंशियल होता है क्योंकि साफ पानी पीना सबसे ज़रूरी, थोड़ी थोड़ी देर पर भले आपको लग रहा हो कि अभी पानी, अभी तो मौसम ऐसा है इतना ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि पूनम ने कहा पानी की बोतल हमेशा साथ में कैरी करनी चाहिए और इस मौसम में स्ट्रीट फूड से बचना चाहिए, क्यों पूनम?
1: और या तो फिर हम मम्मी से बोल सकते हैं कि वो बना देंगी, लेकिन इस समय तो हम ही लोग मम्मी हैं
0: तो भाई जो भी घर का खाना है भाई

0: बच्चों के साथ साथ जो आजकल की जो मम्मी लोग हैं ना, वो भी थोड़ा बाहर का खाना बड़ा प्रेफर करने लगी है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस मौसम में ख़ास तौर से हमें घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। और आजकल तो वैसे मम्मियाँ सब कुछ घर में बना सकती हैं, उनके पास सारा कुछ अवेलेबल होता है कि हाँ वो जब भी चाहेंगी वो फटाफट सब कुछ, आजकल हर चीज़ का जो शॉर्टकट आ गया है, तो जो घर में कुछ स्नैक्स खाने का मन है वो बन जाता है फट से। कुछ और जैसे मैंने अपने घर में बेसन के लड्डू बना के रखे हैं कि हाँ कि बच्चे अगर घर में आओ, कुछ उनका इधर उधर मीठा खाने का मन हो तो भाई तुम ये खा सकते हो। कभी उसमें थोड़ा बहुत तिल, थोड़ा सा तिल डाल दिया, या फिर जो चना होता है, चने को अच्छे से पीस करके और उसमें भी थोड़ा सा मिश्री और कुछ ऐसी नट्स हैं वो सब डाल वाल के रखते हैं। कभी अगर उन लोगों का मन हुआ तो उसको भी वो खा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं कि बच्चों का भी स्वाद बना रहे, अपना भी स्वास्थ्य बना रहे।
1: हाँ, लेकिन सखियों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसा कि अभी प्रीति ने बताया कि मौसम बदल रहा है, तो इसमें वायरल फीवर हो रही है, छोटी छोटी बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आपको बुखार है या फिर कोई भी समस्या है, 3 दिन से अगर ऊपर है तो उसकी जाँच ज़रूर करवाएं।
0: हाँ, ये बात पूनम तुमने बिल्कुल सही कही कि कई बार होता है ना कि हम अब लापरवाही कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे में तबीयत बिगड़ जाती है। तो जब आपको लगता है कि 1-2 दिन में नहीं ठीक हो पा रहा है तो प्रॉपर जांच करानी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते करते दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर की राय के हिसाब से ही अपना खान पान और दवाइयाँ लेनी चाहिए। कभी ऐसे मौक़ों पे कभी स्वयं से दवा नहीं ले लेनी चाहिए कि हाँ ये दवा ही हमको ले लेना है। अच्छा देखो पूनम, जब कभी दवाई की बात करो ना तो मन अपने आप थोड़ा सा बोझल सा होने लगता है, तो क्यों ना इस थोड़ा बोझ को कम करें इस प्यारे से गीत के साथ।

0: on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecasts heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
1: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
4: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
4: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।

0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के

0: इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
3: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने

0: राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
1: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का उठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
3: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
3: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतन माला जी का। लिखते हैं,
3: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
3: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
3: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहेब
3: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
1: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
3: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
3: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
3: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
3: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
3: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियार

0: हथकंडों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: तुमसे कह रहा हूँ,
3: देखिए,
4: रखो, मुझे छोड़ दो। साथ वाले कहने भी उतार, मुझे छोड़।
3: ए,
2: वो उन्हें मार डालता था। वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए।

0: सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
1: नाथ,
2: महात्मा,
1: प्रभु,
2: महात्मा,
3: प्रभु, प्रभु अब जंगल में मत जाएं।
4: वहाँ अंगुलीमाल है।
3: हाँ प्रभु।
4: वो बहुत बड़ा डाकू है।
5: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
4: जाए।
5: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
4: हाँ प्रभु,
3: ना जाए, खतरा है।
4: ना जाए प्रभु, ना जाए,
3: ना जाए प्रभु।
6: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत।
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। यह कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
1: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
2: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
1: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
2: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
0: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
0: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
3: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
3: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया।

0: और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की दो प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
2: आइए आइए फादर बुल्के, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
2: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
3: जी मैं प्रस्तुत हूं।
2: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
3: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत! तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
3: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
3: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
3: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी,
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
3: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने

0: ने के तरीके का दस्तावेज है।
1: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
2: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
3: सबहें नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
2: डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं,
4: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। प्राइमरी चैनल पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। विविध भारती पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। सुनते रहिए विविध भारती।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे अब आज की सांधिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: बच्चों कैसे हैं आप सब?
0: दीदी हमारे जो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे साथी हैं ना वो बहुत अच्छे होंगे।

0: और बहुत मस्ती भी कर रहे होंगे।
1: क्योंकि तभी तो पूरा हमारा जो प्रोग्राम है, उनका मनपसंद कार्यक्रम जो नन्ही दुनिया आ रहा है, उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।
0: हाँ, वैसे दीदी आप कह रही थी आप बच्चों से एक पहेली पूछेंगे।
1: तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक पहेली लेकर आए हैं, उन्हें बूझना है और उसका मतलब पहेली उसको बताना है।
0: अरे वाह दीदी, फिर जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए, क्या है पहेली।
1: बच्चों, वो पहेली है, पहले तोलो फिर बोलो।
0: हाँ, अरे वाह, यानी आप पूछ रही हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अरे दीदी, हमारे बच्चों को इस बात का मतलब पता है, पर मैं बता दूं कहिए तो उनकी तरफ से।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: भाई देखिए, जो भी बात हमें कहनी है उसको पहले हमें मन में एक बार सोच लेना चाहिए कि वो कहना कितना सही रहेगा, और उसके बाद हमें वो बात कहनी चाहिए। क्या मैंने ठीक कहा?
1: बिल्कुल ठीक कहा। और हम कभी कभी जो भी किसी से बात कहते हैं, या फिर अपनी कोई भी बात मनवाना चाहते हैं अपने, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि हमारे स्कूल के फ्रेंड हो, हमारे भाई बहन, दादा दादी, हमारे मम्मी पापा, तो हमें उनसे भी अपनी बात कहनी है, जो भी बात कहनी है उसको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए।
0: वैसे दीदी ये बात आपने सही कहा, और बोलने से पहले ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। ऐसा होता है ना, कभी तो हम घर में होते हैं तो आराम से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कई बार होता है हम बाहर होते हैं। अपने स्कूल में हमें किस तरह से अपनी बात रखनी है, अपने फैमिली के बीच कैसे रखनी, ये सब हमें छोटे पल से ही आना चाहिए, है ना दीदी।
1: और हमें ये भी सोचना चाहिए कि बोलने से पहले कि हमारी बात जो हम बोल रहे हैं उसको सामने वाले को खुशी होगी या फिर दुख पहुँचेगा, कहीं हमारी बात से उनको बुरा ना लग जाए,
0: ये
1: है
0: बात
1: ना?
0: तो ठीक कहा दीदी आपने। वैसे हमारे जब हम छोटे थे तो हमें भी ये पढ़ाया जाता था कि भाई आप वही बात बोलिए जो आपको सुनने में अच्छी लगे, या कहते हैं ना कि दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि आप खुद के लिए चाहते हो।
1: यानी कि कोई भी बात कहने से पहले उसके प्रभाव को, उसके रिजल्ट के बारे में ज़रूर सोचें। और ये आदत हमें अभी से ही विकसित करनी चाहिए बच्चों, कि पहले तोलो फिर बोलो, है ना?
0: बिल्कुल ठीक कहा दीदी, और हमारे नन्हे साथी बहुत ही समझदार हैं, उन्होंने आपकी इस बात को गांठ बांध लिया होगा, और अब से वो इस हर बात ध्यान से पहले सोचेंगे और फिर बोलेंगे।
1: क्योंकि जब भी हम सुंदर और प्यार से बोलने वाले शब्दों या फिर तरीकों का प्रयोग करते हैं ना बच्चों, तो हमारे जो संबंध हैं, रिलेशन है, चाहे वो दोस्ती वाला हो या फिर रिस्पेक्ट वाला हो, वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। और एक पते की बात बताऊं दीदी, गुस्सा आने पर हम जो होते हैं वो तुरंत रिस्पॉन्स दे देते हैं ना, फिर वो समझ में नहीं आता कि सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं।
0: सही कहा।
1: तो अगर वैसी कंडीशन आ जाए, वैसी सिचुएशन आ जाए, तो आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, फिर अपनी बात सोचकर फिर कहें,
0: सही
1: यानी कि
0: कहा,
1: पहले
0: पहले
1: तो
0: तो लो
1: लो फिर
0: फिर
1: बोलो।
0: बोलो। वैसे दीदी, अभी जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तो बाहर मुझे एक छोटा बच्चा मिला, उसने मुझसे एक बड़े पति की बात पूछी।
1: वो क्या?
0: दीदी ये क्या है? उसने एक शीशे को दिखाया, मैंने कहा ये तो शीशा है। क्या वो तो मैं जानता हूँ। तो उसने फिर मुझे अपनी एक उसने एक ग्लास लिया हुआ था हाथ में, कि ये भी तो शीशा है। तो मैंने कहा कि हाँ, क्या लेकिन मैं इसमें तो चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ, पर इसमें तो देख सकता हूँ, बताइए क्यों। तो मुझे उसकी बात बहुत प्यारी लगी, मैंने कहा अच्छा चलो, ऐसे तो कुछ सवाल हमारे और भी दोस्तों के मन में आता होगा
1: हाँ
0: कि भाई हम शीशे में चेहरा हमारा दिखता कैसे है,
1: हाँ यानी कि दर्पण में हमारा चेहरा कैसे दिखाई
0: कैसे
1: देता है?
0: दिखाई देता है। तो बच्चों ये इसलिए दिखाई देता है कि जो दर्पण होता है उसके पीछे जब हम पॉलिश कर देते हैं तो जो प्रकाश यानी जो लाइट आती है वो आर पार नहीं जाती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे हमारा चेहरा या जो भी हम चित्र रखते हैं वो हमें साफ साफ दिखता है। देखा दीदी,
1: अरे वाह,
0: उस
1: ये
0: न...
1: तो कमाल की बात है,
0: हाँ देखिए,
1: क्योंकि
0: छोटी सी बात है, हमारे
1: हाँ
0: नन्हे साथी ने पूछी, साइंस में तो हम सब ने पढ़ी,
1: हाँ
0: लेकिन जब उसने पूछी तो मैंने कहा अच्छा कुछ ऐसे बता दें कि हमारे नन्हे साथी समझ जाए इस बात
1: हाँ
0: को।
1: क्योंकि जिस ग्लास में हम लोग पानी पीते हैं वो भी शीशे का होता है, जो
0: हाँ
1: टेबल होती है वो भी शीशे की होती
0: हाँ
1: है, लेकिन दर्पण में ही हमारा चेहरा क्यों दिखाई देता
0: हाँ तो
1: है
0: देखिए ये
1: ना?
0: सब है उस पॉलिश का चमत्कार
1: कमाल।
0: का कमाल। वैसे
1: हाँ
0: देखिए, ये सारी बातें करते करते मुझे ये लग रहा है कि अपने नन्हे साथियों को क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुनवा दे।
1: बिल्कुल सुनवा दे।
0: चलिए,
2: इक्कड़ दुक्कड़ भंबे भो 80 90 पूरा 100 100 का लोटा तीतर मोटा।

0: तो पूनम दीदी सुना आपने, खोटा पैसा नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल नहीं चलेगा।
0: जैसे आपने कहा ना कि तोलो फिर बोलो, वैसे ही जो भी काम करना है बहुत अच्छे से करना है। आपको पढ़ना है, जितनी देर आप पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए, फिर जब आप खेलने जाइए तो वहाँ भी मन लगा कर खेलिए, और जो अपनी जो अगर आप फोन वगैरह देखते हैं तो वो बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल
1: नहीं देखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा
0: नहीं देखिए। जो छोटे बच्चे जो हमें नन्हे साथी ना, ये इनके प्लेग्राउंड में खेलने के दिन है, और जैसे मौसम ये वाला है तो आप घर पे शतरंज खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो स्क्रीन टाइम होता है, इसको जब मम्मी मना कर रही हो इसकी बात आप समझिए, ये आपकी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। पता दीदी, जो फोन से जो रेज निकलती हैं, ऐसे कई बार हुआ है कि फोन देखने से आंखों की जो पुतलियां हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, जो आंखों में जो नमी होती है वो कम होने लगती है। इसलिए फोन नहीं देखना है हमारे नन्हे साथियों, आपको फोन बिल्कुल नहीं देखना है।
1: हाँ, और अगर भूख लगे तो अपनी मम्मा से एकदम चटपटी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बनवा के घर में ही खाइए, बाहर की चीजें खाने से परहेज करिए, है ना।
0: देखिए आपकी दोनों दीदियां कितना आपको सिखा रही हैं कि मम्मा को से क्या क्या बनवाना है। बिल्कुल, आप घर में चुरमुरा बनवा सकते हैं, घर में चाट बनवा सकते हैं, जो भी आपका खाने का मन हो तो, और साथ में थोड़ा सा मम्मी की हेल्प भी करनी है ना।
1: बिल्कुल।
0: देखिए समय हो रहा है हमारे कार्यक्रम का धीरे धीरे पूरा, तो एक बात मैं आपको और कहूँ, एक अच्छी आदत ये डालिए कि आप जब भी स्कूल से आएँ तो अपना सारा सामान खुद जगह पे रखें, अपने बैग बॉटल सब कुछ।
1: हाँ, ये तो बहुत पते की बात कही दीदी आपने, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं ना तो ये बैग वहाँ फेंका, शूज वहाँ फेंका, कॉपी किताब यहाँ पड़ी,
0: और अगले दिन खोज रहे होते हैं, मम्मी भी परेशान होती है, डांट भी पड़ती है। इसलिए ये एक अच्छी आदत शुरू से डालिए, सामान को जगह पे रखना, है ना दीदी।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। देखिए हमें तो भाई बचपन में यही सिखाया जाता था, हमारा तो हर सामान जगह पे ही रखने की हमारी आदत थी, और नहीं रखते तो बहुत डांट पड़ती थी। और देखिए हमारे उधर से हमारे जो अनाउंसर भैया हैं वो कह रहे हैं कि आपके बच्चों के साथ का कार्यक्रम यानी नन्ही दुनिया कार्यक्रम हो चला है पूरा, तो अब प्यारे बच्चों आपसे लेते हैं विदा। तो बच्चों, जय हिंद।

0: हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता भी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज के साथ साथ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, जो कि प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप है, इसके जरिए भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब युवजन अपना कार्यक्रम सुनी युवा।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर अमेजिंग लिसनर्स। आप सुन रहे हैं युवाणी, जहां बातें होती है यूथ की, आइडियाज़ की और एक बेटर इंडिया की। मैं हूं आपकी रेडियो साथी उन्नति।
1: और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। होप आप सब मस्त होंगे और इसी आशा और उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। आज का विषय इंटरेस्टिंग ही नहीं साथियों, बल्कि हर भारतीय के दिल के बेहद करीब है, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत।
0: बिल्कुल दोस्तों, जब हम भारत की बात करते हैं तो सिर्फ एक देश की बात नहीं करते, हम बात करते हैं हजारों कल्चर्स की, कई भाषाओं की, अलग अलग ट्रेडिशंस की और करोड़ों लोगों की जो अलग होते हुए भी एक हैं।
1: बिल्कुल सही कहा साथियों। सोचिए जरा, कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियों से लेकर कन्याकुमारी के बीच तक, गुजरात के रंगीन त्योहारों से लेकर असम की हरे भरे चाय के बागानों तक, हर जगह कुछ नया, कुछ यूनिक ही देखने को मिलता है।
0: और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम सब गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। इसी फीलिंग को और मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस इनिशिएटिव का सिंपल सा गोल है, भारत के अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लोगों को एक दूसरे को बेहतर समझना, एक दूसरे की भाषा, बोली, उनके कल्चर्स, उनकी हिस्ट्री और उनके ट्रेडिशंस की सराहना करना।
1: बिल्कुल साथियों, भारत की आइडेंटिटी ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता। मतलब डिफरेंसेस चाहे जितने भी हों, उसके बावजूद भी हमारी संस्कृतियाँ, हमारे विचार, हमारा रहन सहन और हमारे त्यौहार बहुत सारे एक जैसे होते हैं, उनके भाव एक होते हैं। तो इसीलिए उन्नति हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता की बात हम लोग करते हैं।
0: यानी डिफरेंसेस होते हुए भी हम सब एक हैं।
1: बिल्कुल।
0: और ये डिफरेंसेस ही वो भारत को खास बनाते हैं। हर राज्य का अपना खाना, अपनी पोशाक, अपना लोक नृत्य, अपनी भाषा और अपने त्यौहार हैं। लेकिन जब बात हमारे तिरंगा की आती है, राष्ट्रगान की बात आती है या संविधान की बात आती है, तो हम सब एक साथ खड़े होते हैं। एंड दैट इज द रियल स्पिरिट ऑफ इंडिया।
1: और इसी स्पिरिट को स्कूल्स और कॉलेजेस में भी सेलिब्रेट किया जाता है। कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो इसी बात को, इसी प्रोग्राम को इनिशिएट करने का एक पार्ट है।
0: इमेजिन अगर उत्तर प्रदेश का कोई स्टूडेंट केरला के कल्चर के बारे में सीखे, या पंजाब का स्टूडेंट नागालैंड के रीति रिवाजों और ट्रेडिशंस को समझे, तो कितनी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और जब हम एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होती है और दोस्ती, यानी जो फ्रेंडशिप्स है इंटर कल्चर के बीच में, वो भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल। और भाषा तो किसी भी कल्चर की धड़कन होती है उन्नति।
0: बिल्कुल। अगर हम किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरी भारत की भाषा में कुछ बेसिक वर्ड्स भी सीख ले, जैसे वड़क्कम, नमस्कार, केम छो, सत श्री अकाल, तो इंस्टेंटली एक कनेक्शन जैसा फील होता है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, रिस्पेक्ट सिर्फ लैंग्वेज का ही नहीं बल्कि हर कल्चर का होना चाहिए। जब हम दूसरों की आइडेंटिटी को अप्रिशिएट करते हैं, तब भारत और भी मजबूत और सुंदर लगने लगता है।
0: और साथ ही इससे टूरिज्म भी बढ़ता है, ट्रेड भी इम्प्रूव होता है, एजुकेशन में कोलैबोरेशन होता है और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती है।
1: साथियों, आज हम सभी के पास इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है और दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, तो क्यों ना हम अपने भारत के बाकी सभी स्टेट्स के बारे में पढ़ें, जानें, समझें और उन्हें एक्सप्लोर करें।
0: बिल्कुल। यात्राएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए यात्रा करें, किताबें पढ़ें, लोकल क्विजींस ट्राई करें, रीजनल म्यूजिक सुनें, साझी संस्कृति को बढ़ावा दें, साथ ही नए नए साथी और नए नए दोस्त बनाएं, ताकि एक दूसरे की संस्कृति को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएं।
1: तो ये बातें थी दोस्तों, जो कुछ ज़रूरी बातें एक दूसरे की संस्कृति,

0: वेलकम बैक दोस्तों। और साथियों, आज है 27 जुलाई यानी CRPF स्थापना दिवस। साथियों, अपने प्रोग्राम के जरिए हम नमन करते हैं भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को, जो हर वर्ष 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और वर्ष 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में इसे स्थापित इस बल का स्वतंत्रता के बाद जो है 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के तहत इसका पुनर्गठन हुआ था और इसे एक नया स्वरूप मिला था।
1: देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुकाबला करने, चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और आपदा राहत और बचाव कार्यों में CRPF की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।
0: CRPF के वीर जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अदम्य साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अभियान, संवेदनशील राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखना हो या प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता, CRPF हर चुनौती का डट कर सामना करती है।
1: इस बल का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा केवल शब्द नहीं बल्कि प्रत्येक जवान के जीवन का संकल्प है, जो देश की एकता, अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर पल समर्पित रहता है।
0: CRPF स्थापना दिवस हमें उन तमाम वीर जवानों के त्याग, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा को याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आइए इस अवसर पर हम सब उनके अदम्य साहस को सलाम करें और इस संकल्प लें कि देश की शांति, एकता और सद्भाव

बनाए रखने में एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। सभी सीआरपीएफ के वीर जवानों और उनके परिवारों को आकाशवाणी परिवार की ओर से इस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद आया होगा और अब अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। और अगले सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है खाद्य सुरक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता, और जिसके वार्ताकार हैं अमित शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: खाद्य सुरक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता। जीवन एक यात्रा है और जब हम इस जीवन की यात्रा में चलना प्रारंभ करते हैं, समाज में निकलते हैं, तो देखते हैं कि समाज में कई प्रकार की अनावश्यक कुरीतियों का समावेश हो गया है। फिर आप यह भी सोचते होंगे कि समाज में जो यह विडंबना फैली हुई है, इससे क्या और लोगों को भी परेशानी होती होगी? कभी कभी आपके विचार या एक दो लोगों की छोटी सी शुरुआत से समाज में बहुत कुछ बदला जा सकता है, और अगर आपका कार्य सामाजिक हित में है तो अन्य लोग भी आपसे जुड़ते हैं और आपके कार्य की सराहना करते हैं। ऐसे ही एक सामाजिक दोष जो हमारे घरों में प्रवेश कर चुका है, यह दोष है भोजन की बर्बादी। यह कोई आम समस्या नहीं है, यह केवल एक छोटे से पैमाने से शुरू होकर जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, और इसी कारण से हमको यह दिखाई नहीं पड़ता और हम अनायासी भोजन की बर्बादी करते हैं और अनाज का अपमान करते हैं, क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए जितना जरूरी हवा है उतना ही आवश्यक भोजन भी है। सृष्टि की जब संरचना हुई तो इस धरा पर न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु नदियों झरनों आदि का जन्म हुआ। इस धरा पर मनुष्य को सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में अलग है, विचार करने वाला होता है, वह सही गलत को समझ सकता है। इसी कारण से मनुष्य को श्रेष्ठ बताया जाता है। मनुष्य को जीने के लिए मुख्य रूप से भोजन वस्त्र और आवास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें महत्वपूर्ण भोजन भी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर भूमि की कुल लगभग 51% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, जिसमें हम सभी को अनाज की प्राप्ति होती है, जिसमें फूड 42% से 46% लोग भारत में कृषि कार्य करते हैं। हम सभी एक गांव में निवास करते हैं, देखते हैं कि कितने मेहनत धूप ठंडी बरसात आदि का सामना करके हमारे किसान कृषि कार्य को करते हैं, जिसके फल स्वरूप हम सभी को भोजन उपलब्ध होता है। मगर हम सब इसके पीछे की क्रिया विधि समझने की न कोशिश करते हैं और बेहिचक अनाज की बर्बादी हम हर दिन करते हैं। अनाज की बर्बादी विश्व स्तर पर हो रही है। हम सभी एक ही आसमान के नीचे निवास करते हैं और यहाँ निवास करने वाले लगभग सभी लोग भोजन की बर्बादी करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहाँ पर भोजन की बर्बादी न होती हो और वहाँ पर लोग भूखमरी और एक रोटी के लिए संघर्ष न कर रहे हों। हम देखें तो आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लोग अनाज के एक एक दाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें कुछ देश हैं नाइजीरिया, सूडान, यमन, सीरिया। ये देश कृषि कार्य को पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते, फिलहाल ये भी अपना संघर्ष जारी रखे हैं। भोजन की बर्बादी का अगर हम एक सारणी बनाएं और देखें कि प्रतिवर्ष और प्रतिदिन कितना भोजन बर्बाद होता है और कितने लोग भूखे सोते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं वैश्विक स्तर पर अनाज की बर्बादी कितनी होती है और कितने लोग भूखे सोते हैं। संयुक्त राष्ट्र 2024 की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में प्रतिदिन 1 अरब से अधिक टन भोजन बर्बाद होता है और यह खाद्य 60% लगभग घरों से आता है। और हम वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रतिदिन 87.3 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। भारत में भोजन की बर्बादी का आकलन करें तो 1.83 लाख टन भोजन की बर्बादी प्रतिदिन होती है और 1.9 करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन भूखे सोते हैं। यह विवरण प्रस्तुत करता है कि हम अनाज के प्रति कितने लापरवाह और गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम एक कहावत

0: सुनते आ रहे हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे बर्बादी से ही भोजन की अधिक बर्बादी हो रही है। भोजन की बर्बादी के मुख्य कारण। भोजन की बर्बादी कोई आम समस्या नहीं है, यह केवल एक बड़ी बीमारी की तरह अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है और हम सभी इसकी परख नहीं कर पा रहे हैं। भोजन की बर्बादी सबसे ज़्यादा हम अपने यहाँ शादी विवाह भंडारा अन्य अवसरों पर बहुत ही अधिक मात्रा में भोजन की बर्बादी करते हैं, क्योंकि उस समय हम अपनी संख्या का ध्यान ना देकर भोजन अधिक मात्रा में तैयार करवा देते हैं और संख्या किसी कारणवश अधूरी होती है और भोजन बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं आपके गांव में अगर एक दिन दो जगहों पर भंडारा है या शादी है तो गांव के आधे लोग एक जगह और गांव के आधे लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं, लेकिन गांव की संख्या तो हमारी सीमित ही होती है और हम भोजन सभी के लिए तैयार करवाते हैं जिससे बहुत अधिक भोजन की बर्बादी ही हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कम पड़ने से इज्जत चली जाती है। हम मानते हैं कि हाँ भोजन की मात्रा कम पड़ने से इज्जत चली जाती है, मगर हम एक रिपोर्ट के माध्यम से देखें तो हर साल शादी और भंडारों को मिलाकर 30 किलो से लेकर 800 किलो के बीच प्रत्येक शादी में भोजन की बर्बादी होती है। आगे हम बात करते हैं भोजन की बर्बादी केवल बड़े कार्यक्रमों में ही नहीं, हम अपने घरेलू दिनचर्या में भी बहुत अधिक मात्रा में भोजन की बर्बादी करते हैं, क्योंकि हम कभी कभी अंदाज नहीं लगा पाते कि कितना खाना बनाना है कितना नहीं। इसके साथ ही घर के कुछ लोग बाहर से खाना खाकर चले आते हैं और उनके हिस्से का भी भोजन घर में तैयार होता है और वह भोजन बर्बाद हो जाता है। कभी कभी हम नशे के चक्कर में, नशा भी एक बहुत ही बुरी लत है जिसके वजह से हम अपने सामाजिक दोस्त तो फैलाते हैं उसके साथ ही भोजन की बर्बादी भी अधिक मात्रा में करते हैं। क्रोध और लड़ाई झगड़े के चक्कर में भी हम कभी कभी भोजन की पूरी थाली उठाकर फेंक देते हैं। भोजन की बर्बादी से केवल अनाज की ही बर्बादी नहीं हो रही है, बल्कि भोजन हमारे घरों से निकलता है और हम अपने भोजन को पॉलीथीन में लपेट कर कचड़े के डब्बे में डाल देते हैं और वो पन्नी में बंधा हुआ भोजन कचरे के ढेर पे जब पहुंचता है तो वहां पर कुत्ते तो नुकीली दांतों से पन्नी को हटाकर उसे ग्रहण कर लेते हैं, मगर गाय हो गए और अन्य जानवर जो हैं पन्नी के साथ ही उसे ग्रहण करते हैं और अब बेगुनाह जीव भी सिर्फ आपके भोजन की बर्बादी की वजह से हर साल मारे जाते हैं। कभी कभी हम बर्तन धुलते वक्त भी इतनी मात्रा में जो पकाया हुआ अनाज होता है नालियों के माध्यम से हम उसको बहा देते हैं और अनाज बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि अनाज को हम बहुत ही साधारण और आसानी से प्राप्त करते हैं जिसकी वजह से हम भोजन की बर्बादी रसोई से लेकर भंडारे तक कर रहे हैं। और साथ ही बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में भी भोजन की बर्बादी कुछ कम नहीं होती, क्योंकि कभी ग्राहक ज़्यादा तो कभी कम, वहाँ भी देखते हैं कि भोजन की बर्बादी बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, क्योंकि हम बहुत ही अलग-अलग तरीकों से भोजन की बर्बादी कर रहे हैं और हम इसको अधिक मात्रा में बर्बाद कर रहे हैं और कचरे में भी पहुंचा रहे हैं। इसका निवारण, भोजन की बर्बादी एक समस्या ही नहीं एक त्रासदी है जिससे निपटने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। हमें अपने कोई भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते समय एक अलग से लिस्ट तैयार करनी चाहिए और कितनी संख्या हमारी होगी उससे केवल 20 से 25 लोगों का खाना अधिक तैयार करवाना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। फिर भी अगर हम भोजन बच रहा है तो हमें शहर में कुछ ऐसी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, अनाथालय हैं जो कि समय रहते आपके पता बताए हुए पते पर पहुंचती हैं और आपके यहाँ जो भी भोजन बचा होता है उसे वो इकट्ठा करती हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन को पहुँचा देती हैं।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना वार्ता जिसका शीर्षक था खाद्य सुरक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता, और जिसके वार्ताकार थे अमित शर्मा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फसा।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाश।

0: आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो साथियों, संदेश के पहले हमने सुना कि खाद्य सुरक्षा और जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्नति, वो हमारे जीवन के लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसके कितने आवश्यक अंग होते हैं, है ना। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उनका संरक्षण हम सभी के लिए कितना आवश्यक है। और उम्मीद है कि इस वार्ता से हम सभी श्रोता साथी इस चीज़ को समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। और उन्नति, अब अपने प्रोग्राम का अगला गीत भी अपने श्रोता साथियों को सुनवाते चलते हैं।
2: बिल्कुल।

उन्नति अपने इस प्रोग्राम के सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हमारे आज के प्रेरणापुंज सेगमेंट की। तो साथियों, आज के प्रेरणापुंज अंक में हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि हर युवा को सपने देखने की ताकत दी।

0: मत दी।
1: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की।
0: 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब ने बचपन में अखबार बांटने से लेकर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बनने तक का सफर तय किया, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि हालात नहीं बल्कि हमारी मेहनत और सोच ही हमें आगे बढ़ाती है।
1: बिल्कुल, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। यानी सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि वो है जो हम सोने जिसे जिसे हम सो नहीं पाते।
0: यानी कि जिस सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। और साथियों, उन्होंने भारत के रक्षा क्षेत्र में जो योगदान दिया, चाहे वो अग्नि मिसाइल हो या पृथ्वी मिसाइल, वो हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा।
1: बिल्कुल, कलाम जी सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक महान शिक्षक और प्रेरणादायक लेखक भी थे। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर हर युवा के लिए एक मार्गदर्शन है।
0: जी हाँ, इस किताब में उन्होंने अपने संघर्ष, असफलताओं और सफलताओं को इतने सरल तरीके से बताया है कि हर युवा खुद को उनसे जोड़ सकता है। साथियों, कलाम जी हमेशा कहते थे, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
1: वाह, क्या सोच थी उनकी। और एक और प्रेरणादायक बात ये भी सीख सकते हैं कि उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको पहले किसी नींव को रखनी पड़ेगी, यानी उसकी फाउंडेशन को रखनी पड़ेगी। यानी किसी भी सपने को पूरा करने से पहले ये शर्त है कि आपको सपने देखने होंगे, जिसे वो इंग्लिश में कहते थे, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू।
0: उनका पूरा जीवन ही एक संदेश है साथियों, सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति का। साथियों, अगर बात करें 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 की, तो वो भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के इस राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सरलता और छात्रों के प्रति प्रेम लगाव हमेशा बना रहा।
1: दोस्तों, कलाम जी का मानना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, अगर युवा ठान ले तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।
0: तो क्यों ना आज हम भी एक संकल्प लें अपने सपनों को पूरा करने का, मेहनत करने का और अपने देश को आगे बढ़ाने का। ये याद रखते हुए, जैसा कलाम साहब कहते थे, एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट।
1: इसीलिए आज 27 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें नमन करते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि सपने देखिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए।

0: उन्नति। ये थी कुछ ज़रूरी और जागरूक करने वाली बातें हमारे युवा श्रोता साथियों के लिए। और जैसा कि हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हर रोज़ लाते हैं एक क्वेश्चनियर का सेशन, जिसमें हम अपने श्रोता साथियों से सवाल करते हैं, वो अपने जवाब हम तक पहुंचाते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे कल के प्रश्न की, जो कि हमने अपने श्रोताओं से पूछा था। और प्रश्न था, भारत में मानसून की वापसी सबसे पहले किस राज्य से शुरू होती है? तो साथियों, भारत में मानसून की वापसी यानी रिट्रीटिंग मानसून सबसे पहले राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान से प्राप्त होती है। और ये प्रक्रिया आमतौर पर सितंबर के शुरुआती या मध्य सप्ताह से लगभग 1 सितंबर से 17 सितंबर के बीच शुरू होती है।
1: इसी के साथ हमारा आज का सवाल है, किस गैस के रिसाव से सन 1984 में भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी? आप अपना जवाब, अपने आंसर्स और अपने फीडबैक्स के साथ हमें हमारे मेल पे भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com और हमारे व्हाट्सएप पर भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250। तो अभिषेक, मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को हमारा प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा, वो अपने फीडबैक सजेशंस भी हमें ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ चलते चलते हमें उन्हें एक और गाना सुनवा देना चाहिए।

0: तो साथियों, इसी गीत के साथ आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है। हम आपसे फिर मिलेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए मुझे यानी अभिषेक को,
1: अब मुझे यानी उन्नति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: हमारे युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रही थी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली।

0: जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी प्रयागराज का प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों से आपको अवगत कराने का। पहले आज के शेष कार्यक्रम। नौ बजकर 30 मिनट पर गजलों का प्रोग्राम प्रसारित होगा कहकशा। 10 बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में आपको सुनवाएंगी नम्रता देव का ख्याल गायन। 8 बजे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संसद समीक्षा और 7:45 पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में मंजू नारायण से गीत और भजन सुनवाया जाएगा।

6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई छंगूलाल लहरी और साथी के गाए लोकगीत के अलावा सबरेज अहमद से लोकभाषा कविता पाठ सुनेंगे। सात बजकर 31 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम में अनिल रंजन भौमिक की वार्ता होगी भारतीय सिनेमा और सामाजिक यथार्थ।

श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारी शेष कार्यक्रमों की। और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं। कल रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और दिल्ली से ही सुबह 7:30 पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। कल रात 9:30 पर गजलों का प्रोग्राम सुनिएगा कहकशा। हमारी प्रातःकालीन सभा में 6:05 पर आप प्रतिदिन सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु में 6:30 पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए रोज की तरह कृषि जगत कार्यक्रम सुबह 6:35 पर। कल के इस कार्यक्रम में मिथुन तरफदार से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। बातचीत का विषय होगा स्ट्रॉबेरी की हाइड्रोफोनिक खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुबह 6:45 पर। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल अग्रवाल की वार्ता होगी हेपेटाइटिस कारण लक्षण और उपचार। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर मीनाक्षी दास और शाम 7:45 पर मीरा तिवारी के गाए भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। प्रतिदिन की तरह सुबह 7 बजे हम लेकर हाजिर होंगे श्री रामचरित मानस ही संगीत में पाठ, और 7:10 पर फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं आप सुन सकेंगे।

शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन। 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा हेलो फरमाइश। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी सुमन सिंह के गाए लोकगीत के अलावा विशाखा मिश्रा से की बातचीत। बातचीत का विषय होगा महिलाएं अंधविश्वास से कैसे बची। सुबह 10:30 पर गुलाब सिंह यादव और साथी के गाए लोकगीत सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे तेरस लाल और उनके साथी। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में हमारे युवा श्रोता करियर की बात के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा तैयारी की बदले हुए पाठ्यक्रम के तहत शिव कुमार राय से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत सुनेंगे। कल शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई अभय राज और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनेंगे। इसके अलावा रमेश कुमार मिश्र से रामायण पाठ भी इसी प्रोग्राम में सुनवाया जाएगा। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे प्रोफेसर देवदत्त सरोदे की वार्ता गुरु साक्षात परब्रह्म। और 8:00 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से मिली करेंगे संसद समीक्षा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और अब एक दो सूचनाएं हमारे पास हैं खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में। बालेश्वर सिंह पुत्र उपेंद्र सिंह, सोबतिया बाग थाना जास टाउन प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं कि इनकी संबंधी लक्ष्मी कुमारी, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, कद 5 फीट 3 इंच, शरीर की बनावट सामान्य है। ये दिनांक 4 जून 2026 से सोबतिया बाग से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, बालेश्वर सिंह पुत्र उपेंद्र सिंह, केसरी भवन, सोबतिया बाग, थाना जास टाउन, प्रयागराज। मोबाइल नंबर है

6747 6797। मोबाइल नंबर हम आपको एक बार फिर बता दें, 6206746797। एक अन्य सूचना, भानुमति शुक्ला पत्नी देवी प्रसाद शुक्ला बख्शी खुर्द दारागंज प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं, जिनके संबंधी राम उदार शुक्ला, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट सामान्य है, ये वैसे दुबले पतले हैं और चेहरा गोल है। इनके प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर, वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को राम उदार शुक्ला के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है, वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, भानुमती शुक्ला पत्नी देवी प्रसाद शुक्ला, बख्शी खुर्द दारागंज प्रयागराज। एक अन्य सूचना, अजय रावत पुत्र रमेश रावत सदर बाजार प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं, किनकी संबंधी राधा रावत, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, ये दिनांक 9 जून 2026 से लापता हो गई हैं। इनके कस्बा शंकरगढ़ नारीबारी, रेलवे स्टेशन शंकरगढ़, रेलवे स्टेशन प्रयागराज, सिविल लाइंस बस स्टैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को राधा रावत के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है, वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, अजय रावत पुत्र रमेश रावत सदर बाजार कस्बा और थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 6386091624, यानी 6386091624। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हम अपने विविध रंगी कार्यक्रमों के साथ हमेशा आपके समक्ष हाजिर होती रहती हैं।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः उपस्थापितः। प्रतिपक्षीयाणां भृशं कोलाहलेन संसद सदनम् अद्य स्थगितम्। अस्मिन् विषये चर्चायाः स्थगनं राष्ट्राय असमीचीनं सन्देशं प्रसारयिष्यतीति केन्द्रीयमन्त्री किरण रिजिजुः उदघोषयत्। एम वी ओमर्फी इति वाणिज्यपोते जाते आक्रमणप्रकरणे एकस्य भारतीय नागरिकस्य निधनात् पश्चात् भारतसर्वकारेण युक्रेन देशस्य राजदूतः आहूतः। ऋतुविभागेन ओडिशा छत्तीसगढ़ पश्चिमवंगराज्येषु अतिवृष्टिपरा पूर्वसूचना प्रख्यापिता। आईएसएफ लक्ष्यभेद विश्वचषकस्पर्धायां भारतस्य ईशा सिंहः स्वर्णपदकम् अवाप्तवती। मनुभास्करश्च कांस्यपदकं समुपार्जितवती। अपि च नवदिल्ल्यां द्वादशतमा राष्ट्रमण्डल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप क्रीडा अद्य समारब्धा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः उपस्थापितः। एषः विधेयकः 24 अधिक 2000 वर्षस्य अधिनियमस्य संशोधनं कर्तुं

0: एतदतिरिच्य ऋतुसंस्था दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विदर्भ क्षेत्रेषु अपि श्वः यावत् अतिवृष्टिं वेदयति। इतोपि च विभागः धीवरान् उद्बोधयति यत् ते बुधवासरं यावत् उत्तरपश्चिम वंगोपसागरे तथा ओडिशा पश्चिम वंग उत्तर आंध्रप्रदेशयोः तटीय क्षेत्रेषु समुद्रं मा विविशुः। असम राज्य जलौघ स्थितौ परिष्कारो जातः यतः अधिकांशेषु प्रभावित क्षेत्रेषु जलस्तरः न्यूनीभूतः। साम्प्रतं शिवसागर गोलाघाट जारहाट चराईदेव जनपदेषु स्थापितेषु नवाधिकशतं साहाय्य शिविरेषु 37,000 जनाः आश्रयं गृहीतवन्तः। केवलं शिवसागर जनपदे एव 66 सहायता शिविराणि संचालितानि, येषु 30,000 जनाः वर्तमानाः। प्रशासनिक अभिकरणानि एतेषु जनपदेषु प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः साहाय्य सामग्रीणां वितरणं कुर्वन्ति। लक्ष्यभेदक्रीडायाम् अद्य चीनस्य हाङ्गझोउ नगरे समायोजितायाम् ISSF विश्वचषकस्पर्धामालिकायां भारतस्य ईशा सिंहः महिलानां 25 मीटर पिस्टल् स्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवती। 21-वर्षीया ईशा सिंहः अन्तिमस्पर्धायाम् उत्कृष्टं नैपुण्यं प्रदर्श्य 40 लक्ष्यभेदैः सह स्वर्णपदकम् आत्मसात् कृतवती। अपरत्र पेरिस ओलंपिक स्पर्धायाः पदकविजेत्री मनुभास्कर प्रतिस्पर्धायां निर्णायकं शूट ऑफ जित्वा 28 लक्ष्यभेदैः कांस्य पदकम् अर्जितवती। नवदिल्ल्याम् अद्य 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धायाः विधिवत शुभारंभो जातः। स्पर्धायाः उद्घाटन समारोहं संबोधयन्ती दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रावोचत् यदेषा राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता सर्वेषां कृते प्रेरणास्रोतः वर्तते। इयं सहभागिदेशानां मध्ये परस्पर संबंधान् सुदृढीकर्तुं सहायिका भविष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम।
1: हम कही बिरजू भैया।
2: हाँ भैया,
1: हम कही देखा अपने भाई किसान भाई से जब ज्यादा दिन मिले हो जाते ना, तो देखा दियो तो काय लागत है बिल्कुल।
2: यो तो भैया
1: कही भाई देखा अब तो खेती बाड़ी के काम जो भाई धान के लगवाही भी होगी बाटे। और हम तो कही भाई पहली जो टाप ड्रेसिंग के काम बा और जो घास के भाई नष्ट करके भाई थोड़ा बहुत दवा पानी काम है अब बहुत चलत बाटे। और कुछ कुछ जौन भाई थोड़ा बहुत अगर पिछल बाटे न लगवही अब वो भैया हो जात बाटे। हम तो कही भाई बीच बीच में भाई देखा मौसम के भी बढ़िया रुख रहा जौन है तो उसे भाई देखा किसान भाई के तो बड़ी राहत हो गई
2: भैया।
1: तो खेती बाड़ी के काम तो भाई हालांकि भाई साल दस साल चलते रहा थे लेकिन मुल भाई जो सीजन वाला जब होत है ना तो ये होत कि कैसे जल्दी से जल्दी पूरा
2: खींच जाए।
1: तो बताओ भाई का का करे है खेती में है जो है
2: खेती में भैया यहाँ समय वही सब्जी वाली खेती चलता भैया। और हमें
1: हम कहे भाई नकदी फसल लेता है जौन है।
2: हाँ भैया
1: देखा अपन सब भाई किसान में नहीं है और अनाज के साथे साथे भाई कुछ नकदी फसल रहता तो भाई खाद पानी जब जरूरत पड़त है तो उसे ओकर इंतजाम हुई जाता
2: है भैया। दो पैसा आमदनी हुई
1: है। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई बिरजू देखा आज के समय में भैया सबसे बड़ा जरूरत यही बात के बाटे कि भाई सिर्फ मेहनत न करा मेहनत के अच्छा परिणाम भी ले जाऊँ।
2: हाँ भैया मोहन भाई एकदम बढ़िया सही कहा।
1: और तम तक कही भाई देखा खेती के साथे साथे अपन देश में जाना है भैया कुछ दिवस ऐसे बाटे जो उनका समर्पित बाटे।
2: हाँ
1: तो भाई आज के

0: ये दिन तो देखा बड़ा महत्वपूर्ण बाटे। हाँ
1: हाँ
0: भाई, आज अपन देश के चाहे आंतरिक सुरक्षा के बात होई, हाँ, और चाहे भाई बड़े बड़े संस्थान सुरक्षा के बात हो
1: हाँ
0: जाऊँ
1: चाहे
0: ना,
1: बाहरी सीमा का बात हो।
0: तो ऐसे में भाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भाई, वो
1: हाँ
0: CRPF जेका कहते,
1: हाँ भैया।
0: तो आज देखा उकर स्थापना दिवस में भैया। और भाई हर साल भाई 27 जुलाई के जौन है ये मनावा जाता है। और वर्ष 1939 में भैया, हाँ,
1: हाँ
0: मध्य प्रदेश के भाई नीमच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में भैया एकर स्थापना भई रही जौन है।
1: हाँ
0: हाँ,
1: भैया।
0: बाद में भाई देश आज़ाद भवा जौन है, तो ओके बाद भाई 28 दिसंबर 1949 में जौन है एक भाई संसद में अधिनियम ले आवा गवा, और ओके बाद भाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जौन है एकर नवा नाम रखा गया जौन है। और एक भाई चूँकि 27 जुलाई के भाई का स्थापना रहा, तो हर साल जौन है स्थापना दिवस एक भाई 27 जुलाई को मनाओ जाता
1: और
0: है।
1: देखो मोहन भैया, यह भारत का जो बटे सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम कहीं देखा चाहे दुर्गम से दुर्गम स्थान हो भैया, हाँ,
1: हाँ
0: देश के भाई चाहे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो भैया,
1: हाँ चाहे
0: और हम
1: नक्सल विरोधी।
0: बिल्कुल भाई, तो भाई नक्सल विरोधी भैया देश के भाई, देखा चुनाव होत बा कुछ भी होत बाटे, तो भाई जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बा भैया, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में जौन है रहा था जौन है।
1: हाँ भैया।
0: और भाई शांति व्यवस्था की बात हो, देश के धर जहाँ भाई अगर विकास के बात आवत है, तो वहाँ भी इनका योगदान भाई बड़ा अहम बाट
1: और
0: है।
1: देखो मन भैया, आपदा काल में भी केंद्रीय पुलिस CRPF हमेशा डटी रहते हैं। जैसे बाढ़ भवा या भूकंप आई हुआ तो हमारे जवान हमेशा डटा रहते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और पूरा काम करके लोगों को सुरक्षित अपने स्थान तक पहुँचा हुआ थे।
0: बिल्कुल। अच्छा एक बात यह होगा भाई कि जब बात स्थापना दिवस को होत है,
1: हाँ भैया।
0: तब एह दिन भाई CRPF में भाई सेवा के दौरान भाई देखा तमाम तरह की गतिविधि होत रहती जो ना देश में, भाई देश की सुरक्षा के लिए अपन बहुत से सैनिक अपन बलिदान दे दें
1: बलिदान
0: जो
1: दिए
0: ना
1: थे।
0: है,
1: हाँ भैया।
0: तो एह दिन भाई उनका जो शहीद हैं भैया उनका नमन भी किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाता है। साथ ही साथ हर एक भाई जो केंद्र हैं वहाँ पर भाई अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, परेड के कार्यक्रम बाटे,
1: हाँ भैया।
0: तो स्थापना दिवस के उनका है मतलब कार्यक्रम बड़ा ही भव्य रूप से मनावा जाता है। और साल भर देखा भाई कोनो भी कर्मी बा जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के, तो भाई चाहे जोने पद पे बाटे अगर वो बढ़िया कार्य किए बाटे ना, तो ओका एह दिन भी सम्मानित भी किया जाता है जौन है जाना। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात बात भैया, अगर कहना कि जो सबसे बड़ा सशस्त्र बल बाटे, अगर देश के आंतरिक सुरक्षा जब जहाँ पे बात आवत है, तो ओहमा भाई CRPF के ही योगदान के बात सामने जो ना, भाई हम कहीं जब इतना अपन देश के सुरक्षा के लेके शांति व्यवस्था कायम करे के लिए जो ना है ये स्थापना दिवस भाई मनावा जात बटे। साथ ही साथ एक बात यह हो कब भाई कि आज के दिन स्कूल कॉलेज में भैया निबंध प्रतियोगिता बाटे, वाद विवाद प्रतियोगिता बाटे, तो काहे मतलब ये बा कि अलग अलग तरह के जो आयोजन हैं कीन जातिन। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बा भैया कि यहाँ स्थापना दिवस के अवसर पर आपने देश के सेवा में और सुरक्षा में जौन भी सैनिक बलिदान भेन, हमहूँ सभी भाई अपने पंचायत घर कार्यक्रम तरफ से भाई उनका श्रद्धांजलि अर्पित की जौन।
1: हाँ भैया। हाँ तो मोहन भैया, अपने आज कार्यक्रम में का का बाटे थोड़ा
0: हम
1: पंचभुजन के
0: कहीं
1: बता
0: भाई
1: दी।
0: देखा आज तो भाई लोक भाषा कविता पाठ भी सुना जाए, हाँ, सबरे जहमत के गीत गौनाई भी होए, लेकिन उससे पहले हम एक बात अपने किसान भाई से कहा,
1: हाँ भैया।
0: बात होत रही कि भाई खेती मेड़े के भाई, हाँ,
1: हाँ
0: तो अब देखा जैसे खरीफ के प्रमुख फसल धान बा,
1: हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो किसान भाई तो भाई धान तो देखा बढ़ चढ़ के लगावत है, और साथे साथे एक विशेष जो ध्यान देख जरूरत बाटे भाई अपन सरकार भी उस तरफ किसान भाइन के ये बल देते बाटे कि भाई रसायन खाद के जो प्रयोग
1: प्रयोग
0: बा
1: कम।
0: वो कम से कम हो जाऊन है
1: हाँ
0: भाई। ये सिर्फ अपन जमीन ही नहीं प्रदूषित कर दीबा, आपके शरीर के स्वास्थ्य पे भी असर डालत बजाऊन है, तो जैविक के जौन खाद यहाँ जे तरह से बनी बाटे जो नए के लिए उपयोगी बा ओका प्रयोग करें। साथ ही साथ हम तो कही भाई जब देखा अपने 24 घंटा भैया कृषि वैज्ञानिक भैया हरे फोन कॉल पर उपलब्ध हैं, हाँ, भाई उनके

0: लिए किसान भाइन के लिए अलग अलग तरह के भाई टोल फ्री नंबर भी बांटे
1: हाँ भैया,
0: सरकार उपलब्ध कराए बा, तो उनसे सलाह ले के अपने खेते में कौन से कृषि कार्य करे बाटे ओका करें जौना है। तो ऐसे का है कि एक तो उनका खर्चा बचे, दूसरा जौन है उनके जौन फसल बा ओकर भी उत्पादन बढ़िया हुए जौन है। तो ये तो बात भाई देखा धान के बाद भाई, और साथे साथे एक और का भाई देखा तिलहन दलहन देश में भाई उत्पादन बढ़ावे खातिर इस समय अपन सरकार किसान भाइयों के लिए बड़ी सुविधा भी उपलब्ध करावल बैठे। हमके आधार कार्ड अपन भैया लय के जा जाना है, तो जैसे भाई पहले आओ पहले पाओ, जो जागरूक किसान हैं उनका भाई भाई अरहर के भी बीज मिलत बाटे और तरह तरह के जो सुविधा बाटे ओका लें, और साथे साथे मोटा अनाज जो बात आवे ना बाजरा के भैया, तो बाजरा तो भाई इस समय मांग भी बाटे और एकर भाई कहा कि मतलब ये
1: बिल्कुल
0: है कि
1: भैया।
0: खेती बहुत सरल बा भैया।
1: हाँ मोहन भैया, जो मोटा अनाज जब नाम ले भैया, तो ये मोटा अनाज हर आदमी के यहाँ समय प्रयोग करे चाहे, जैसे बीमारी से दूर रहे बदे बहुत जरूरी है भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहे भाई सिर्फ एक ही फसल पे किसान भाई केंद्रित न रहें,
1: हाँ
0: अपन भाई धान है तिल है बाजरा है और सावा है भाई, तमाम तरह के जो फसल यहाँ है लें। और जो एक बात कहा ना कि शुरुआत में तो भाई सब्जी बोया,
1: हाँ
0: तो भाई सब्जी तो भाई खैर नकदी फसल बाटे,
1: हाँ
0: अगर किसान भाई एका करता है तो निश्चय रूप से उनके 4 पैसा का आमदनी के भी स्रोत बाटे जौन है। और साथे साथे एक जौन कहा था कि जब घरे के उपजाई सब्जी बाटे
1: हाँ
0: तो एक पौष्टिक जौन अपने भोजन के तत्व हैं उसे भी पूर्ति होती भी है।
1: मोहन भैया, अगर जो यहाँ पर सब्जी कौन ऐसा बा कि जो रसायन प्रयोग ना कही बाटे,
0: हाँ
1: केवल
0: बिल्कुल
1: जैविक खाद से अगर पैदा हो, कितना बढ़िया शरीर के फायदा करे।
0: बिल्कुल, स्वादिष्ट भैया उतने होते जौना है। और हम कहे भाई देखा बाजार में एकर मांग भी अच्छी बाटे जौना है।
1: हाँ और भैया, ये दिमाग के में न रहे कि हम रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करबे तो ज़्यादा पैदा होए, ऐसा
0: हाँ
1: कुछ नहीं ना भैया, जैविक खाद से बहुत अच्छा अनाज पैदा
0: बिल्कुल
1: कही
0: कह
1: जाते
0: गया
1: हैं।
0: भैया, देखा पहले ही है तो होत रहा
1: हाँ
0: भाई, जब देश में एक क्रांति आई जो ना कि अनाज का उत्पादन भाई बढ़ावा बा,
1: हाँ भैया।
0: तो जरूरत के मुताबिक भाई रसायन के प्रयोग किया गया जो ना है। लेकिन अब भाई देखा थे ना भाई, देखी देखा पाप देखी देखा पुन भाई, कहा जाता ना गाँव
1: हाँ
0: में अपने,
1: भैया, हाँ
0: तो
1: हाँ
0: भाई कहन भाई थोड़ा सा खाद डालने हैं तो कलो भाई उन्होंने जाए बढ़ाई डाई दे जो ना।
1: हाँ हम वो पैदा करी।
0: हाँ तो भाई उत्पादन ले के चक्कर में भाई अपन माटी जो ना है वो संरचना गड़बड़ हुई है।
1: हाँ
0: हम कहे भाई किसान भाइयों से हम सभी हमेशा ही आग्रह करी थी कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक भैया हरे के माध्यम से, और साथे साथे जहाँ पर भी किसान मेला लगत बटे किसान गोष्ठी होत बटे यह बात विशेष बल दिया जाता कि अब भाई अपन माटी बचावा। तो हम कहे भाई देखा बात बत कही होत रही, पहले सनेस सुनवाई दे फिर गीत गौ नहीं हो।
1: ठीक भैया, सुनाई दी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: बिल्कुल
4: भाई, तो हम कहीं देखा आज छंगू लाल लहरी और संघातिन के भाई विकास गीत बा, सुनवा दिया जाए।
3: ठीक भैया, के सुनवा दी।

0: भैया बिरजू,
1: हाँ भैया।
0: हम कहे भाई देखा छंगूलाल लहरी के कितनी बढ़िया गौनाई रही है भाई। देखा हो भैया एक बात आए,
1: हाँ
0: हम कही भाई इस समय बरसात के मौसम तो
1: मौसम
0: चल
1: चल।
0: रहा
1: हाँ
0: है,
1: भैया।
0: और इस समय भाई खेती किसानी के साथे साथे एक और बहुत महत्वपूर्ण काम बा भाई, कि भाई अपन जग हरियर रहे, हरियाली रहे, एक एक खातिर भाई सब के हो पेड़ लगावा।
1: हाँ भैया एकदम बढ़िया।
0: हाँ
1: पेड़ भैया हमें सबके फल फूल सब कुछ दे।
0: बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा अभियान भी चलत बाटे एक पेड़ माँ के नाम, तो खेती के साथे साथे देखा पेड़ रुख के जौन महत्व बाटे भाई अपने पर्यावरण के संतुलन में जौन है वो भाई शुरुआत से देखा ही पड़ ना। तो जरूरी बाटे कि भाई जहाँ भी खाली जगह बाटे वहाँ पे भाई वृक्षारोपण किए जाए, और अब तो भाई देखा अपने गांव गांव में भाई पंचायत स्तर पे विकास खंड स्तर पे भाई
1: हाँ।
0: पौधा देखा मिलता है भाई, निःशुल्क पौधा मिलता है। तो भाई वहाँ से जाए के और उसका जो मानक बाटे भाई गड्ढा खोदें और वहाँ खाद पानी से डाई के लगावें, और साथे साथे ओका जैसे नान के लड़किया भाई सेव जात है वही तरह से ओका लालन पालन करें।
1: हाँ मोहन भैया, आप तो बढ़िया बढ़िया जो मटे फल वाले भी वृक्ष लगा सकते हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: फल देबो करो, खाबो करो, बाजारों बेचे
0: बिल्कुल भाई, हम कही तबई होए जब तुहार भाई बगीचा तैयार होए।
1: तैयार हो तब।
0: हाँ
1: हाँ भैया।
0: तो भाई सिर्फ फलदार ही वृक्ष नहीं भाई, देखा तमाम तरह के भाई लकड़ी वाले भी यहाँ हैं, हम कहे भाई साखुआ है, सागौन है भाई, ऐसे भाई एक कुछ साल में भी मेहनत कर ही दे जो ना है तो बढ़िया आमदनी के
1: आमदनी।
0: स्रोत हैं भाई जो ना है।
1: हाँ हाँ भैया।
0: तो अब भाई बहुत अपने गांव देहात में देखा जमीन ऐसे ना है कि जहाँ खेती बाड़ी काम नहीं हो पावल बा, तो भाई ओका वहाँ पे ओढंग से व्यवस्थित कर दे तो अच्छा खासा भाई देखा वहाँ वन क्षेत्र तैयार हो जाए
1: हाँ
0: जो
1: भैया,
0: ना।
1: वहाँ ही देखे कि कौन पौधा ऐसा है कि जो कम पानी में हो जाए,
0: बिल्कुल
1: कहीं लगाए
0: बिल्कुल।
1: नहीं।
0: एक बात यह कहा भैया,
1: हाँ
0: हम कहीं
1: भैया।
0: देखा पौधा तो भाई पानी तो जरूरत पड़ ही करत है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन जो उनका है ना कि कौन कम है कौन ज़्यादा बा,
1: हाँ कुछ
0: तो एक तो खैर चयन करबे करें
1: हाँ
0: लेकिन भाई कुछ समय के लिए भाई उनके लिए भी समय
1: समय दें।
0: देहे पड़े जाना है भाई। देखा हर समय भाई बारिश का एक समय होता है तो भाई प्राकृतिक रूप से जो ना उनका सिंचाई हो जाती जो ना है, लेकिन अन्य समय पे भी वो देख रेख खुद करे पड़े जो
1: हाँ
0: ना है।
1: हाँ हाँ भैया।
0: ये ना है कि भाई वृक्षारोपण अभियान चला भाई गया चार पेड़ भाई लगाए के चलाए कि हाँ पेड़ लगाए दिए।
1: हाँ जैसे बरसात बिता भैया, फिर सुखाप चालू,
0: हाँ
1: कबो
0: तो
1: दिखाई
0: भाई
1: ना
0: ये
1: ये
0: बहादुरी काम ना हो
1: ना
0: जो
1: हो
0: ना
1: भाई।
0: है
1: हाँ भैया।
0: भाई, बहादुरी का एक लगावा लेकिन ओका जियावा जो ना,
1: जिया हुआ।
0: तब भाई ओकर आवे वाली पीढ़ी के लिए जो ना है आप भाई खुद देख जावा जो ना है।
1: हाँ हाँ भैया। और भैया के छाया ले जाए अपने पशु भी, वहाँ जैसे कहो चराव उराव
0: बिल्कुल
1: गया
0: भाई, हम
1: भैया,
0: कहीं देखा अब तो भाई दूर दूर तक चला जा जा रास्ता में भाई कहूँ एक आठ पेड़
1: पेड़ नहीं
0: रोक
1: दिखा था।
0: देखान भाई, खूब धूप बाटे तो वही दरे लागत के कितना देर बैठा रहा भाई।
1: हाँ
0: हाँ
1: भैया, पेड़ नीचे भैया हमेशा
0: बिल्कुल
1: ठंडा
0: भाई,
1: बना रहा था।
0: देखा एक बात यह हो रहा है बिजू भैया
1: हाँ
0: कि
1: भैया।
0: भाई बदला समय में भाई विकास बहुत जरूरी रहा,
1: हाँ
0: तो भाई जरूरी रहा है जब तरह तरह के भाई जगह जगह से बड़ी बड़ी सड़कें निकली जो ना है,
1: हाँ
0: तो रास्ते में जो भी पेड़ रुख मिला भाई उनका जरूरत आवश्यकता के अनुसार कटाई भी जो ना है,
1: हाँ
0: लेकिन भाई अगर एक पेड़ कटा बाटे तो ओके बदले 10 पेड़ तैयार करा।
1: भैया, स्थान बदल सकते थे तो पेड़ हम अंते जैसे कटा, आप जो
0: बिल्कुल
1: सही कहें कि दूसरे जगह हम लगाए के
0: लगा के
1: एक
0: बिल्कुल
1: जगह
0: हाँ
1: 10 लगाए के बढ़िया।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो भाई यह तरीका अटे जो ना है भाई,
1: हाँ
0: विकास भी नहीं रुके और
1: हाँ
0: प्रकृति का संतुलन भी बना रहे जो ना है।
1: हाँ
0: एक एक खातिर जौन वृक्षारोपण अभियान बाटा एक पेड़ माँ के नाम बा, ये हमार सब एक देखा नैतिक जिम्मेदारी है हाँ अपने सब किसान भाइयों की, कि भाई अपन बाग बगीचा भी तैयार करें, खेती बाड़ी भी करें और प्रकृति के अपने संतुलन भी बना रहे
1: और
0: जैसे
1: मोहन भैया सही कही हैं कि
0: भाई। देखा पेड़ रुख बिरजू भैया सिर्फ प्रकृति संतुलन नहीं करते भाई, देखा भाई पंछी यहाँ तमाम तरह के जीव जंतु हैं
1: हाँ
0: जेकर भाई पोषण का आधार देखा पेड़ रुख
1: हाँ
0: पर,
1: वहीं पे आश्रित
0: तो
1: हैं।
0: भाई अगर इस तरह से जो काम करब भाई कितना बड़ा परोपकार का काम होते जो है, तो सब के हो आगे आओ भाई और वृक्षारोपण जो है अभियान करें। हम कहीं देखा अपन गांव देहात के जब बात आवत है गीत

0: भाषा की बात आवत है तो भाई अपने लोक कलाकार में तमाम तरह के कविता हैं
1: हाँ
0: जेका
1: हाँ
0: भाई कहावत यहाँ चलन बा, सब
1: हाँ
0: कविता के माध्यम से जाने के मौका मिलत है।
1: हाँ
0: आ
1: भैया,
0: सबरेज अहमद के भाई लोक भाषा कविता पाठ बा, का कविता ही करें और सुना जाए।
1: ठीक भैया, किस सुनाई दी।

और किसान भाई देखें आगे कि चरखा चलाई के दिखाई दीहन बापू, चरखा चलाई के।

वस्त्र खादि सबका पहिराई दिहिन बापू, खादि वस्त्र सबका।

हाँ किसान भाई, अब एक दूसर कविता आप लोग देखें। आजकल मोटा अनाज के चर्चा बहुत बा। देखें एक गीत आप लोग कि बजरी जो धरी चना मटर, बजरी जो धरी चना मटर खाओ रे खियावा किसान भैया।

बाबा देखे बंद कि दूध दही माठा रहा सबही के घरावा, दूध दही माठा रहा।

हर साल खेतवा मा सनई बोवावा, हर साल खेतवा मा।

आया रुखिया किसान भैया अन्न मोटा उगावा। और देखें किसान भैया।

0: हाँ बिरजू भैया,
1: हाँ भैया,
0: उनका ही भाई देखा, गीत गौनाई हो गया, कविता पाठ हो गया उनका।
1: हाँ हाँ हाँ
0: अब बात आवत है कि भाई इस समय देखा जल संरक्षण के बात चलती है।
1: हाँ भैया,
0: हाँ, अब बरसात का मौसम है भाई, तो
1: हाँ
0: हम कहे भाई अपने गांव देहात में जो भी पोखरा तालाब हैं
1: हाँ
0: भाई, ओकर जो नाली के माध्यम से वहाँ तक भाई पानी पहुँचाई दें,
1: हाँ हाँ
0: जैसे भाई जो बारिश के पानी जब इकट्ठा हो जाए ना, तो एक तो भाई जल संरक्षण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बा
1: हाँ
0: कि भाई अपन जो भूगर्भ जल बाटे
1: हाँ
0: वो सुरक्षित होए, जो ना है ओका जो स्तर बा वो बराबर बना रहे, और वक्त जरूरत पड़े भाई देखा तालाब से भाई सिंचाई के भी है और तमाम तरह की आवश्यकता की उसे पूर्ति हो जो
1: हाँ
0: ना
1: भैया, जीव
0: है।
1: जंतु भी जे के काम
0: बिल्कुल,
1: दे।
0: कहे नहीं भाई देखा होगा तरह तरह के भाई उपयोग हो जो ना है, तो सबसे पहला यह बात कि अपन किसान भाई जो ना है प्राथमिकता के तौर पर अपने ग्रामीण जितना भी हाँ है कि भाई जल संरक्षण पे जो ना है जोर दें, और
1: जोर दे।
0: काम भाई आप अव्यय कम करें, उपयोग सदुपयोग जो अनुभव कर सही से करें जो ना
1: हाँ,
0: है।
1: बरसात का पानी भैया बेकार ना जाए पावे।
0: बिल्कुल, तो भाई तमाम तरह के देखा योजना भी आओत यहाँ भाई नाली निर्माण के जो ना है अलग अलग जो ना है, तो ओके हिसाब से भाई अपने गांव के भी विकास के साथ साथ ये सभी बहुत आवश्यक बटे। कहे से अगर देखा भूगर्भ जल सुरक्षित रहे तो भाई पिए के साफ पानी मिले और सिंचाई पताई भी काम होते रहे भैया जो ना है।
1: हाँ, समय समय भैया पेड़ पौधा भी अगर उनको सिंचाई किया
0: बिल्कुल
1: जाए।
0: बिल्कुल, तो हम कही भाई बात बात कही तो होत रही,
1: हाँ भैया,
0: बोला हम कही देखा भाई सामान आवे वाला बटे कि कजरी हो जाए जो ना
1: हाँ
0: है,
1: भैया,
0: तो छंगुलान लहरी और संघातिन के लह बाटे कही सुन लिया जाए।
1: ठीक भैया, किस सुनवाई।

0: वीर जी भैया, हम कहे गौ नहीं हो गया, एक बात है, हम कहे देखा अपने किसान भाइन के लिए हम लोग भाई तरह तरह से कार्यक्रम बनाए थी कि उनका जौन भाई जरूरत बाटे खेती किसानी के लिहाज से जौन भी ज्ञान जो पूरा हो सके जौन है। लेकिन अपन किसान भाई अपने कार्यक्रम बारे में का भाई सुझाव दे चाहता है, कहता से कार्यक्रम चाहते हैं तो ओके बारे में भाई देखा कि नंबर बांटे अपने किसान भाइन के ओका सुनवाई दे जाऊ ना है और नंबर दे दे और बताओ कि अपने किसान भाई कैसे हम अपन सूचना दे सकते हैं जो ना बताओ भैया।
1: हाँ तो देखो भैया नंबर लिख ली 800-492-6250 भैया, नंबर एक बार और नोट कर ली।
0: हाँ बता दे भैया
1: 800-492-6250
0: बिल्कुल भाई यह नंबर पे भाई देखा व्हाट्सएप के जरिए और अपने आकाशवाणी के फेसबुक पेज पे भी अपन प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही साथ मौसम को देख के खेती बाड़ी करें, अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखें और समय बाब किसान भाई से विदा ली जाए तो पंचो
1: राम राम, राम।

हमारे ग्रामीण भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी प्रयागराज का प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में ये देशभक्तिपूर्ण रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवित स्वरूमी, ये देशभक्तिपूर्ण रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और सशक्त बनाएगा ये कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में प्रदेश सरकार को SIT में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश। 2 हफ्ते में मांगी जांच की पहली स्टेटस रिपोर्ट। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल अधिकांश जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। पेश एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा पर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि एक बार

0: सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा पर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि एक बार प्रस्तावित कानून बन जाने और टास्क फोर्स के पूरी क्षमता से काम शुरू कर देने के बाद देश में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी कमेटी बनी है, आप सब लोगों ने भी नाम देखा होगा। नंदन जी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनाया है, श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने अपने अपने क्षेत्र के महारथियों को उसमें शामिल किया है और मैं समझता हूं कि ये महत्वपूर्ण विधेयक जब कानून का सकल अख्तियार करेगा और ये टास्क फोर्स अपने जब पूरी तरीके से अस्तित्व में आकर अपने काम को आगे बढ़ाएगा तो पेपर लीक जैसे मामले देश में दोबारा हमको लगता है कि अब सुनाई नहीं दे।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त धनराशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एसआईटी को जांच के संबंध में 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस अधिकारी एस किरण की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में एक पुलिस उप महानिरीक्षक और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल ने एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के पीठ के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय की पीठ मामले के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच और मंदिर ट्रस्ट के वित्त का लेखा परीक्षा करने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी। उधर इस मामले में अयोध्या में आज एंटी करप्शन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की है। इसको लेकर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराए।
3: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति, खासतौर से हर नागरिक का को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदर पूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 जुलाई को वाराणसी से देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित ये अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। वाराणसी में इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य ने बताया कि अभियान 5 चरणों में संचालित होगा। इसका उद्देश्य गुरु रविदास के समरसता, कर्मयोग, भक्ति और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है।
4: संत शिरोमणि

0: रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है पूरे देश में संत रविदास जी के विचारों को उनके आदर्शों को ले जाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इन कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम है 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य निरंजन दास जी के कर कमलों से 131 कलशों को पूरे देश में भेजा जाएगा। इन कलशों का कई जगह पर जिला मुख्यालय पर पूजन और सम्मान होगा।
1: राजधानी लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और बलिया में घाघरा खतरे के निशान के पास बह रही है। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश, परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और सशक्त बनाएगा ये कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में प्रदेश सरकार को SIT में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश। 2 हफ्ते में मांगी जांच की पहली स्टेटस रिपोर्ट। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल अधिकांश जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनिल रंजन भौमिक की वार्ता, जिसका विषय है भारतीय सिनेमा और सामाजिक यथार्थवाद।
3: भारतीय फिल्में अपने समय के साथ हमेशा बदलती रही हैं। शुरुआती दौर में पारसी थिएटर ने जब फिल्मों की ओर रुख किया तो ऐसी सामाजिक फिल्में बनने लगी जिन्हें वे अपने रंगमंच में साकार रूप में नहीं दर्शा पा रहे थे। शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक एवं समाज को बदल डालने वाली फिल्मों का जोर शुरुआती दौर पर था। दादा साहब फाल्के, वी शांताराम ऐसी फिल्मों के जनक माने जाते हैं। अंधविश्वास एवं सामाजिक बुराइयों को प्रहार करते हुए उनकी फिल्में होती थीं। दो आंखें बारह हाथ ऐसी फिल्म है, फिल्मांकन की यथार्थ को दर्शकों के सामने लाने में वी शांताराम को अपनी एक आंख तक गंवानी पड़ी। लीडर जैसी फिल्मों ने मानव और मनुष्य की होड़ को हमारे सामने प्रस्तुत किया तो भक्त प्रहलाद जैसी धार्मिक फिल्मों में अत्याचार के विरुद्ध प्रहलाद का दर्शन भी हमें अवगत कराता है। प्रारंभिक दौर में सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनती थीं। भारत का आज़ादी के बाद निर्माण हो रहा था। जागृति जैसी फिल्मों के माध्यम से जन जन की भावना बच्चों एवं युवकों को जागृत कर रही थी। दोस्ती जैसी फिल्मों से सच्चे दोस्त की भावना को हम दर्श। धर्म प्रधान फिल्में बनाई जा रही थीं। 60 का दशक ऐसी फिल्मों का दशक था। 70 के दशक में आते आते हमारी फिल्में कुछ युवा हो गई थीं और हमें भी आज़ादी मिले कुछ दिन हो चुके थे। लोगों की आशाएं अब आक्रोश में बदलने लगा था और हमारे दर्शक आक्रोश हो रहे थे क्योंकि चारों ओर बेरोजगार थे युवा। उन्हीं दिनों आक्रोश, दीवार, कुली, जंजीर जैसी फिल्मों के माध्यम से वे अप

अपने गुस्से का इजहार देख रहे थे। ऐसे ही समय में मेरे अपने गुलजार बेरोजगार युवकों की कहानी को लेकर आते हैं, तो अंकुश जैसी फिल्मों के माध्यम से बेरोजगार युवकों का प्रतिनिधित्व नाना पाटेकर जैसे समर्थ कलाकार करते हैं। इसी दशक में राजेश खन्ना भी आए। आनंद, खामोशी, मिली जैसी गंभीर फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी अपनी टीम के साथ लेकर आते हैं। बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार ने जीवन से जुड़ी हुई फिल्मों को लेकर हमारे सपनों को नया रंग भरना शुरू कर दिया था। ऐसे ही समय में 60 एवं 70 के दशक में बनने वाली फिल्में जीवन के बहुत यथार्थ को लेकर चलती थीं। ऐसे ही समय में बनने वाली फिल्मों को समानांतर फिल्मों की संज्ञा दी जाने लगी। समानांतर फिल्मों ने 70 के दशक में भारतीय फिल्मों को न केवल यथार्थवादी फिल्में वरन हमें एक ऐसे अच्छे निर्देशक, अभिनेता, सिनेमाटोग्राफर भी दिए। उन्हीं में से श्याम बेनेकल जैसे समर्थ निर्देशक भूमिका मंथन जैसे यथार्थवादी फिल्मों को लेकर हमारे सामने आते हैं। आक्रोश में हमें ओमपुरी जैसे सशक्त अभिनेता मिलते हैं, तो गोविंद नेलानी जैसे सशक्त कैमरामैन निर्देशक भी इनों दिनों हमें मिलते हैं। इसी दौर में श्याम बेनेगल शशि कपूर जैसे अभिनेता के साथ मिलकर जुनून जैसी यथार्थवादी फिल्मों का निर्माण करते हैं। एक तरफ 70 के दशक में युवा आक्रोश का प्रतीक बने अमिताभ बच्चन यंग यंगरी मैन बनकर हमारे सामने आए, तो वहीं यथार्थवादी फिल्में भी इन कमर्शियल फिल्मों को टक्कर देती हुई, उनका सामना करती हुई विभिन्न फिल्मों को लेकर हमारे सामने आते हैं। यथार्थवादी फिल्में अपने जमीन काफ़ी गहरी बना ली थी। सारांश जैसी उद्देश्यपरक फिल्मों ने बुजुर्गों में एक नया जोश भर दिया था। अनुपम खेर अपनी पहली फिल्म में एक बुजुर्ग जागरूक नागरिक के रूप में हमारे सामने आते हैं और समाज में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आदर्श और सम्मानजनक जीवन जीने का संदेश देते हैं, जीवन का एक मकसद देते हैं। ऐसे ही समय में राकेश मेहता, महेश भट्ट, गोविंद नेलानी, गुलजार, श्याम बेनेगल अपनी सशक्त फिल्मों के साथ समाज एवं जीवन से जुड़ी यथार्थवादी फिल्मों को लेकर हमारे सामने आते हैं। ऐसे ही समय में व्यावसायिक फिल्में भी बहुत जोरों पर अपना वर्चस्व लिए सपने दिखाते हुए फिल्में लेकर हमारे सामने आते हैं, जो जीवन से कोसों दूर अति अयथार्थवादी फिल्में लेकर आते हैं। व्यावसायिक फिल्मों की चकाचौंध रुपहले पर्दे पर छाती चली गई और समानांतर फिल्में लगातार धीरे धीरे बंद होती चली गईं। फिल्मी हीरो हीरोइनों को पेड़ के चारों ओर चक्कर काटते गीत गाते दिखने लगे। फिर भी राजश्री प्रोडक्शन, राज कपूर, आर के बैनर के साथ समानांतर और व्यावसायिक फिल्मों के बीच एक सेतु बनाते हुए जीवन से जुड़ी हुई सार्थक यथार्थवादी फिल्मों लेकर हमारे सामने आते गए। नदिया के पार तथा हम आपके हैं कौन में ग्रामीण दर्शकों एवं शहरी दर्शकों को अपना जीवन, अपना समाज, अपना घर, अपने संस्कृति दिखाई देता है। खूब कमाई हुई ऐसी फिल्मों से। राज कपूर ने ऐसे ही समय में करीब 5 घंटे की फिल्म मेरा नाम जोकर बनाई। बचपन, जवानी एवं बुढ़ापा को दर्शाता हुआ उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दर्शन के रूप में जब नुकसान का सौदा साबित हुआ, तो उन्होंने युवा मन को तरोताज़ा करने के लिए बॉबी फिल्म के माध्यम से एकदम नए चेहरों ऋषि कपूर, डिंपल कपाडिया को पेश किया और गायक शैलेंद्र को भी। एक ताज़ी हवा की तरह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई और उनकी देखा देखी युवा मन को आधार बनाकर बहुत सी फिल्में बननी शुरू हो गईं। एक दूजे के लिए इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। युवाओं को ऐसी फिल्में भाने लगी। नई नई फिल्मों में नए नए युवा एवं युवतियों को मुख्य भूमिकाएं मिलने लगी। जीवन से कोसों दूर ऐसी फिल्मों ने युवाओं के
चाल चलन से लेकर उनके कपड़े लत्ते में परिवर्तन करना।

शुरू कर दिया। जिसे देखो वही उसी तरह के बाल चाल ढाल में ढलता दिखाई देने लगा। फिल्में बहुत कुछ कर सकती हैं, दिशा और दशा बदल सकती हैं, अलबत्ता वे शुद्ध व्यावसायिक न हो जाएं, उद्देश्य परक बनाई जाएं। ऐसे ही समय में कुछ फिल्मकार ऐसे आए जो युवा मन को टटोलते हुए लोक लुभावन से कोसों दूर रहते हुए रंग दे बसंती जैसी फिल्में लेकर हमारे सामने आते हैं। इस फिल्म ने निर्माताओं को जीवन के यथार्थ को समझने में बहुत योगदान दिया। खोसला का घोसला, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्मों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को बहुत ही सशक्त तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन दोनों फिल्मों की सफलता से प्रेरित होकर निर्देशक निर्माताओं ने 3 Idiots, ब्लैक जैसी फिल्में बनाई जो समानांतर फिल्मों की तर्ज पर ही शुद्ध व्यावसायिक साबित हुई। महानायक अमिताभ बच्चन भी यंग एंग्री मैन का इमेज छोड़ घरेलू फिल्मों की ओर मुड़े। बागवान, पा, चीनी कम और अभी हाल में प्रदर्शित पीकू के माध्यम से न केवल अपने अभिनय की क्षमता को हमारे सामने दर्शाया वरन यथार्थ फिल्मों को मजबूती भी प्रदान कराई। मीरा नायर हमारे समय की एक ऐसी सफल निर्देशिका हैं जिन्होंने यथार्थ परक फिल्में बनाने में अपना पूरा जीवन खपा दिया। भले ही विधवाओं की समस्याओं को लेकर उनकी बनाई गई फिल्म वाटर बनारस में विवाद के चलते न बन पाई हो, परंतु ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही प्रमाण था कि ये फिल्म बनी भी और फिल्मी महोत्सवों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। इसी तरह 80 के दशक में हम सई पराजपे जैसी निर्देशिका को अर्थपूर्ण फिल्में लेकर हमारे सामने आते हुए देखते हैं और वे बॉम्बे के चालों में रहने वाले परिवारों को कछुए एवं खरगोश की कहानी के माध्यम से हमारे सामने पेश करते हैं। ऐसे ही समय में नए नए गीतकार संगीतकार भी आए जिन्होंने शब्दों के अर्थ को एक नया आयाम दिया। फिल्म निर्माण का मकसद अब वो नहीं रहा जो शुरुआती दौर में हुआ करता था। निर्माता निर्देशक अपने घरों का लोटा तक बेचकर सार्थक और यथार्थवादी फिल्में समाज को जागृत करने के लिए बनाते थे। वी शांताराम ऐसे ही एक निर्देशक थे जो समाज सुधारक का काम फिल्मों के माध्यम से करते थे। राज कपूर ने भी सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से नारी चरित्र के उस पक्ष को उजागर किया जो अमावस की तरह काली रात बनी हुई थी हमारे समाज में। क्या बासु चटर्जी की बनाई यथार्थवादी फिल्में छोटी सी बात, रजनीगंधा को हम भूल पाएंगे? इन्हीं फिल्मों से हमें अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा जैसे समर्थवान फिल्म कलाकार मिले। आम आदमी का चेहरा अमोल पालेकर जैसा ही दिखतो दिखता था। नाना पाटेकर प्रहार लेकर जब आते हैं तो समाज का वो चेहरा भी हमारे सामने आता है जो क्रूर है और प्रहार का संदेश तो एक ऐसा संदेश है जो आने वाली नस्लें हमेशा याद करती रहेंगी। हिंसात्मक फिल्मों और माफिया युग ने हमारे फिल्मों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह की मारधाड़ फिल्मों में हमें आज दिखाई देती है, क्या यथार्थ में आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी है? दामुल, हिप्पे फुर्रे, अपहरण, आरक्षण लेकर जब बिहार के निर्देशक प्रकाश झा हमारे सामने आते हैं तो हमें अपना वर्तमान दिखता है। बिहार में घटे कई घटनाओं को आधार बनाकर यथार्थवादी घटनाओं को लेकर दामुल, अपहरण जैसी सार्थक फिल्में हमें बार बार देखने के लिए बाध्य करती हैं। पार फिल्म के माध्यम से घोष जैसे निर्देशक फिल्मी यथार्थ को लेकर आते हैं तो उसी समय महेश भट्ट ये अर्थ को लेकर एक नया अर्थ देते हैं। 70 के दशक में भी महान फिल्मकार सत्यजीत रे जब हिंदी फिल्म में फिल्म बनाने की बात सोचते हैं तो उन्हें शतरंज के खिलाड़ी तथा मृणाल सेन को कफन की ही तो याद आती है जो जीवन से इस तरह जुड़ी हुई है कि जब भी प्रेमचंद के साहित्य की बात होती है तो इन दोनों कहानियों की यथार्थता ही उन्हें जीवंत बनाती है। वर्तमान में

0: ऐसे बहुत से निर्देशक भारतीय फिल्में बना रहे हैं जो जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करते ही हैं, साथ ही साथ मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद भी है। हाल ही में आई गौर हरिदास फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के संघर्षों को लेकर है जो अपने नाम और अपने जीवित होने के प्रमाण के लिए 32 वर्ष संघर्ष करता है और अंत में उसे सफलता भी मिलती है। आमिर खान जैसे हमारे समय के अभिनेता निर्माता हैं जो जोखिम लेकर पीके बनाते हैं, मंगल पांडे में अभिनय करते हैं, लगान जैसी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित फिल्मों में काम एवं प्रस्तुत कर जो भारतीय पैनोरमा को विश्व पटल पर प्रस्तुत तो करते ही हैं और जूरी के सामने पसीने भी छुड़वाते हैं उसकी गुणवत्ता और प्रस्तुतिकरण को लेकर। आज वर्तमान समय में पुनः वो दौर वापस आ रहा है जब हमारे फिल्मकार यथार्थ परख फिल्मों की ओर लौट रहे हैं।
1: श्रोताओं, आज के हिंदी कार्यक्रम में आपने सुना अनिल रंजन भौमिक की वार्ता। विषय था भारतीय सिनेमा और सामाजिक यथार्थवाद। इसी के साथ अब आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं मंजू नारायण। इनके स्वर में हम आपको एक दो भक्ति रचनाएं सुनवाने जा रही हैं। आइए पहले सुनते हैं युगल प्रिया का लिखा ये भजन।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारी कलाकार हैं मंजू नारायण। प्रोग्राम के आखिर में इनके स्वर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मंजू नारायण के स्वर में एक दो भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर भी आप हमारी कार्यक्रम सुन रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को है। अगला प्रसारण हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बस थोड़ी प्रतीक्षा।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब ये है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम

और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा

उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खरगे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मॉनसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्ष

0: के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृहमंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 27 जुलाई है, वो दिन जब भारत ने अपना मिसाइल मैन पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को खो दिया। पर वो गए नहीं, वो हर उस बच्चे में जिंदा ही जो बड़ा सपना देखता है। कलाम साहब कहा करते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। रामेश्वर की गलियों से निकले एक पंछी ने सच में उड़ान भरी। कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं, बस जुनून था देश के लिए कुछ कर गुजरने का।

0: पवन में, दिल से मेरे लहरे उठे ठंडे पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के तमन में।
1: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थी, राष्ट्रपति थी, पर सबसे पहले वो एक टीचर थी। बच्चों से मिलते ही उनकी आंखें चमक जाती थीं। डॉक्टर कलाम कहा करती थी, मेरा असली काम तब शुरू होता है जब मैं क्लास में जाता हूँ। उन्होंने लाखों बच्चों को नाम रोशन करने का मंत्र दिया।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आज ही उनकी पुण्यतिथि। उन्होंने अखबार बेचकर पढ़ाई की, फिर देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, सादगी और संघर्ष की अद्भुत मिसाल पेश की।
1: कर चले हम फिदा जान तन

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: वे लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में हमें बातें की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। आज है उनकी पुण्यतिथि।

लक्ष्यों से कदम मिलते हैं। डॉक्टर कलाम का उसूल था, छोटे लक्ष्य अपराधी। हमेशा वे युवाओं से कहा करती थी, बड़े सपने देखो। इसरो, डीआरडीओ, राष्ट्रपति भवन और फिर क्लासरूम, वो एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य तक दौड़ती रही।

27 जुलाई 2015 शिलोंग। बच्चों को लेक्चर देते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। आखिरी पल तक वे बच्चों को सिखाते रहे। बिल्कुल कलाम साहब की तरह हमें भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देनी है। वो हर बच्चे में इकबाल देखती थी, कहती थी तुम भी देश का झंडा सबसे ऊंचा लहरा सकती हो। तो आइए आज प्रण लें कि हम पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और भारत को विकसित बनाएंगे। आकाशवाणी प्रयागराज की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्रोताओ, इस प्रोग्राम के तहत हमने आपको जिन फिल्मों की गाने सुनवाई उनके नाम इस तरह से थे: चोरी चोरी, कयामत सी कयामत तक, हकीकत, लक्ष्य और इकबाल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अपने सुनने वालों को याद दिला दी, आज रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का प्रोग्राम कहकशा, और 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और 10:30 पर नम्रता देव का शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
3: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
2: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई

0: करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर

0: में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के

0: CSS caught in the act of formation. This has provided direct evidence of how such stars are created. BSS are a peculiar class of stars found in star clusters that appear hotter, brighter, and more massive than their peers. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both houses of parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over NEET issue. UP government sets up 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Odisha. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver in women's 53-kilogram category. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। अवामी इम्तिहानात का तर्मीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में पेपर लीक मामलात में सख्त तरीन कार्रवाई करने की तजवीज है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की तहकीकात के लिए आईजीपी की क्यादत में एक 4 रुकनी एसआईटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की भी हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और दौलत मुश्तरक गेम्स में वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दो नौजवानों की कार्रवाई नीट मामले पर तालिबे इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई से मुतालिक अपोजिशन पार्टियों के शोर शराबे के बाद दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में आज अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए है। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐवान में ये बिल पेश किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अराकीन पर जोर दिया कि वो बिल पर बहस होने दें। उन्होंने कहा कि इस बिल पर बहस के लिए 6 घंटे वक्फ किए गए हैं और 91 तरमीमात मौसूल हुई हैं।
2: जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें।
1: चूंकि शोर शराबा जारी रहा, इसलिए प्रिसाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 एक अहम कानून है जो मुल्क के करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल, जफाकशी और उम्मीदों से वाबस्ता है।
3: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए।
1: इस दौरान राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब ऐवान की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई, तो उमूर दाखिला के वजीर ममलकत ने कौमी तज़ीम की बेहरमती की रोक

0: थाम का तरमीमी बिल 2026 पे बहस के लिए पेश किया। इस बिल का मकसद कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम के कानून 1971 में मजीद तरमीम करना है। मुजव्वजा कानून वंदे मातरम को कौमी तराने जनगणमन जैसा ही कानूनी तहफ़ फराहम करना चाहता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मानसून इजलास के दूसरे हफ्ते के पहले रोज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार मुलतवी की गई क्योंकि अपोजिशन के अराकीन नीट मामले पर एहतजाज के दौरान तालिब इल्मों के खिलाफ दर्ज की गई FIRs को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। लोकसभा की कार्रवाई चार बार मुलतवी की गई जबकि राज्यसभा की कार्रवाई पांच बार मुलतवी की गई। अपोजिशन के शोर शराबे के माबैन अवामी इम्तहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए पेश किया गया है। इस कानून का मकसद एक जामे कानूनी लाहे अमल कायम करने के साथ साथ तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ़ फराहम करके इम्तहान के निज़ाम में शफाफियत, ईमानदारी और इसके वक़ार को मुस्तहकम करना है। इसमें बहुत सी अहम शिकें हैं जिनमें 10 साल तक की सज़ा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और कसूरवार ठहराए गए मुजरिमों की इमलाक को जब्त करने समेत सख्त गुंजाइशें शामिल हैं। चेयर और हुकूमत की बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन के अराकीन दोनों ऐवानों में शोर शराबा करते रहे। चूंकि शोर शराबा और मुखालफत का सिलसिला जारी रहा इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल यानी मंगल के रोज़ दोबारा शुरू होगी। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में मौसूल होने वाले अतियात की मुबैना चोरी की जांच के लिए लखनऊ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस की सरबराही में एक 4 रुकनी खसूसी तहकीकती टीम SIT तश्कील दी गई है। इस टीम में DIG ओहदे के एक अफसर, एक पुलिस सीनियर सुप्रिंटेंडेंट और एक एडिशनल SP शामिल होंगे। अदालत आलिया ने रियासती सरकार से कहा है कि वो SIT के 5वें रुकन के तौर पर फॉरेंसिक एक ऑडिटर को भी शामिल करे जो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत की बेंच उन बहुत सी उजरदारियों पर समाप्त कर रही थी जिनमें मंदिर ट्रस्ट के अतियात की चोरी और ऑडिट के इल्जाम के मामले में CBI के जरिए जाँच की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान आज उत्तर प्रदेश में खसूसी अदालत ने राम मंदिर अतियात की चोरी के मुबैना मामले में तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसी कर दी है। वजारत खारजा ने एक तजारती जहाज MV ओमोरफी पर हमले के बाद आज भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ओलेग्जेंडर पोलिशकुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया है। इस वाक़े पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने सख्त अल्फाज में तजारती जहाज़ों पर इस तरह के हमलों की मजम्मत की है। वजारत ने बहरी जहाज रानी के तहफ़ जहाज रानी की आज़ादी और बैन अवी तजारत पर इन हमलों के मनफी असरात को उजागर किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सफीर से दरख्वास्त की गई है कि वह यूक्रेन के हुकाम को तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने पर भारत की शदीद तशवीश से आगाह करें। वजारत ने यादा किया कि इस तरह की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जहाज़रानों की जिंदगियां खतरों में पड़ जाती हैं। इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और इनसे बचना चाहिए। सऊदी अरब ने आज कहा कि उसने इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया की जानिब से दागे गए ड्रोन मार गिराए हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी वजारत दिफा का बयान आज ऐसे वक्त पोस्ट किया गया जब अमरीका और ईरान ने हफ्तों की कशीदगी के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं। बयान में मजीद कहा गया कि इन ड्रोन्स में मशरिकी सऊदी अरब और राजधानी रियाज में पेट्रोलियम मराकज़ को निशाना बनाया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने चीन के अपने दौरे का आगाज़ आज CPC बैन अवी महकमे के नायब वजीर सन हयान के हमरा मीटिंग के साथ किया। उन्होंने लीडर सतह की रहनुमाई, तरजीही मामलात और वसीतर सियासी, अवाम से अवाम, तालीमी और थिंक टैंक तबादलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और चीन के दरमियान नथुला पास के जरिए सरहदी तिजारत अगले महीने की 1 तारीख से दोबारा शुरू हो जाएगी। ये तिजारत COVID-19 वबा के बाद साल 2020 से मुअत्तल थी। तिजारत दोबारा शुरू होने की तकरीब में तवक्को है कि दोनों मुल्कों के हुकाम शिरकत करेंगे। तवक्को है कि तिजारत के दोबारा शुरू होने से सरहद पार की तिजारत को फ़रोग मिलेगा जिससे इंदराज शुदा ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और मुंसलिक

0: कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। ओडिशा शदीद मानसून से दो चार है, क्योंकि बुहरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से रियासत भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ओडिशा के कई जिलों से ताज़ा सैलाब, पानी भर जाने, फसलों के नुकसान और बुनियादी ढांचे के नुकसान की खबर है। रियासती हुकूमत ने तैयारी और आफात से निमटने के इकदाम को मुस्तहकम करते हुए ज़िला इंतजामिया को सूरत हाल से निमटने के लिए 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: बुहरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से उड़ीसा भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ताज़ा सैलाब आ रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ ज़िले शदीद तौर पर मुतासिर हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने इस महीने की 30 तारीख तक रियासत के मयूरभंज, क्योंझार, बालासोर, भद्रक, जयपुर, देवगढ़, अंजुल, ढेनकनाल, सुबर्णापुर, बौद्ध, नौपारा और बलांगीर में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भद्रक ज़िले की 7 ग्राम पंचायतों में सैलाब जैसी सूरत हाल बरकरार है, जबकि सुबर्णापुर ज़िले से फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। रियासत के महसूल और कुदरती आफात से निमटने के वज़ीर सुरेश पुजारी ने

0: सूरतेहाल से निमटने के लिए 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: बहिरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से उड़ीसा भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ताज़ा सैलाब आ रहे हैं जिससे मुख्तलिफ ज़िले शदीद तौर पर मुतासिर हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने इस महीने की 30 तारीख तक रियासत के मयूरभंज, क्योंझार, बालासोर, भद्रक, जयपुर, देवगढ़, अंजुल, ढेनकनाल, सुबर्णापुर, बौद्ध, नौपारा और बलांगीर में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भद्रक ज़िले की 7 ग्राम पंचायतों में सैलाब जैसी सूरत हाल बरकरार है, जबकि सुबर्णापुर ज़िले से फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। रियासत के महसूल और कुदरती आफात से निमटने के वज़ीर सुरेश पुजारी ने आला सतह मीटिंग की सदारत करते हुए सभी ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट के दौरान 24 घंटे चौकसी बरतने और राहत और बचाव के फौरी इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उड़ीसा से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, वस्ती महाराष्ट्र, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक और विदर्भ में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहने की पेशगोई की है। उत्तराखंड हुकूमत ने अपने सभी जिलों की इंतजामिया को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। उत्तराखंड हुकूमत ने चारधाम यात्रियों, सयाहों और रिहायशियों को सफर से पहले मौसम से मुतालिक अपडेट हासिल करने का मशवरा दिया है। इधर आसाम में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में पानी की सतह कम हुई है। फिलहाल आसाम में 37,000 से ज्यादा अफराद अब भी 109 राहत कैंपों में कयाम पजीर हैं। ओडिशा के पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा की सालाना इख्तितामी रस्म नीलाद्री बीजे आज मनाई जा रही है। ये पवित्र तकरीब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के मंदिर के गर्भगृह में वाक़ रत्न सिंहासन पर रस्मी वापसी की अलामत है। पुरी में लाखों अकीदतमंद इस अजीमोशान वापसी के शाहिद बनने के लिए जमा हुए हैं, जो रथ यात्रा तकरीबात का अजीमोशान इख्तिताम है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये रस्म बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर लोगों से मिलजुल कर फातिहाना तौर पर अपनी अवधि पनाहगाह में वापस लौट आए हैं। भगवान जगन्नाथ का देवी लक्ष्मी को मुकद्दस रसगुल्ला पेश करना इस तकरीब का सबसे अहम लम्हा होता है। रसगुल्ला पेश करना खुशनूती और सुलह आश्ती की अलामत है। इसके बाद देवी लक्ष्मी मंदिर के दरवाजे खोल देती हैं, जो माफ़ी, हम आहंगी की बहाली और मोहब्बत की फतेह की अलामत है। नीलादरी बीजे के साथ रथ यात्रा का ये मुकद्दस सफ़र अपनी मजहबी तकमील को पहुँचता है। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज़।
0: दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस रहनुमाओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की उस अर्जदाश्त पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट की जानिब से नेशनल हेराल्ड से मुतालिक काले धन को जायज़ बनाने के केस में इन रहनुमाओं के खिलाफ दायर करदा ईडी की फर्द जुर्म पर समाअत करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मनोज जैन ने जवाब दहिंदा की जानिब से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद मामले की अगली समाअत के लिए 10 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। असातेजा की अहलियत से मुतालिक महाराष्ट्र के इम्तिहान के पेपर लीक मामले के अहम मुलजिम ने आज भिवंडी की एक अदालत के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। इसके साथ ही इस मामले में मुलजिमीन की तादाद 15 हो गई है। इम्तिहान में हुई बेजाब्तगी की पुलिस जाँच कर रही है। भारत की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने आज ग्लासगो में मुनक़दा दौलत मुश्तरका खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। एशियन चैंपियनशिप में कांस्य का तमगा जीतने वाली ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके साथ उनका मजमुई वजन 199 किलोग्राम रहा। नाइजीरिया की ओनोम डीडी ने कॉमनवेल्थ और गेम्स रिकॉर्ड के साथ 206 किलोग्राम का वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। जीत के बाद भारत की तमगों की तादाद 5 हो गई है, जिनमें सोने का 1, चांदी के 3 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में मुनाक़िदा दौलत मुश्तरका खेल 2026 में वेटलिफ्टिंग के जुमरे में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को मुबारकबाद पेश की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अवामी इम्तिहानात का तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। اس بل میں پیپر لیک معاملات میں سخت ترین کارروائی کرنے کی تجویز ہے۔

0: है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की जांच के लिए आईजीपी की क्यादत में एक 4 रुकनी SIT तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया है और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है गजलों का प्रोग्राम कहकशा। सभी सुनने वालों को आदाब। श्रोताओं, गजल वो आईना है जिसमें इंसान अपना चेहरा नहीं अपना दर्द देखता है। आज की रात हम इसी आईने के 5 टुकड़े लेकर आए हैं, 5 आवाजें जो वक्त की धूल में भी नहीं धुंधलाई। मैं संतोष श्रीवास्तव और यह है गजलों की कहकशा। चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहले याद कीजिए वो दौर जब फिल्मों में नशा भी तहजीब से किया जाता था। 1967 की फिल्म नूरजहां। रोशन के संगीत निर्देशन में सुमन कल्याणपुर की ये आवाज। सावन और शराब दोनों का मिजाज एक जैसा होता है, भीगते भी हैं और बहकाते भी हैं।

सुमन जी ने इस गीत को महज गाया नहीं, उसे जिया भी है। उनकी आवाज में वो खुमारी है जो लफ्जों में नहीं खामोशी से उतरती है।

और अब जिक्र उस आवाज का जिसके आगे वक्त भी सर झुका देता है। जी हां, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, लता मंगेशकर। साल 1958 में आई फिल्म अदालत की ये गजल राजेंद्र कृष्ण की लिखी और मदन मोहन द्वारा संगीतबद्ध की गई।

और अब आती है वो आवाज जिसे गिटार के साथ मोहब्बत थी, यानी भूपिंदर सिंह साहब की। ये उनके निजी एल्बम की एक गजल है, चांदनी रात और तन्हाई। गालिब ने कहा था, रात भर रहेंगे हम गैर की ख्वाहिश में, और भूपिंदर साहब ने उसे सोती।

भूपिंदर साहब की गिटार जब बोलती है तो लगता है चांद भी थम कर सुन रहा है। ये गजल इंतजार की है, उसे एक बार की जो कभी आती ही नहीं।

और अब वो नाम जिसने गजल को महफिलों से निकालकर हर घर की बैठक तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जगजीत सिंह साहब की। आपको सुनवानी जा रही है कफील अजहर का ये कलाम।

ये गजल सिर्फ लफ्जों की नहीं रिश्तों की है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जगजीत सिंह साहब कहते हैं, एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, और देखते ही देखते जिंदगी की पूरी किताब खुल जाती है। ये गजल आईना है जनाब, अपना चेहरा इसमें सबको नजर आएगा।

और आखिर में महफिल की जान आशा भोसले। ये गजल किसी फिल्म की मोहताज नहीं, ये आशा जी के अंदाज की, उनके हुनर की गवाही है। चांद के हुस्न को, उसकी नरमी को, उसके छलकते हुए नूर को लफ्जों में पिरोया गया है। आशा जी जब गाती हैं तो लगता है चांद भी जमीन पर उतर आया है। उसका जलवा, उसकी नजाकत, सब इसी एक मिसरे में छलक गया।

श्रोताओं, इस प्रोग्राम के तहत हमने आपको जिन फिल्मों और गैर फिल्मों की गजलें सुनवाई उनके नाम इस तरह से हैं: नूरजहां, शकील बदायूनी, रोशन, सुमन कल्याणपुर।

श्रोताओ, इसी के साथ गजलों की कहकशां अब यहीं खत्म होती है। दीजिए अपने रेडियो हम सफर संतोष श्रीवास्तव को इजाजत।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अपने सुनने वालों को याद दिला दी, कल रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और दिल्ली से ही सुबह 7:30 पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। हम अभी हाजिर होते हैं अपना अगला कार्यक्रम लेकर, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी संतोष श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का ये विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे रिमझिम फुहारों के साथ आने वाली बीमारियों की और कैसे फिल्मी गानों के संग संग रखें हम अपना ख्याल। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सावन आया है, सेहत का पैगाम भी लाया है। सावन का महीना मन को भाता है, पर भीगी हवा और जगह जगह जमा पानी अपने साथ मच्छर, वायरल और पेट की बीमारियां भी लाता है। WHO कहता है कि बरसात में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के केस 40% तक बढ़ जाते हैं। तो आज हम 5 सदाबहार नगमों के साथ जानेंगे कि बरसात में कैसे रहें तंदुरुस्त। शुरुआत करते हैं 1989 की फिल्म मंजिल के इस रोमांटिक गाने से। अमिताभ और मौसमी भीगते हुए गा रहे हैं रिमझिम गिरे सावन। लेकिन दोस्तों, बारिश में भीगना अच्छा लगता है, पर भीगने के बाद हवा ठंडी लग जाए तो सर्दी जुकाम पक्का।

बारिश में भीग जाएं तो तुरंत सूखे कपड़े पहनें, गीले बालों से एसी में न बैठें, अदरक वाली चाय या तुलसी का काढ़ा जरूर लें, यही है पहला बचाव। और अब सुनिए ये भीगा भीगा गाना।

बरसात में सड़क का पानी और खुले में कटी सब्जी, मतलब टाइफाइड और डायरिया को दावत। बरसात में बाहर का तालाब होना और खुले में रखा खाना अवॉइड करें। घर का बना गर्म खाना खाएं। पानी हमेशा उबालकर या आरओ का ही पिए, क्योंकि सावन में पानी दूषित सबसे जल्दी होता है।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का ये विशेष कार्यक्रम। बरसात का मजा तभी है जब सेहत साथ हो। अगर आपको बुखार, बदन दर्द या उल्टी जैसा लगे तो घरेलू इलाज में समय न गवाएं।

तुरंत डॉक्टर से सलाह ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सुनवाती हैं 1988 की फिल्म वारिस का ये खूबसूरत सनकमा सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में।

लेकिन दोस्तों, बादल के साथ साथ बरसात में मच्छर भी एंट्री मारते हैं। घर के कोने में जमा पानी, गमले, टायर, यही डेंगू और मलेरिया के मच्छर का घर बन जाता है। कूलर का पानी हर हफ्ते बदलें और सुखाएं। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। शाम होते ही पूरी बाजू के कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी या लिक्विड वेपराइजर जरूर इस्तेमाल करें। सावधानी रखेंगे तो भाई बीमारी दूर रहेगी। और अब आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

इसी मौसम में फंगल इन्फेक्शन भी शोर मचाता है। गीले जूते मोजे सीलन भरे कपड़े से दांत खाज हो जाती है। पैर हमेशा सूखे रखें, बारिश से आकर पैर साबुन से धोएं, सूती कपड़े पहने, जूतों में अखबार रख दें तो नमी सोख लेगा। एंटी फंगल पाउडर काम की चीज है। याद रखिए, साफ सफाई ही बचाव है। सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

और श्रोताओं, अब आखिरी गीत नए दौर का। श्रेया घोषाल की आवाज में बारिश का जश्न, लेकिन जश्न मनाए होश से, बरसात में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ऐसे में विटामिन सी के लिए नींबू, आंवला लें, मौसमी फल खाएं पर धोकर, दिन में 8-10 गिलास साफ पानी पिए। हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी बूस्टर है। और हाँ, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। अब इस प्यारे से रकमे के साथ कार्यक्रम समाप्ति की ओर।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

तो दोस्तों, पांच गीतों के साथ हमने जाना कि बरसात में कैसे रखें सेहत का ख्याल। याद रखिए, भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदलें, बाहर का खाना अवॉइड करें, मच्छरों से बचें, साफ सफाई रखें और इम्यूनिटी बढ़ाएं। श्रोताओं, इस प्रोग्राम के तहत हमने आपको जिन फिल्मों की गाने सुनवाई उनके नाम इस तरह से हैं: मंजिल किशोर कुमार, लता मंगेशकर, गुलजार आर डी बर्मन,

श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अपने सुनने वालों को याद दिला दी, कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में हमारे किसान भाई सुनेंगे मिथुन तरफदार से की गई बातचीत। बातचीत का विषय होगा स्ट्रॉबेरी की हाइड्रोफोनिक खेती। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर मीनाक्षी दास और शाम 7:45 पर मीरा तिवारी की गाई भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में कल सुबह, इसे एक बार फिर सुन लीजिए, शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन। आप सुन रहे थे हमारे कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी प्रयागराज से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होते हैं अपना अगला कार्यक्रम लेकर। बस थोड़ी प्रतीक्षा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नम्रता देव का राग भाग्यश्री में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं ऐरी ना बोलूंगी। तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल हैं मन हरवा तुम कैसो। आपके साथ तबले पर संगति की है आरुष मिश्रनी और हारमोनियम पर लहरा दे रही हैं अनुराग मिश्र। तो आइए सुनते हैं नम्रता देव का राग बागेश्री में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप नम्रता देव का राग भाग्यश्री में ख्याल गायन सुन रही थी। आपके साथ तबले पर संगति की आरुष मिशनी और हारमोनियम पर लहरा दे रहे थे अनुराग मिश्र। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर $89 और $0.74 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हुए हैं। अब आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।